मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत माता हमारी जननी, जिसकी माटी में है जीवन की कहानी, हिमालय जिसका मुकुट है, सागर जिसकी चरण रज है, वह पावन भूमि भारत माता, जिस पर हर भारतवासी गर्व करता है, वीरों की जननी, संतों की धरती, त्याग ज्ञान और तप की मूर्ति, मातृभूमि के कण कण में बलिदान की गाथा गूंजती रहती है।

श्री कृष्ण परमात्मा है और श्री राधा हृदय आराधनी शक्ति अर्थात कृष्ण की आंतरिक प्रेम शक्ति। शास्त्रों और वैष्णव परंपरा में राधा कृष्ण को अलग नहीं बल्कि एक ही तत्व के दो स्वरूप माना गया है।

शिव का दर्शन यह सिखाता है कि त्याग में ही शक्ति है, मौन ही सत्य है और स्वयं के भीतर ही महादेव हैं। शिव और गंगा का गहरा प्रतीकात्मक संबंध है। पवित्र नदी गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई, लेकिन उसकी शक्ति पृथ्वी के लिए बहुत अधिक थी, इसीलिए भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण कर लिया। शिव को गंगाधर के रूप में जाना गया क्योंकि वह नदी को अपने बालों में धारण करते हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुण भारतीय संस्कृति की आत्मा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सत्य, धर्म, करुणा और त्याग के सजीव स्वरूप हैं। राम जो शासक होकर भी सेवक हैं, वीर होकर भी करुणामय हैं और मानव होकर भी ईश्वर तुल्य हैं। राम नाम वह दिव्य मंत्र है जिसके स्मरण, जप और कीर्तन से मन शुद्ध होता है, अहंकार नष्ट होता है और जीव को शांति, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

माँ दुर्गा भक्तों के समस्त कष्टों का नाश करने वाली, शरण में आए जनों का उद्धार करने वाली हैं। उनकी कृपा से भय, शोक और अज्ञान दूर होते हैं और जीवन में शक्ति, साहस व धर्म की स्थापना होती है। दुर्गे दुर्गति हारिणी, शरणागत जन तारिणी, जय जय है जगदम्बे, जय जय है जगदम्बे मात।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: स्वाध्याय, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। स्वाध्याय केवल पढ़ने या ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक साधना है जो मनुष्य को स्वयं से जोड़ती है। स्व अर्थात अपना वास्तविक स्वरूप और अध्याय अर्थात अध्ययन। इस प्रकार स्वाध्याय का अर्थ है अपने अस्तित्व का अध्ययन। यह वह मार्ग है जो मनुष्य को बाहरी भ्रमों से निकालकर आंतरिक सत्य की ओर ले जाता है। भारतीय दर्शन में स्वाध्याय को अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। पतंजलि योग सूत्र में इसे नियम के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात जीवन को अनुशासित और शुद्ध बनाने का एक अनिवार्य साधन। स्वाध्याय के माध्यम से मनुष्य अपनी भीतर छुपी चेतना को जागृत करता है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। यह केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं, बल्कि शास्त्रों के माध्यम से स्वयं का साक्षात्कार है। जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो वह धीरे धीरे अपने मन के स्वभाव को समझने लगता है। मन कभी शांत, कभी चंचल, कभी दुखी तो कभी प्रसन्न होता है। उसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। स्वाध्याय उस भीतर की परतों को खोलने की प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं, बल्कि विचारों के साक्षी हैं। यही साक्षी भाव आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। स्वाध्याय का एक गहरा मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने भीतर की शांति खो देता है। प्रतिस्पर्धा, तुलना और अपेक्षाएं मन को अस्थिर बना देती है। ऐसे में स्वाध्याय हमें आत्मसंवाद की कला सिखाता है। जब हम अपने आप से ईमानदारी से प्रश्न करते हैं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों दुखी हूं, मेरे भय का मूल क्या है,

0: तब हमें अपने जीवन की वास्तविक दिशा समझ में आने लगती है। मेरे भय का मूल क्या है, तब हमें अपने जीवन की वास्तविक दिशा समझ में आने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वाध्याय आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु का कार्य करता है। जब व्यक्ति गीता, उपनिषद या अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, तो वह केवल शब्द नहीं पढ़ता, बल्कि उन शब्दों में छिपे दिव्य अनुभव को महसूस करता है। धीरे धीरे यह अनुभव उसके जीवन में उतरने लगता है। उसके विचार शुद्ध होते हैं, वाणी मधुर होती है और कर्म सात्विक हो जाते हैं। स्वाध्याय का एक महत्वपूर्ण आयाम स्वनिरीक्षण है। दिन भर के कार्यों का अवलोकन करना है, कहां हमने सही किया, कहां गलती हुई, कहां हम क्रोध या अहंकार में बह गए, यह सब स्वाध्याय का ही हिस्सा है। यह प्रक्रिया हमें आत्म सुधार की ओर ले जाती है। बिना स्वाध्याय के व्यक्ति बार बार वही गलतियां दोहराता है, लेकिन स्वाध्याय उसे सजग बनाता है। इसके साथ ही स्वाध्याय हमें विनम्रता सिखाता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे यह एहसास भी होता है कि हम कितना कम जानते हैं। यह भावना अहंकार को समाप्त करती है और व्यक्ति को सीखने के लिए सदैव तत्पर रखती है। यही विनम्रता उसे समाज में प्रिय और आदरणीय बनाती है। व्यवहारिक जीवन में भी स्वाध्याय का अत्यंत महत्व है। यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। जब हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों को समझते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले पाते हैं। यह हमें भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय एक सजग और स्वतंत्र व्यक्तित्व बनने में सहायता करता है।
1: तो ये था आज का चिंतन। आलेख नीलेश, नीरज साल्विका और वाचक स्वर नीलेश जोशी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। खेती की बातें, इसमें फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दे रही हैं भारती उपाध्याय।
2: किसान भाइयों के राम राम। किसान भाइयों, खेती की बात मैं आज अपन बात करूंगा कि खरीफ की फसल में वित्तीय जोखिम कम करने में फसल बीमा की कई भूमिका होवे है। खरीफ मौसम में किसान भाइयों के का सामने कई वित्तीय जोखिम हुई सके हैं। जैसे जो खरीफ की खेती है, अपनी जो पूरी तरह से बरसात पे निर्भर रहे हैं। यदि टेम पे बरसात नहीं होवे, ने घनी अधिक हुई भी जावे, बाढ़ आई जावे या कीट ने रोग को प्रकोप पड़ी जावे, तो फसल के भारी नुकसान हुई सके है। ऐसा में फसल खराब होने पर उनकी जो किसान भाई है, उनकी आय रुकी जावे है और आर्थिक संकट भी खड़ो ही जावे है। इना जोखिम के कम करने में फसल बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका होवे है। फसल बीमा कई होवे है और ये किसान सारू कैसे काम करे है, तो फसल बीमा एक ऐसी योजना है जिसमें किसान भाई होन घनी कम प्रीमियम दई ने अपनी फसल को बीमा करे सके हैं। यदि प्राकृतिक आपदा जैसे सूखो पड़ी जावे, बाढ़ आई जावे, चक्रवात, अत्यधिक बरसात या अन्य अधिसूचित कारणों से फसल के नुकसान होवे है, तो बीमा कंपनी निर्धारित नियम का अनुसार किसान भाइयों के मुआवजो देवे है। इससे किसान के आर्थिक सहायता मिले है और वे अगली फसल की तैयारी करी सके है। सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ फसल सारू किसान भाइयों के केवल बीमित राशि को 2% प्रीमियम देनो पड़े है। बाकी प्रीमियम का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार वहन करे है। यदि अधिसूचित प्राकृतिक आपदा हों, जैसे कि सूखो, बाढ़, जल भराव, चक्रवात, भू स्खलन, बादल को फटनो, प्राकृतिक आग, बिजली गिरनो तथा और अन्य परिस्थिति में जैसे कि कीट एवं रोग को घनो लगनो और ओका से नुकसान हो, तो किसान बीमा

0: लाभ प्राप्त कर सके हैं। स्थानीय प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को भी घना मामला हम सामने आवे है। फसल को नुकसान हो जाने की स्थिति में सबसे पहला किसान भाइयों के निर्धारित समय सीमा का भीतर अपना नुकसान की सूचना देनी चाहिए। सूचना बीमा कंपनी, बैंक, कृषि विभाग, कॉमन सर्विस सेंटर या हेल्पलाइन का माध्यम से अपन दी सका। टेम पर सूचना देने से दावा प्रक्रिया में आसानी हुई जावे है। देखो, फसल बीमा को लाभ वही किसान भाइयों ली सके हैं जिन्होंने बीमो करवायो है, ने जिनका पास बीमो करवाने का बाद जो दस्तावेज है वे ही इको लाभ ली सके हैं। क्योंकि जब फसल खराब हुई जावे तो किसान भाइयों के नुकसान की भरपाई सारू मुआवजो मिले है। इसका सारू कर्ज चुकाने में जो कर्ज चुकानो है ओमें अपना के खर्च चलाने और अगली फसल का लिए बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में एका से सहायता मिले है। यानी कि फसल बीमा किसानों की आय में स्थिरता लाने को काम करे है। फसल बीमा सुरक्षा देवे है और अच्छी खेती का तरीका भी अपना किसान भाई उनके उतना ही जरूरी हुए है। जैसे कि समय पे बुवाई करनो, प्रमाणित बीज को उपयोग करनो, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, जल संरक्षण, कीट और रोगों सारू अपना खेत में नियमित निगरानी रखनो तथा मौसम को पूर्वानुमान का अनुसार कृषि कार्य करनो, इससे कई जोखिम भी कम होगा और अपना किसान भाई हो आप मतलब ये जो कीट पतंगा है एका से भी बची सकेगा। पर हाँ, ये है कि अपना किसान भाई हो फसल बीमो कराने को लाभ ली सके है और इन आपदाओं से जो अपने फसल के नुकसान हुए है उनको उनके मुआवजो मिली जावे है ताकि वे उनके कोई परेशानी आगे नहीं झेलनी पड़े। आज अपना किसान भाइयों से इतना ही कहना था। राम राम।
1: खेती की बातें, इसमें फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दे रही थी भारती उपाध्याय। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म, चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदिदेव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। स्वर था मालिनी नाम्बियार का। संगीत संयोजन सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आपको सुनवा रहे हैं आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुनहरे पल, जिसमें आप सुनेंगे कुछ ऐसी गायिकाओं के गायक गीत जो स्थापित गायिकाओं में की लिस्ट में शामिल नहीं थी, लेकिन इनके गाए गीत सुपरहिट हुए। सुबह 8:30 विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम होगा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चिप डिजाइनिंग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव से ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी की बातचीत। लोक संगीत में सुबह 9:00 आपको सुनवाएंगे रामगीर वर्मा और साथी के गाए लोकगीत। सुगम संगीत में सुबह 9:15 पर कलाकार होंगी शीला वर्मा। शास्त्रीय संगीत में सुबह 9:30 आपको सुनवाएंगे अमान अली वंश का गाया राग गुजरी तोड़ी। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 10:00। सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन सुनिएगा सुबह 10:05 से। दिन में 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। दिन में 11:00 से होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। फिल्म संगीत सुनिएगा दिन में 12:00, दिन में 2:00। संग्रहालय से कार्यक्रम होगा दिन में 12:30। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम के अंतर्गत आप जानेंगे सतर्कता से करें ऑनलाइन पेमेंट। साथ ही आप जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। रूप लावण्य क्रम में आप जानेंगे नाखूनों की चमक बरकरार रखें इस मानसून में। मेरी उड़ान इस क्रम में टिफिन सेंटर चलाने वाली मनोरमा सेठिया से नीलम चोरी की बातचीत सुनिएगा। फूड जोन क्रम में कॉर्न पुलाव बनाने की विधि जानेंगे। और काम की बातें इस क्रम में आप जानेंगे बारिश में हर बूंद का हो संचय। दिन में 2:30 होगा चित्रपट संगीत। शाम की सभा में युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा 5:00। इसमें हमारे शहर इस क्रम में आप राजगढ़ शहर के बारे में जानेंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा 5:45 पर। 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा। 6:30 पर शीला वर्मा के गाए कुछ गीत आप सुनेंगे सुगम संगीत में। और लोक संगीत में 6:45 पर उर्वशी सक्सेना और साथी के गाए

लोकगीत सुनेंगे। शाम 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया होगा रात्रि 8:15 से। चित्रगीत में सदाबहार फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 पर। उर्दू कार्यक्रम कहकशा हम आपको सुनवाएंगे रात 9:30। ये कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में आपको सुनवाएंगे उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग पूर्वी और राग मारू बिहाग। श्रोताओं, आपको एक बार फिर याद दिला दें, सुबह 10:05 से प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला यह आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। यह आयोजन वस्त्र फैशन स्थिरता प्रौद्योगिकी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5F विजन यानी खेत धागा कारखाना फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार निवेश नवाचार नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता है। ये नाव 2 जुलाई को पुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगे। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वह किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है।

उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान ना हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और 200 रूपये के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
2: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
5: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
4: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
5: अरे काहे का मजा,
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
4: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
5: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
4: ये हुई ना बात।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
4: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
3: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
4: वही दोपहर 1 बजे।
3: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
5: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
7: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं,
3: क्या
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
5: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट, विधानसभा सत्र में विधेयक के आने की संभावना। मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ के निवेश से AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित होगा। दतिया उपचुनाव के लिए अंतिम दिन 32 नामांकन पत्र दाखिल किए गए और प्रदेश में आज हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने कल संहिता का प्रतिवेदन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को सौंपा। प्रतिवेदन में समिति की रिपोर्ट 3 खंडों में संकलित है। पहले खंड में समिति ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य के विभिन्न विधियों तथा प्रथाओं का विश्लेषण कर अपनी अनुशंसाएं दी हैं। दूसरा खंड मध्य प्रदेश में प्रचलित विधियों एवं नियमों के दृष्टिगत तैयार किया गया है। तीसरे खंड में जन परामर्श प्रतिवेदन है, जिसमें समिति द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर एवं वेबसाइट के माध्यम से किए गए व्यापक जन परामर्श का विवरण है। समिति को 9.58 लाख से अधिक परामर्श प्राप्त हुए थे। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने की अनुशंसा की है। UCC के लिए आए सुझावों में मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रारूप तैयार करने का कार्य किया गया है। विधेयक के परिमार्जन और वरिष्ठ सचिव समिति की प्रक्रिया के बाद विधेयक मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत मानसून सत्र में ही विधानसभा में रखे जाने की संभावना है। स्पेन का समर ग्रुप मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित करेगा। ये जानकारी कल भोपाल में आयोजित MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में दी गई। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में 51 प्रमुख गतिविधियां संपन्न हुई। इन गतिविधियों से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और 34,000 से अधिक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
2: मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों

0: में शामिल हुआ है। 2024 से टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की यात्रा से प्रारंभ हुआ।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश को 46,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के बाद से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर आया। इस अवधि में 22 नई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। वहीं नमो ऐप और माई जीओवी पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इस अभियान में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की विशेष सहभागिता रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की इकाई आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक दीर्घा विज्ञान के लोकप्रियकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार तथा अनुभवात्मक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका विकास नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के तकनीकी मार्गदर्शन एवं जिला प्रशासन भोपाल के सहयोग से किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में BSNL की रणनीतिक समीक्षा और योजना बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की अस्थायी बढ़ोतरी दर्ज की है।
3: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
4: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
3: Other operating income is not included.
1: दतिया विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत चल रही निर्वाचन प्रक्रिया के तहत कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, जिसके तक 28 अभ्यर्थियों द्वारा कुल 32 नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर दतिया के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह प्रमुख तौर पर शामिल हैं। भाजपा उम्मीदवार का पर्चा भरवाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा भरवाने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के तहत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सृजकों की पहचान करना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनके कौशल को बेहतर बनाना है। सीजन 2 का लक्ष्य ऐसी उद्योग संचालित, सरकार समर्थित और युवाओं पर केंद्रित चुनौतियों को पूरा करना है जो रचनात्मक प्रतिभा की पहचान करें और उन्हें निखारें। इसके साथ ही कौशल को बेहतर बनाने और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दें। इसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्रों में सहयोग के अवसर पैदा करना भी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी पर आधारित अन्य रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI ने मध्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के लिए दिए गए चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया है। FCI ने कहा कि करीब 5 लाख मीट्रिक टन चावल के दुरुपयोग की खबरें निराधार हैं। जांच केवल लगभग 242 क्विंटल चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है, जिसकी कीमत करीब 5,63,000 रुपए है। एफसीआई ने स्पष्ट किया कि 1,000

160 करोड़ रुपए की राशि एथेनॉल कार्यक्रम के तहत डिस्टिलरियों को जारी किए गए चावल का मूल्य है, न कि कथित दुरुपयोग की रकम। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपना चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा। इंग्लैंड के खिलाफ टीम ने 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। अब रुख करते हैं मौसम का। मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा इस बार जुलाई माह में माइनस में आ गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में सामान्य से 3% कम पानी गिरा है। पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में एवरेस्ट से 17 और पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल में 10 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में दस्तक अभियान का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। जबलपुर रेल मंडल ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2,74,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत माखन नगर की सभी 64 पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। डिंडोरी के धमन गांव में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 30 हेक्टेयर क्षेत्र में 15,000 फलदार पौधे लगाए गए। मंडला के पीएम स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पद्मी में प्रवेश के लिए 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाजापुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अतिरिक्त सीएलसी राउंड के तहत प्रवेश मेले का आयोजन किया गया और बैतूल में खनिज विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण कर अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। सदाबहार फिल्म संगीत के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन सुप्रसिद्ध गायिकाओं की जिनके कुछ गीत बेहद लोकप्रिय हुए और आज भी उन गीतों को बहुत सुना जाता है, लेकिन उस समय की स्थापित पार्श्व गायिकाओं की लिस्ट में उनका नाम शामिल ना हो सका। सबसे पहले बात करते हैं 60 के दशक की एक बेहतरीन पार्श्व गायिका कमल बारोट की। 60 का दशक कई स्थापित गायिकाओं से शुमार था, इसलिए इनकी गायकी को उस दौर में ज़्यादा तवज्जो न मिल पाई। फिर भी इन्होंने साल 1960 से 1970 के बीच 120 फिल्मों के लिए 150 गीत गाए। उनका गाया साल 1965 की फिल्म पारस मणि का वो सुप्रसिद्ध गीत आपको सुनवाते हैं जिसे इन्होंने लता मंगेशकर के साथ गाया है। आइए सुनते हैं वही गीत।

और अब बात करते हैं बहुत ही मीठी आवाज की मलिका गायिका शारदा की, जिनके गाए एक आइकॉनिक सॉन्ग तितली उड़ी को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था। बात उन दिनों की है जब फिल्म फेयर अवार्ड या तो मेल सिंगर को मिलता था या फीमेल सिंगर को। उस साल सूरज फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म के दो गीत बेहद पॉपुलर रहे, एक था मोहम्मद रफ़ी का गाया बहारो फूल बरसाओ और दूसरा था शारदा जी का गाया तितली उड़ी। इनामी दौड़ में मोहम्मद रफ़ी साहब आगे निकल गए और उन्हें अवार्ड मिल गया। बेशक बाद में बात जरा है आपकी, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। आइए सुनते हैं भारतीय पॉप सिंगर शारदा का गाया सूरज फिल्म का वही आइकॉनिक गीत।

सुनहरे पल कार्यक्रम में अब बात करते हैं गायिका वाणी जयराम की, जो मूलतः साउथ की फिल्मों की गायिका हैं, लेकिन 60 और 70 के दशक में इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी कुछ चुनिंदा गीत गाए हैं। शास्त्रीय संगीत गाने की विधा में माहिर इस गायिका ने कई सारे दिग्गज शास्त्रीय गायकों के साथ गीत गाए हैं, जिनमें हैं पंडित रविशंकर और पंडित कुमार गंधर्व। इन्हीं का गाया गुड्डी फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीत वसंत देसाई का।

0: लेते हैं छोटा सा अंतराल, फिर से मिलते हैं कार्यक्रम सुनहरे पल में।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम सुनहरे पल में आपका फिर से स्वागत। और अब गौर फरमाते हैं एक ऐसी पार्श्व गायिका की जिसने फिल्म इंडस्ट्री में आते ही एक अंग्रेजी गाने से सबका दिल लूट लिया था, और वो गीत था फिल्म जूली का माय हार्ट इज बीटिंग। इनके गाने की फेहरिस्त में कई सारे पॉप गाने, भक्ति गीत, लोकगीत, गजलें, शास्त्रीय गीत हैं। लगभग सभी जाने माने संगीतकारों के लिए इन्होंने गीत गाए। अब तो आप जान ही गए होंगे कि वो सुप्रसिद्ध गायिका कौन है। वो गायिका है प्रीति सागर। इन्हीं का गाया फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम मंथन।

और अब एक ऐसी लोक गायिका की बात करते हैं जो मशहूर संगीतकार खय्याम की पत्नी थी। नाम है जगजीत कौर। इनके गाए ज्यादातर गीत लोक संगीत पर केंद्रित होते थे जो आज भी बसे हैं सुनने वालों की यादों में। इन्हीं का गाया और खय्याम साहब का संगीतबद्ध किया फिल्म शगुन का वो मशहूर गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, जो पार्श्व गायिका जगजीत कौर के गाए शानदार गीतों में से एक है।

और अब बात करते हैं हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की एक स्टार पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा की, जिन्होंने मात्र

5 वर्ष की उम्र से ही गाने की शुरुआत करती थी। कभी कभी व्यक्ति के जीवन के आंगन में बारिश की तरह अवसरों की बरसात होती है। गायिका सुधा मल्होत्रा के साथ यही हुआ। उस दौर के तमाम दिग्गज संगीतकारों ने इनकी क्लासिकल बेस आवाज को पहचाना और उनसे दर्जनों गाने गवा लिए। सुधा मल्होत्रा इस तरह बन गई एक स्टार गायिका, और वो भी बहुत कम दिनों में। इन्हीं का गाया दीदी फिल्म का एक सुमधुर गीत आपको सुनवाते हैं, जिसकी धुन स्वयं सुधा जी ने तैयार की थी। बात यूं है कि दीदी फिल्म के गीतों की धुनें तो एन दत्ता ने तैयार की थी, लेकिन दीदी फिल्म के इस गीत की रिकॉर्डिंग वाले दिन एन दत्ता बीमार हो गए और उन्होंने सुधा जी से कहा, आप इस गाने को कंपोज कीजिए। वे मान गई और इस तरह वे बन गई गायिका से म्यूजिक कंपोजर। आइए सुनते हैं वही गीत जिसमें सुधा जी के साथ हैं मुकेश जी, और म्यूजिक कंपोजर इस गीत की सुधा मल्होत्रा।

और अब बात करते हैं बंगाली पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी की, जिन्होंने उस समय की टैलेंट हंट

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में बात करते हैं एक ऐसी पार्श्व गायिका की जिन्होंने 20 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाए। उनका नाम है नाइट एंगल ऑफ साउथ एस जानकी। हाल ही में 11 जुलाई 2026 को उन्होंने 88 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के चलते अंतिम सांस ली। श्रद्धांजलि स्वरूप आइए सुनते हैं इन्हीं का गाया साहेब फिल्म का अनजान का लिखा गीत, संगीत बप्पी लहरी का।

श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में आपने कुछ ऐसी पार्श्व गायिकाओं के गाय गीत सुने जो स्थापित गायिकाओं में शामिल नहीं थी, लेकिन उनके गाए कुछ गीत बहुत लोकप्रिय हुए। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए पद्मश्री तपस्वी को। फिर किसी दिन मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
4: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
3: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर

0: के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी लापता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमरीका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,

0: नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमरीका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमरीका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती

0: विज्ञान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। श्रोता, हम बता दें कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम एक विशेष बातचीत करने वाले हैं चिप डिजाइनिंग के बारे में, कि चिप डिजाइनिंग होती कैसे है, फिर चिप का निर्माण कैसे होता है, फिर इसके अलग अलग जो उपयोग हैं यानी कि एप्लीकेशंस हैं वो किस तरीके के होते हैं, और साथ में थोड़ी सी बात नैनो टेक्नोलॉजी की भी कर देंगे हम, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ आज का विषय है। और श्रोता, हम बता दें कि हमारे इन सारे प्रश्नों के बारे में जो कि चिप टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, इसकी डिजाइनिंग से संबंधित हैं, इनके बारे में बात करने के लिए आकाशवाणी की स्टूडियोज में आए हुए हैं डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर संतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर संतोष, जैसा कि नाम से विदित है, चिप एक बहुत छोटी कहें डिवाइस है, एक उपकरण है जिसके बहुतेरे उपयोग आज के समय में हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि चिप के बिना आधुनिक तरक्की, आधुनिक प्रगति संभव नहीं है, तो ये सच होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बड़ी जिज्ञासा है श्रोताओं के मन में, मेरे मन में ही, और इन सब के बारे में आज हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि चिप हम किसे कहेंगे, चिप होता क्या है?
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चिप एक छोटा सा उपकरण है, जैसा आपने खुद भी कहा, जिसका जो डायमेंशन होता है बहुत ही कम होता है
0: जी,
1: मिलीमीटर मिलीमीटर का आप कह सकते हैं, 2 मिलीमीटर गुणा 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर गुणा 5 मिलीमीटर, इस तरह के रहते हैं, जिसमें हजारों लाखों कंपोनेंट फैब्रिकेट किए जाते हैं
0: जी।
1: और इसमें जो एक जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो कहा जाता है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और उसका जो मिनिमम चैनल लेंथ होता है वो अब तो सब 100 नैनोमीटर्स में आ चुके हैं
0: जी।
1: और दैनिक जीवन में अपन देखें तो आज मोबाइल प्रोसेसर जो चूँकि आम भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, तो देखा जाए तो मोबाइल में जो प्रोसेसर है उसका जो मिनिमम चैनल लेंथ है वो कहीं न कहीं 12 नैनोमीटर 6 नैनोमीटर तक के आ चुके हैं। तो इतने छोटे से डायमेंशन के जो मॉसफेट के चैनल लेंथ को डिज़ाइन करना, डेवलप करना और फाइनली मैन्युफैक्चर करना और उसको उपकरण में लगा करके चलने चलाने का एक सिस्टम बनाना,
0: हाँ,
1: एक बड़ा ही जटिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विषय आता है
0: जी।
1: प्रश्न आपका था चिप को कैसे डिजाइन करते हैं, तो इसके लिए हमें एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कैडेंस है, सिनॉप्सिस है, मेंटर ग्राफिक्स के टूल हैं, ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स टूल भी हैं जिसपे कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करके और आप चिप को डिजाइन करते हैं।
0: अच्छा
1: जी। और जैसे डिजिटल लॉजिक्स हो गए, एनालॉग लॉजिक्स हो गए, रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गए, चिप्स

0: ऐसे तमाम चिप्स अलग अलग डायमेंशंस के अपन डिजाइन करते हैं, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए और हाई एंड मशीन चाहिए, मीन्स कंप्यूटर चाहिए, और तब उन जटिल सर्किट्स को हम लोग डिजाइन करते हैं
1: जी।
0: एक बार अपन ने सॉफ्टवेयर पर डिजाइन कर लिया तो उसको हमें उस डिजाइन को जो फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं या फाउंड्री जिसको कहते हैं, जैसे सरल भाषा में समझे तो भारत में जो फाउंड्री है उसका नाम है SCL, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड मोहाली। वहां पे 180 नैनोमीटर मिनिमम चैनल लेंथ का डिजाइन किया जाता है और वहां फैब्रिकेट कर सकते हैं। यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारत में एकमात्र फैब्रिकेशन यूनिट जो कि काफी वर्षों पहले बनाया गया था, एकेडमिक संस्थानों के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए पिछले 5 वर्षों में फ्री ऑफ कॉस्ट फैब्रिकेशन सुविधा दी गई। उसके तहत सैकड़ों चिप पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की एक स्पेशल स्कीम है जिसको SMDP के स्कीम से नाम से जाना जाता है, उसमें काफी संस्थान अपने चिप डिजाइन और बच्चों में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर चिप डिजाइन की एबिलिटी कैसे जनरेट हो, इसके स्कीम के तहत काफी लोगों ने चिप डिजाइन करी है। विदेशों की बात करी जाए तो TSMC बड़ा फाउंड्री है ताइवान में, इंटेल, ऐसे बहुत फाउंड्रीज हैं जहां पे चिप डिजाइन करके लोग भेजते हैं, और एक बार जब चिप हो जाती है फैब्रिकेट तो उसको वापस आप लैब में ला करके उसको टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने में आपको लगता है कि सामान्यतः सारे चिप प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, कुछ चिप काम करते हैं कुछ चिप काम नहीं भी करते हैं, तो उसको आपको बाकायदे फिर से रीफ डिजाइन करके फाउंड्री में फिर से भेजने पड़ते हैं और वापस आपको चिप, एक बार आपको लगता है कि चिप प्रॉपरली अच्छे से डिजाइन हो गया है, टेस्टिंग प्रॉपरली हो रहा है, तब आपको PCB पे उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट डाल करके चिप को एक सिस्टम लेवल पे लेके जाते हैं और एक तब एक प्रॉपरली एक सिस्टम लेवल का चिप निर्माण होता है।
1: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी चिप डिजाइनिंग को लेके। एक सवाल है मेरे मन में कि जो चिप इतने सूक्ष्म आकार के आप बता रहे होते हैं, तो जब ये इंडस्ट्री में उपयोग होते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, तो इनका हैंडल करना कितना कठिन होता है, इनको कैसे हम हैंडल करते हैं?
0: जी बड़ा अच्छा प्रश्न था। इनको हैंडल करना नो डाउट एक बहुत बड़ा साइंटिफिक वे से ही करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें एक हमारा जो बाल है, एक बाल का भी डायमेंशन माइक्रोन रीजन्स में आता है। जब हम नैनो रीजन्स की बात कर रहे हैं तो नो डाउट इसको आप नेकेड आई से ना देख सकते हैं ना कर सकते हैं, तो हैंडल करना एक बड़ा विषय है और इसको बड़े साइंटिफिक तरीके से इन चिप को हैंडल किया जाता है
1: जी,
0: जिसका एक प्रॉपर तरीका होता है। और कहीं भी ओपन वातावरण में इसको आप न चिप को निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए क्लीन रूम की आवश्यकता होती है, 1000 क्लीन रूम्स, ऐसे क्लीन रूम की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जहां पे एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी आपके चिप को डैमेज कर सकता है।
1: जी बिल्कुल, जब जो एक चिप का डिजाइन हो जाता है जब वो इतना सूक्ष्म है, तो जो उसमें इस्तेमाल होने वाले जो लॉजिक गेट्स हैं और जो MOSFET है, ये कितने सूक्ष्म निर्मित होते होंगे, फिर तो इनका निर्माण भी उससे भी कहीं सूक्ष्म करना पड़ता होगा।
0: जी अवश्य, इसका निर्माण भी उतना ही जटिल प्रकार से होता है, लेकिन उनको डिजाइन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स हैं जिसको हम लोग EDA बोलते हैं, उस पर डिजाइन करना बहुत ही सरल है और उसका एक फाइनल बिट स्ट्रीम जनरेट होता है जो हम फैब लैब को भेजते हैं।
1: अच्छा
0: जी, तो जो डिजाइन करके फैब लैब से हमारा जो चला जाता है, उसके बाद वहां से फैब्रिकेट होके मशीनरीज पूरी इन्वॉल्व रहती हैं, पूरी केमिकल फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, और जहां पे हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स में इस तरह के नैनो रीजन्स के डिवाइसेस भी इजिली फैब्रिकेट हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल होता है कहेंगे चिप बनाने में, और चिप के भी और जो सब डिवीजन जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो किस मटेरियल से बनते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं और इतनी इम्पोर्टेंट कैसे होती हैं कि वो सब ये पूरा कंडक्शन हो जाता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार हो जाती है और पूरी एक नई टेक्नोलॉजी उससे निर्मित हो जाती है, तो उसमें जो इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है वो किस तरीके का होता है?
0: चिप निर्माण में और डिजाइन में अर्धचालक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्धचालक में ही चिप डिजाइन होते हैं और उसका पिछले 40 या 50 वर्षों से सिलिकन नाम का एक मटेरियल है जो इस्तेमाल होता रहा है और पिछले कई वर्षों से

0: ये बहुत मेच्योर टेक्नोलॉजी है, नो डाउट। उसके अलावा और भी मटेरियल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के आधार पे अलग अलग मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी बहुत मेच्योर टेक्नोलॉजी है और आज मार्केट में जो भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं सिलिकॉन पर ही आधारित हैं।
1: जी, अगर हम भारत की बात करें और स्पेसिफिकली अगर हम आईआईटी इंदौर जैसी संस्थानों की बात करें, उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी हैं, तो ये सारे संस्थान चिप टेक्नोलॉजी में, चिप डिजाइनिंग में, ये किस तरीके का काम कर रहे हैं और ये कितना एडवांसमेंट है इसमें?
0: जी, भारत में चिप डिज़ाइन लगभग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का पिछले 15 साल से जो मैंने आपको बताया स्कीम चल रहा था, उसमें भारत में बहुत साल में सारे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और कुछ विश्वविद्यालय एफिलिएटेड हैं और अपनी लगातार कंपेटेंसी बढ़ा रहे हैं डिजिटल डिज़ाइन में, एनालॉग डिज़ाइन में, आरएफआईसी डिज़ाइन में। तो ऑलमोस्ट सारे संस्थान बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतवर्ष में बहुत ही एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल दाल आने वाले वर्षों में करेंगे।
1: जी, अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो जो चिप का एप्लीकेशंस है वो कहाँ कहाँ है और आने वाला समय कितना बदलाव लाने वाला है चिप के कारण?
0: जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में बिना चिप के तो जीवन ही असंभव हो गया, ऐसा लगता है। हम सबको डेली अपन देखें तो लगातार कोई न कोई गैजेट इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठने से रात को सोने तक का, और बिना चिप निर्माण के असंभव है ऐसा प्रतीत होता है। हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है इलेक्ट्रॉनिक
1: अच्छा
0: डिवाइसेस, गैजेट्स,
1: जी,
0: और बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संगम के कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता है।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे तो लगता है कि बिना चिप के जीवन असंभव है। एप्लीकेशन एरिया देखा जाए तो जीवन के हर अंग में चिप का ही योगदान है, चाहे चाहे अपन ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, स्पेस इंजीनियरिंग की बात करें, डिफेंस एप्लीकेशन की बात करें, ड्रोन की बात करें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, भोजन में तमाम ऐसे अप्लायंसेस घर में इस्तेमाल होते हैं जहां पे मतलब सुबह उठने से लगाए रात को सोने तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं बिना चिप के इम्पॉसिबल, ऐसा लगता है मुझे।
1: जी, और आने वाले समय में कितना बदलाव हो सकता है? चिप एप्लीकेशंस को आप भविष्य में किस तरीके से देखते हैं? एक आईआईटी के प्रोफेसर होने के नाते क्या विजन आपको नजर आता है कि चिप अब और कितना एडवांसमेंट ला सकता है आगे?
0: जी, मुझे लगता है कि चिप आने वाले वर्षों में अपना एक अनमोल योगदान देगा दैनिक जीवन में, और वैसे तो पिछले 50 वर्षों से हम सब साक्षी हैं
1: जी,
0: कि आज जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसमें कहीं ना कहीं चिप का योगदान है।
1: बिल्कुल
0: आने वाले दिनों में और वर्षों में चिप एक महत्वपूर्ण रोल अपना योगदान देगा, ऐसा मुझे लगता है।
1: जी बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रिसर्च बेस्ड एकेडमिक्स होता है आईआईटी में, ये किस तरीके से अभी इसमें काम किया जा रहा है? जैसे अगर चिप टेक्नोलॉजी की हम बात करें और अगर आईआईटी इंदौर की बात करें, इसमें किस तरीके के रिसर्च बेस्ड काम किए जा रहे हैं? इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, इसके बारे में भी बताइए।
0: जी, आईआईटी इंदौर में बेसिकली हम लोग मेमोरी डिज़ाइन में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेमोरी एक बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है और पूरे चिप का लगभग 90% एरिया मेमोरी कंज्यूम करता है।
1: जी
0: तो आज आप देखें इस इंटरनेट के युग में और आईओटी और तमाम जो एज हैं डाटा साइंस, हर जगह आपको डाटा स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है, डाटा को
1: बिल्कुल
0: रिट्रीव करना है, और आने वाले वर्षों में मेमोरी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल और भी प्ले करेगा। तो हम लोग अभी इनकम्प्यूट मेमोरीज, हार्डवेयर एक्सेलरेटर्स, तो इन सब एरियाज में लगातार रिसर्च किया कर रहे हैं और इसकी चिप डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट और उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस किए हुए हैं।
1: जी बिल्कुल। और चिप इंडस्ट्री को लेके, चिप डिजाइनिंग को लेके और इसके एप्लीकेशंस को लेके हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं और बाहर से कोलाबोरेशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकें। तो डॉक्टर संतोष, अभी हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो आईआईटीज हैं ये रिसर्च में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? जैसे अगर डिफेंस की हम बात करें, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि चीन के साथ हमारा काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहा, या दूसरे पड़ोसी भी कभी कभी इस तरीके की हरकत करते हैं, तो जो एक डिफेंस सेक्टर है इसमें जो चिप से संबंधित चीज़ें हैं और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो बहुत काम कर रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: इंटेलिजेंस के थ्रू हो, IoT के थ्रू हो, या दूसरे जो टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल होता है, तो क्या IITs में और जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं भारत के, वो डिफेंस के क्षेत्र में इस तरीके का काम कर सकते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन सके, या ऐसे वेपन्स का निर्माण कर सके कि हमें दूसरी की तरफ मुंह ना ताकना पड़े और उसको हम रिटेलिएट कर सकें सामने वाले को?
1: जी, आपने बड़ा सुंदर विषय उठाया है, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है,
0: जी
1: और चिप डिज़ाइन और चिप टेक्नोलॉजी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल पिछले कई वर्षों से प्ले करता आया है और आगे भी करेगा। जितनी अभी तक की भारत में जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनते हैं, ज़्यादातर इंपोर्ट किए जाते हैं,
0: जी
1: और उसमें जो भी मशीनरीज इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती हैं वो भी कहीं ना कहीं बाहर ही फैब्रिकेट होते हैं। इसमें हमारे सिक्योरिटी काफ़ी कंसर्न रहता है, तो पिछले कई वर्षों से इंडिया में इंडियन प्रोसेसर्स जो इंडिया में डेवलप हुए हैं, वेगा प्रोसेसर है, शक्ति प्रोसेसर है, ऐसे तमाम प्रोसेसर इंडिया में डेवलप हुए हैं, और आने वाले दिनों में इसका लगातार एप्लीकेशंस हो रहे हैं और इसको करे जा रहे हैं, स्पेशली डिफेंस में ड्रोन वगैरह में कर रहे हैं लोग।
0: जी
1: IIT इंदौर में हम लोगों ने भी स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की है,
0: जी
1: और काफ़ी संस्थान इसमें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे चिप डिज़ाइन आत्म भारत के लिए, प्रदेश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा।
0: जी बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं उस स्किल की जो चिप डिजाइनिंग के लिए और चिप की जो एप्लीकेशंस हैं, खासतौर से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं और कंज्यूमेबल गुड्स के जो एप्लीकेशंस हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इसके लिए किस तरीके की साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी? कि जैसे IIT लेवल की अगर हम बात करें, NIT लेवल की बात करें, या किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें, तो नो डाउट जो बेसिक साइंस के ऊपर जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम वो करते हैं, लेकिन इन कामों के लिए हमें एक स्किल की ज़रूरत होगी जो ग्राउंड में काम करते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं। तो इस तरीके के ओरिएंटेशन के लिए, इस तरीके का मैन पावर विकसित करने के लिए हमें किस तरीके की साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा?
1: जी, डिज़ाइन की अगर बात करें, चिप डिज़ाइन की, तो भारत दुनिया का दूसरा देश है जहाँ पे चिप में डिज़ाइन करी जाती है, और इसके लिए जो मैन फोर्स चाहिए होते हैं
0: जी
1: वो ज़्यादातर बीटेक और एमटेक और डॉक्टरेट लेवल के कैंडिडेट्स इन्वॉल्व हुए हैं पिछले कई वर्षों से।
0: जी
1: बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, नोएडा, शहर के अन्य भी शहर जहाँ पे चिप डिज़ाइन की काम हो रही है। चूँकि हम लोग पिछले कई वर्षों से डिज़ाइन में इन्वॉल्व रहे हैं
0: जी
1: और मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, इसलिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग और ITI लेवल के स्किल्ड मैन फोर्स की कभी देश में चर्चा नहीं हुई।
0: जी
1: लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लिए जो लगातार अभी एक सेमीकंडक्टर विषय निकल के आया है, और पार्लियामेंट लगभग 76,000 करोड़ रुपए इसमें नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रही है,
0: जी
1: हमें एक ऐसे मैन फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी जो ग्राउंड लेवल पे टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग इसमें काम कर सकें। उसको आप ITI लेवल का या डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज की डिज़ाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी।
0: जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर इस लेवल को हमने क्रॉस कर लिया तो एक क्रांति चिप डिजाइनिंग की और चिप मैन्युफैक्चरिंग की भारत में हम ला सकते हैं,
1: जी,
0: और उसके आधार पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या दूसरे जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर संतोष कुमार जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो IIT का इन्वॉल्वमेंट है, पब्लिक इंटरेक्शन है, इंडस्ट्री के साथ जो कोलाबरेशंस है, या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के साथ जो कोलाबरेशंस हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये कितना और आगे बढ़ना चाहिए?
1: मेरा तो इस विषय को लेके एक शुरू से रहा मानना है कि कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम का निर्माण होना चाहिए। जब तक सारे संस्थान या किसी प्रदेश के या देश के या विश्व के जब तक एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, एक्सचेंज ऑफ द रिसोर्सेज नहीं करेंगे, तो अच्छे एक वातावरण का निर्माण नहीं हो पाएगा।
0: जी बिल्कुल
1: तो चाहे वो मैनेजमेंट के संस्थान हो, मेडिकल के संस्थान हो, इंजीनियरिंग के संस्थान हो, इवन आर्ट्स के संस्थान हो, उन सबको मिलकर के एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: जिसको हम लोग कह सकते हैं कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम।
0: जी
1: तो मुझे लगता है कि हमारा भारतवर्ष और हमारा मध्य प्रदेश एक अलग ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होगा।
0: जी बिल्कुल। और थोड़ी सी बात अब हम IIT इंदौर की करेंगे कि IIT इंदौर में किस तरीके के स्ट्रीम्स हैं, किस तरीके के ब्रांचेज हैं जहां पर लगातार इनोवेशन हो रहा है, रिसर्च का काम हो रहा है, और इस रिसर्च का जो पब्लिक यूटिलिटी है या कहें साइंटिफिक यूटिलिटी है, इसमें किस तरीके का प्रयोग हो रहा है?
1: IIT इंदौर

0: में काफी रिच रहा है
1: हम्म,
0: और ऑलमोस्ट लगातार इनोवेशन हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे विधाओं में हो रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में रिसर्च और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी TRL लेवल पे भी लगातार हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्थाओं में जो रिसर्च का एंगेजमेंट लेवल अभी तक रहता है जनरली 1 to 2 to 3 तक रहता है, TRL 1 टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 1 to 3 तक। लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें अपने TRL लेवल को बढ़ाना होगा, इंडस्ट्री के साथ जहां तक हम रिसर्च खत्म करते हैं इंडस्ट्री के साथ मिलकर उस TRL 4, 5, 9 तक बढ़ाना होगा,
1: जी
0: तब हमारा भारतवर्ष और अपना प्रदेश मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेगा। और इस कदम में IIT इंदौर आसपास के इंडस्ट्री के साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन का निर्माण कर रहा है और पिछले कई वर्षों से कर रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंडस्ट्री एकेडमिया एंगेजमेंट और स्ट्रांग होगा और TRL लेवल हम अपना बढ़ाने में सक्षम होंगे।
1: जी बिल्कुल। देखिए, इंदौर का सौभाग्य है कि यहाँ पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है और सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि लेज़र और एक्सीलेटर्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इतना अच्छा काम कर रहा है कि अभी जब गॉड पार्टिकल का टेस्टिंग हुआ था जिनेवा में, तो उसके लिए जो डिस्क बनाई गई थी वो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर से भेजी गई थी उनके लिए, जो मैग्नेटिक डिस्क और जो एक्सीलेटर जिसमें वो पार्टिकल का इन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो क्या IIT इंदौर और सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये दोनों कोलैबोरेशन में मिलके कुछ ऐसा नया कर रहे हैं जो भारत के लिए, जो विज्ञान के लिए, या कहें कि डिफेंस के लिए, या किसी और दूसरे फील्ड के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला हो?
0: जी, RR कैट के साथ IIT इंदौर का कोलैबोरेशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग विधाओं में तमाम प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, फिजिक्स के, इलेक्ट्रिकल के, कंप्यूटर साइंस, ऑलमोस्ट सारे लोग, काफ़ी लोग काम करते हैं, और उसको अभी और भी एक्सलरेट किया गया है काम के एंगेजमेंट लेवल को।
1: अच्छा।
0: जी
1: और दूसरा एक इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, सेंटर फॉर रिसर्च फॉर एटॉमिक एनर्जी, तो उनके यहाँ भी मटेरियल साइंस के ऊपर काफ़ी कुछ काम होता है और लो टेम्परेचर फिजिक्स के ऊपर भी काफ़ी काम होता है। तो उनके साथ किस तरीके का कोलैबोरेशन IIT इंदौर कर रहा है?
0: जी उनके साथ भी काफ़ी प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स अपने करेक्टराइजेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ये संस्थान है उसको स्थापना इसीलिए करी गई थी, आसपास के जितने यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस के रिसर्चर्स हैं जहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं हैं वो जाके अपने चीज़ों को करेक्टराइज कर सकें। और तो हमारे यहाँ भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होता है रिसर्चर्स जाते हैं और उन सुविधाओं का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं।
1: जी बिल्कुल। और दूसरा एक सवाल मन में आता है कि जो डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट हैं भारत में, जैसे कि DRDO है या ISRO है, तो दोनों के अलग अलग मैंडेट हैं। वो डिफेंस रिसर्च के लिए काम करता है, ये स्पेस साइंस के लिए ISRO काम करता है। तो एक एक मिशन की तरह जितने हमारे IITs हैं पूरे भारत में, आपने बताया कि 22-23 इंस्टीट्यूट हैं इस तरीके के नेशनल लेवल के, और नो डाउट उनका भारत में ही नहीं विदेशों में भी बड़ा सम्मान है उनके, जो जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी गुणवत्ता है। तो ऐसे में जो DRDO का काम है और जो ISRO का काम है, तो बतौर एक ब्रांच, बतौर एक स्ट्रीम, क्या IITs में इस तरीके का इंडक्शन हम कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं?
0: जी मुझे लगता है कि सारे IITs और NITs कहीं न कहीं डिफेंस और स्पेस में काम कर रहे हैं। IIT इंदौर की बात करें तो यहाँ पे भी एस्ट्रो एंड स्पेस इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट है
1: जी
0: और साथ में एक सेंटर ऑफ फ्यूचरिस्टिक डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का स्टैब्लिशमेंट भी किया गया, और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो IITs के बच्चे हैं, BTech, MTech, डॉक्टरेट लेवल के, AMSC के बच्चे हैं, उनमें एक राष्ट्र भावना और देश को समर्पित साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस के लिए डेवलप करने की प्रवृत्ति जागृत हो। इसके तहत एक सेंटर भी बनाया गया था 2018 में मेरे ख्याल,
1: जी
0: और लगातार उसमें काम चल रहा है। और आसपास के जो एकेडमिक रिसर्च संस्थान है जैसे MCT मऊ है, वार कॉलेज है, इन्फेंट्री स्कूल है, उनके साथ भी एक्टिव कोलेबोरेशन हो रहा है। और अभी इस देश को टेक्नोक्रेट तो चाहिए, लेकिन टेक्नोक्रेट के अलावा उनको राष्ट्र सेवा करने के लिए भी चाहिए होगा।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: हम मुझे लगता है कि टेक्नोक्रेट्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए काम करने वाले भी मैन पावर जनरेशन करने की देश में आवश्यकता है।
1: जी, जैसा कि आपने बातचीत में बताया था कि एमसीटी महू के साथ आपने एक प्रयोग किया था, तो वो किस तरीके

0: का प्रयोग था वो हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी, इसमें लगातार प्रयास चल रहे हैं कि एक ऐसे कोर्स का निर्माण हो जिसमें बच्चा कोर्स भी अटेंड करे और उसका बैटल ट्रेनिंग भी हो, क्योंकि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के लिए चीजें तभी आगे आ सकती हैं जब वो बैटल में, जैसे डिफेंस में ट्रेनिंग्स होती है, ऐसे ही होती। तो हमारा जो बीटेक एमटेक पीएचडी का स्कॉलर है वो उस तरह की ट्रेनिंग क्लासरूम में भी ले और बैटल ट्रेनिंग भी ले, काउंट ऑफ ग्राउंड में बकायदे गन तोप चलाना, मशीनरी यूटिलिटीज को चलाना भी सीखे, तो वो उस तरह का रिसर्च इनोवेशन करेगा दैनिक जीवन में और इससे राष्ट्र को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा।
0: जी, एक चीज डॉक्टर संतोष छूट रही है जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। जब हम चिप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे तो आपने बताया कि जो चिप टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल तो फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये नैनो टेक्नोलॉजी में भी उतनी ही इस्तेमाल है। तो जो जितना एडवांसमेंट हो रहा है ऐसे में हमें कई बार सुपर कंप्यूटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ रही है हमारी हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी में हो, मिसाइल के लिए हो, या और दूसरे साइंटिफिक रिसर्चेज के लिए हो। तो चिप का जो निर्माण है और चिप की जो टेक्नोलॉजी है वो सुपर कंप्यूटर्स के निर्माण में और उसकी क्वालिटीज़ को और एनहांस करने में कितनी इम्पोर्टेंट है।
1: जी, बहुत सुंदर विषय उठाया है, क्योंकि जब हम चिप डिज़ाइन करते हैं तो कहीं के एक हमें कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता होती है, और जिस कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उतने सुंदर तरीके से हम चिप डिज़ाइन को सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो अभी लगातार जो चिप डिज़ाइनर हैं नॉर्मल मशीन के अलावा वर्क स्टेशन जीपीयूज पे भी करे जाते हैं, तो नो डाउट एक अच्छे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट तो रहती है चिप डिज़ाइन।
0: जी, तो सुपर कंप्यूटर के लिए भी चिप डिज़ाइनिंग और चिप का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी,
0: और डॉक्टर संतोष कुमार जी, अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की ओर है। हम अपने जो आने वाले बच्चे हैं जो आईआईटी की ओर जाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि केवल पढ़ाई ही ना हो, इसके अलावा वो और ऐसा उनमें क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए कि इस देश को वो आईआईटी से पढ़ने के बाद वापस कर सकें।
1: ब्रेन ड्रेन वर्षों से एक भारत की समस्या रही है कि हमारे नौजवान पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं अपने देश को समर्पित सेवाएं कम करते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से आपके भी अनुभव में आया होगा कि अब हमारे बच्चे विदेशों में कम सर्विस, भारतवर्ष में सर्विस ज्यादा देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अच्छे वातावरण का निर्माण हुआ है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा अपने आने वाले जनरेशन को कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, और भारतवर्ष को कैसे सोने की चिड़िया बनाए और इसमें नौजवान फिर से आ मिले, तो भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया थी वापस सोने की चिड़िया बनाने में हम सब अनमोल योगदान दे सकते हैं। भारत में एक वातावरण का निर्माण हुआ है और उस वातावरण में हम सब मिलेंगे तो फिर से सोने की चिड़िया हमारी भारतवर्ष बन सकती
0: है। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा, जो कि प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आईआईटी इंदौर में। हम उनसे बात कर रहे थे चिप डिजाइनिंग की, चिप के एप्लीकेशंस की, और हमने उनसे बात की साइंटिफिक टेम्परामेंट की, विज्ञान की, बहुत सारी इस दौरान हमने उनसे बातें की और जाना कि किस तरीके से जो वैज्ञानिक अप्रोच है, विज्ञान की तरफ जो झुकाव है, वो देश को आत्मनिर्भर बना सकता है डिफेंस में, हमारे सामाजिक जीवन में और दूसरे क्षेत्रों में। तो डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अभी कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं लोक संगीत। कलाकार हैं रामगीर वर्मा और साथी।
4: राम नगरिया राम की।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत। कलाकार हैं रामगीर वर्मा और साथी। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में एक और पारंपरिक रचना।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लोक संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं एक और पारंपरिक रचना, आवाज है रामगीर वर्मा और साथी की।

लोक संगीत में आप सुन रहे थे रामगीर वर्मा और साथी के गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं शीला वर्मा की गाई कुछ रचनाएं। सबसे पहली रचना अब आपको सुनवा रहे हैं। ये रचना लिखी है जहां कादर चुगताई ने।

जहां कादर चुगताई की रचना आप सुन रहे थे, स्वर था शीला वर्मा का। इन्हीं के स्वर में आप सुनते हैं चंद्र सखी की रचना।

चंद्र सखी की रचना आप सुन रहे थे। स्वर था शीला वर्मा का। इन्हीं के स्वर में कार्यक्रम की आखिरी रचना रसिक खुशाल की।

रसिक खुशाल की रचना आप सुन रहे थे, स्वर था शीला वर्मा का। आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं अमान अली बंश का सरोद पर बजाया राग गुजरी तोड़ी।

0: शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे अमान अली बंश का सरोद पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी

0: भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख नवीन श्रीवास्तव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। प्रदेश में 19 मार्च से 30 जून तक चलाए गए जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्वालियर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जल सहेजने के कार्य करवाए गए। जिले में 18,704 कार्य हुए, जिसमें लगभग 24 लाख घनमीटर जल संग्रहण क्षमता की बढ़ोतरी हुई है। ग्वालियर में 1,000 अमृत मित्र बनाए गए हैं। इस अभियान के समापन अवसर पर मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों और शासकीय सेवकों को सम्मानित किया। ग्वालियर जिले में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन का शुभारंभ बीते दिनों जनपद पंचायत मुरार की ग्राम पंचायत उदयपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर जाटव ने किया। इस कार्यक्रम में वीर नारी स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से निर्मित पर्यावरण अनुकूल मालाओं से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अभिनव पहल ने पर्यावरण संरक्षण और महिला स्वसहायता समूहों की सृजनात्मक भूमिका का प्रभावी संदेश दिया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बीते दिनों मध्य प्रदेश के भ्रमण के उपरांत 22 जून को ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा एवं महापौर शोभा सिकरवार ने विदाई दी। पल्स पोलियो अभियान के तहत ग्वालियर जिले में बनाए गए 2,356 बूथों पर जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को जिंदगी की 2 बूंद पिलाकर पोलियो रक्षा कवच पहनाया गया। जिले के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। पल्स पोलियो अभियान के तहत घर घर जाकर भी पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में उन्नत कृषि पर संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने किसानों के जैविक व प्राकृतिक खेती पर अनुभव सुने, इसके साथ ही उनसे सीधा संवाद किया। डॉ. यादव ने ग्वालियर में मूर्त रूप लेने जा रही अत्याधुनिक हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भी रिमोट के जरिए भूमि पूजन किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर के खुरैरी व ग्राम जहांगीरपुर में इस हाईटेक नर्सरी के प्रथम चरण का कार्य होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों को हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में समन्वित कृषि प्रणाली इकाई एवं बहुस्तरीय कृषि पद्धति इकाई का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आम का पौधा रोपा। उन्होंने इस अवसर पर वृहद स्तर पर पौधे रोपने और उनकी सुरक्षा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सड़क सुरक्षा के उपहार स्वरूप जिले के लगभग 50 लोगों को हेलमेट भी वितरित किए। ग्वालियर जिले में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। शक्ति दीदी नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाएं पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर का मोर्चा संभालकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस माह भी कई जरूरतमंद महिलाएं शक्ति दीदी बनी हैं। जिले में अब तक 123 जरूरतमंद महिलाओं को शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित प्रदेशव्यापी विशेष साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के अंतर्गत बीते दिनों ग्वालियर पुलिस द्वारा रोटरी क्लब ग्वालियर और भारत विकास परिषद शाखा ऋषि गालव के सहयोग से विशाल साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सुरक्षित डिजिटल समाज बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज अरविंद सक्सेना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजावल सिंह जग्गा द्वारा जिला खेल परिसर कंपू से हरी झंडी दिखाकर किया गया। बीते दिनों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत देश भर में 200 स्थानों पर हुए कार्यक्रमों के साथ ग्वालियर में भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम से इस योजना के तहत देश भर के लाभार्थियों के खातों में 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की, जिसमें कर्मचारी, भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर से जुड़े कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के खातों में पहुंची लगभग 4 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है। महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की 4 बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने शानदार प्रदर्शन से मध्य प्रदेश और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। हाल ही में जापान में आयोजित हुए महिला अंडर-18 हॉकी एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्वालियर की 4 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों नौशी नाज, नम्मी, गीताश्री, स्नेहा दावड़े और महक परिहार का कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। ग्वालियर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख नवीन श्रीवास्तव का था और वाचक थे अभिषेक कटियार।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच

0: हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर आपको बता देते हैं। हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो चलिए जुड़ते हैं पहले श्रोता से। हेलो
2: हेलो,
0: नमस्कार MH हॉटलाइन।
2: नमस्कार,
0: कौन बोल रहे हैं?
2: भूपेंद्र कुमार गुप्ता, कोटा राजस्थान से निवेदन कर रहा हूँ। मैडम
0: गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी बता दें, कौन सा गीत सुनेंगे?
2: आधी रात की बात का सुना दो।
0: आधी रात की बात,
2: बहुत अच्छी है तुम्हारी आंखें, कहो तो इनसे प्यार।
0: वाह, बहुत बढ़िया गीत पसंद किया है आपने। पुराने गीत ज्यादा सुनते हैं शायद आप।
2: आज आपने बढ़िया सभी गायिकाओं के गीत सुनाए।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। आपने सुबह का प्रोग्राम भी सुना।
2: सुमन कल्याणपुर का नहीं सुनाया शायद?
0: हाँ, सुमन कल्याणपुर का नहीं सुनाया। एक्चुअली क्या, बहुत कम समय होता है और उस समय में बहुत सारी गायिकाओं को शामिल करना संभव नहीं है, तो जो शामिल हो पाई। जी जी जी,
2: उसकी कमी मैं पूरी कर देता।
0: बिल्कुल। ये हुई ना कोई बात। बहुत अच्छा गीत पसंद किया है, सुनवा दे आपकी पसंद का गीत।
2: अभी अभी छोड़ के गई है वो अपने को।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल
2: ठीक है। धन्यवाद
0: धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार, मैं राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ, राजा राम नगर देवास से। दीदी
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। गीत बता दें, कौन सा सुनेंगे?
1: ये गीत है आज दीदी, संगीतकार मदन मोहन जी की पुण्यतिथि आज, और उनका ही बनाया हुआ गीत है। तो दस्तक पिक्चर का हम है मताए कूचा बाजार की तरह, लता जी की आवाज में है ये।
0: जी जी।
1: और उन आज रोशन साहब का भी जन्मदिन है, रोशन संगीतकार, उनको भी नमन करते हैं, और मदन मोहन जी को भी नमन करते हैं। सभी श्रोता उनकी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और आपने सुबह कार्यक्रम मैंने आपका सुना था, जैसे आपने जो गायिकाओं के गीत कम बजते हैं वो आपने सुनवाए थे।
0: जी जी।
1: तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगा है, इस तरह से गीत होना चाहिए जो के सभी श्रोताओं को पता रहे कि भाई ये भी गायिका अच्छी थी।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम सुना और गीत भी बहुत बढ़िया पसंद किया है आपने।
1: लोकेंद्र वर्मा उज्जैन वाले भी इस गीत को ही पसंद कर रहे हैं।
0: जी जी जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का गीत। आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन। हेलो,
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कहाँ
1: बहुत ही बढ़िया हूँ मैडम।
0: से बोल रहे हैं?
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम। धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। शायद पहली बार बात हो रही है।
1: जी बिल्कुल मैडम, आज पहली
0: जी
1: बार आपसे बात हो रही है। वैसे दो
0: जी
1: तीन बार मैं जुड़ चुका हूँ।
0: जी हाँ, आप कम जुड़ते हैं।

0: क्योंकि हम भी सुनते हैं घर पर रेडियो, तो समझ में आता है ना कौन श्रोता जुड़ते हैं हमसे।
1: जी
0: जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा।
0: जी जी जी, बिल्कुल कहिए।
1: दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात न सही पर बातों का सिलसिला रखना, छू लो तुम आसमां को ये मेरी तमन्ना है, पर हम तक वापिस आने का ये धवनी ताल की तरंगों का रास्ता याद रखना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात, बहुत अच्छी लाइंस आपने कही। और गीत बता दें, गीत कौन सा सुनेंगे?
1: आज सुबह जो आपने नगमे सुनाए थे
0: जी,
1: वो बहुत ही अच्छे लगे
0: जी।
1: सभी गायिकाओं के ऊपर अलग अलग जो आपने प्रस्तुति दी वो बड़ी शानदार थी,
0: जी,
1: अच्छी
0: जी
1: लगी सुनकर।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप प्रोग्राम सुनते हैं, हमारे कार्यक्रम की दाद देते हैं, उसका जो भी हम सुनाते हैं आपको, तो बहुत अच्छा लगता है हमको। और अच्छे कार्यक्रम करने की हमें हम कोशिश करेंगे और भी। आज गीत बता दें, कौन सा बताएंगे सुनेंगे आप?
1: सर गीत है, मैडम गीत है नया दौर मूवी से
0: जी, कौन सा?
1: और गाने के बोले, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार।
0: वाह, बहुत अच्छा गीत है जी।
1: इस गीत को मैडम तीन दोस्त मेरे जो दिल के बेहद ही करीब रहते हैं उनके साथ में चाय की चुस्कियों के साथ में इस गीत का आनंद लेंगे। सबसे पहले हैं मैडम आप नंबर वन पर
0: जी,
1: सेकंड नंबर पर मैं, और थर्ड नंबर पर हैं मेरे दोस्त आकाशवाणी MH हॉटलाइन सुनने वाले इंदौर के सभी साथी भाई बहन।
0: जी जी जी, आप सभी श्रोताओं के साथ। और बहुत अच्छा गीत पसंद किया है आपने, सुनते हैं आपके पसंद का गीत सभी के साथ।
1: धन्यवाद मैडम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी आपसे। जी
0: ओ हो, बहुत दूर से बात कर रहे हैं आप, महाराष्ट्र से। बहुत अच्छा लगता है
1: जी
0: हमें
1: बोल
0: जब दूर दूर के श्रोता हमसे जुड़ते हैं और नए नए
1: जी
0: श्रोता
1: जी
0: जुड़ते हैं, तो और खुशी होती है।
1: बिल्कुल दीदी, मैं इसे 4-5 महीने पहले लगाया था
0: जी
1: और आज आपसे बात हो रही है,
0: जी जी जी कौन सा
1: मुझे
0: गीत
1: बेहद खुशी हो रही है।
0: खुशी हो? जी, कौन सा गीत सुनेंगे बताएं।
1: आज देखो, संगीतकार मदन मोहन का पुण्यतिथि है
0: जी
1: और मदन मोहन साहब ने बहुत से फिल्मों में संगीत दी और एक से एक संगीत था उनका। जैसे कुछ बहुत से हिट फिल्मों में और गाने थे, झुमका गिरा रे, बरेली की बाजार में, ऐसे गाने भी बहुत से संगीत दी। मुझे सुनना है उनका संगीत का आनफड़ फिल्म का,
0: जी
1: आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल नहीं थी, ये गाना सुना है दीदी।
0: बहुत बढ़िया गीत है। और
1: जी
0: आज
1: दीदी बहुत
0: मतलब सुबह से ही अच्छे गीतों का माहौल चल रहा है, ये कहें तो कुछ
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल यार, अब तक शाम तक भी अच्छा चलेंगे मैडम।
0: हाँ, ऐसा ही लगता है कि आज
1: हाँ
0: कुछ अच्छा लग रहा है, कि अच्छे गीत बज रहे हैं
1: हाँ
0: आज।
1: दीदी, और कैसी है बारिश आपके इंदौर में दीदी?
0: अरे, हमारे यहाँ तो बारिश का बुरा हाल है, बिल्कुल भी नहीं गिर रही बारिश। करीबन
1: जी
0: एक
1: जी
0: हफ्ता हो
1: हमारे
0: गया
1: पास
0: बारिश नहीं है।
1: हमारे पास 4 दिन बरसा बारिश, अभी
0: जी
1: गायब होगा, फिर धुपकाला चालू हुआ।
0: जी जी जी महाराष्ट्र में
1: ऐसे
0: वैसे काफी
1: बहुत
0: पानी गिर चुका है।
1: ये कुछ उधर इलाकों में गिरा, मगर हमारे जो मराठवाड़ा एरिया में नहीं गिरा दीदी।
0: अच्छा, वहां नहीं गिरा।
1: हाँ, हम तेलंगाना बॉर्डर पे है। हाँ,
0: अच्छा, जी बिल्कुल,
1: और पानी की जरूरत है किसान।
0: बहुत जरूरत है क्योंकि
1: हाँ
0: बोनी हो गई है, किसानों ने बीज बो
1: तो,
0: दिए हैं, लेकिन
1: और
0: बारिश नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होगा।
1: बहुत मुश्किल होगा, तो
0: जी
1: भगवान से प्रार्थना कर रही बारिश होना बोल। ठीक
0: हाँ, जी बिल्कुल,
1: है, कुछ दीदी
0: चल
1: मित्रों का नाम लेता हूँ।
0: बिल्कुल लीजिए।
1: हमारे आलो आकाशवाणी ग्रुप के गौतम जी राय बोले, तुकाराम जादव, भगवान सिंह जी है, और लोकेंद्र वर्मा जी है,
0: जी
1: और सुनील झा, दिलीप पाउजा, उदयला टेलर जी है,
0: जी
1: और राजेंद्र गंगवार जी है, और तनुश्री है सातारा से।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा। इतने सारे श्रोता आप सभी के साथी हैं और रेडियो सुनते हैं, बहुत अच्छा
1: बिल्कुल
0: लगता
1: बिल्कुल
0: है।
1: सुनता हूँ दीदी,
0: जी चलिए सुनवाते
1: बहुत
0: हैं।
1: बहुत आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आपको भी सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ जी हेलो
0: हेलो, नमस्कार।
1: जी, मैं हर गोविंद हर बार बोलो मैडम जी। सागर,
0: सागर से बोल रहे हैं। सागर से कौन बोल रहे?
1: हर गोविंद अहिरवार।
0: हर गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहले भी कॉल कर चुके हैं?
1: जी बहुत पहले लगाया था मैडम जी, दो
0: बहुत
1: महीना
0: पहले।
1: पहले। जी
0: अच्छा, हाँ, आपसे बात मेरी शायद पहली बारी हो रही है
1: जी जी
0: जी।
1: आप
0: कौन?
1: कौन मैडम जी बोल रही हैं जी?
0: मैं पद्मश्री।
1: जी जी जी
0: हाँ, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: वो साजन का घर फिल्म का गाना सुना है मैडम जी, हम गाते भी हैं।
0: अच्छा, गाते भी हैं आप, सुनाइए
1: जी
0: फिर।
1: जी जी

0: करती हूँ तुझसे प्यार, पास मुझे आने दे।
1: वाह, बहुत अच्छा गीत गाया आपने
0: जी।
1: और क्या करते हैं?
0: बट मैडम जी, हम देख नहीं सकते, ब्लाइंड है मैडम जी।
1: अच्छा
0: जी जी, आपके नियमित कार्यक्रम सुनते हैं मैडम जी।
1: अच्छा, क्या बात है। गाना भी आपने आपने आप मेल और फीमेल दोनों दोनों आवाज में गा लेते हैं शायद।
0: जी जी जी
1: हाँ चलिए,
0: ये भी सीखा जी
1: जी, ये भी एक हुनर है
0: जी जी।
1: सभी सभी नहीं कर पाते हैं, काफी कम लोग कर सकते हैं ऐसा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।
0: नाम ले सकते हैं मैडम?
1: बिल्कुल नाम ले सकते हैं, लीजिए।
0: हमारे हमारे गजेंद्र भैया हैं, आनंद भैया जी हैं
1: जी
0: जी, और राजन नगर गंज बासोदा से भागचंद साहू जी, और उज्जैन से लोकेंद्र वर्मा जी।
1: जी जी जी जी
0: जी, ओके।
1: चलिए, सबके साथ सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए
0: जी।

0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत
1: जी,
0: सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है फूल और कांटे और गाने के बोल हैं पहली बारिश में और तू।
0: जी, ज़रूर सुनवाएंगे आपको ये गीत। बारिश हो रही है क्या वहाँ?
1: नहीं अभी तो नहीं हो रही मैम।
0: नहीं हो रही है, हुई थी पहले।
1: हाँ पहले हुई थी
0: हाँ, तो क्या करते हैं आप?
1: मैम, हम खेती बाड़ी करते
0: खेती
1: हैं।
0: बाड़ी करते हैं। हाँ, तो बोनी वगैरह हो गई होगी,
1: हाँ बिल्कुल, धान की बोनी हो चुकी है,
0: धान
1: धान
0: की?
1: लगाते हैं हम।
0: अच्छा, तो फिर धान के लिए तो पानी बहुत लगता है वैसे।
1: बिल्कुल, इसलिए तो इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए अच्छी और पानी की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाए।
0: हाँ, बारिश होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फसलें ख़राब होने की चांस है।
1: जी,
0: और क्या करते हैं खेती के अलावा?
1: और बस आपके कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं।
0: अच्छा, कार्यक्रम सुनते हैं आप? हाँ,
1: बिल्कुल।
0: कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मन भावन है, MH हॉटलाइन है, युववाणी कार्यक्रम है, सुनहरे पल है,
0: अच्छा
1: और भी तमाम कार्यक्रम आपके जितने भी आते हैं।
0: अच्छा
1: और रविवार को जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था जो राजेंद्र कुमार जी पर था, शायद
0: जी,
1: शाम को वंदना मैडम ने प्रस्तुत किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा
1: इसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: अच्छा राजेंद्र कुमार हीरो।
1: हाँ, उनकी पुण्यतिथि थी शायद 12 जुलाई को।
0: अच्छा, जी बिल्कुल, आपने जो पसंद किया है प्रोग्राम, हम उन तक ज़रूर पहुंचा देंगे। और इसी तरह सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के, और हमसे जुड़ते रहिए, है ना
1: जी
0: जी। सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत,
1: धन्यवाद मैम।
0: फूल और कांटे फिल्म से, सुनिए।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ दीदी नमस्ते। आपके
0: नमस्ते। हाँ
1: नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासोदा, जिला दीदी का।
0: जी, वैसे तो आपकी आवाज़ से हम पहचान गए थे, और अभी एक श्रोता ने भी आपकी आपकी तरफ से एक गीत बजा दिया है, बजवा दिया है वैसे।
1: अच्छा कहाँ से थे दीदी, हमने सुन नहीं पाए। हाँ
0: हाँ, इसके पहले वाला ही जो गीत था वो। जी, और बताएं
1: अच्छा,
0: कौन सा गीत
1: वो
0: सुनेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है दिल।
0: दिल फिल्म का कौन सा?
1: हाँ वो मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए,
0: जी, जरूर सुनवाएंगे
1: ये
0: आपको
1: गीत अभी
0: गीत।
1: बजा भी नहीं है, ये गीत भी नहीं बजा है अभी।
0: हाँ, अभी आज के अभी तक तो नहीं बजा है, और वैसे काफी दिनों से बजा नहीं है, ये बात भी सही है। वैसे भी आप ऐसे अलग अलग किस्म के गीत ही चुनते हैं आप, जो कभी सुने नहीं जाते, ऐसे ही पसंद करते हैं आप वैसे।
1: नहीं, हम वो क्या है दीदी, हम लिस्ट बना के रखे हुए हैं, जो
0: अच्छा
1: गीत नहीं बजते हम वो लिस्ट हम वो हिसाब से गीत निकालते
0: अच्छा
1: हैं।
0: कितने गीत हैं अभी जो नहीं बजे हैं आपके पास लिस्ट में?
1: अभी लगभग हमारी लिस्ट में है 5,500।
0: 5,500? ओ हो।
1: हाँ बिल्कुल, लिस्ट बिल्कुल कंप्लीट है वे।
0: चलिए, उसमें से एक
1: और
0: गाना
1: दीदी
0: कम हो
1: मौसम कैसा है
0: जाएगा।
1: इंदौर का, मौसम कैसा है इंदौर में?
0: इंदौर का मौसम तो मौसम अच्छा है, गर्मी तो नहीं है अभी, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही
1: अच्छा
0: है, उमस है।
1: अच्छा दीदी, हाँ बिल्कुल दीदी, आइए गंजवासोदा पानीपुरी सेंटर का ठेला भी लगा
0: जी
1: देना।
0: जी जी बिल्कुल आएंगे, जब भी आएंगे आपकी पानी पूरी जरूर खाएंगे।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: दीदी आइए गंजवासोदा आइए। ठीक
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, है ना?
1: है दीदी, नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार पद्म जी। हाँ,
0: नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: मैं अनिल भंडारे सुजामानगर से बोल रहा हूँ।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार। कौन सा गीत सुने
1: आप आज
0: आज?
1: आपका प्रोग्राम सुना, पुराने गीतों का बहुत मजा आया, अच्छा लगा। तो आपके लिए बजाई आपको,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम सुना?
1: आपने पुरानी यादें ताजा कर दी हमारे गीत सुना के। बहुत
0: जी,
1: मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद लिया हमने सुबह।
0: जी बहुत धन्यवाद।
1: और आप दिन भर से सुबह से हम मदन मोहन संगीतकार, रोशन संगीतकार, जो महान संगीतकार के गीत सुन रहे हैं, मजा आ रहा है।
0: जी
1: और उनको
0: जी
1: याद कर रहे हैं, उनको समारोह से सादर नमन।
0: बिल्कुल, हम सभी की ओर से उनको सादर नमन।
1: आज
0: और
1: हम मदन मोहन के संगीतकार का अदालत फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे, जो
0: जी कौन सा गीत?
1: लता मंगेशकर ने गाया है, जानत हम से दूर बहाने बना ली। ये गाना बहुत
0: बिल्कुल,
1: जोरदार है,
0: बहुत बहुत
1: उनकी याद में हम लोग गाना सुन रहे। वो तो चले गए हमें छोड़ के, लेकिन उनकी याद में उनके हजारों गीत आज हम सुन को याद करते हैं।
0: जी, हजारों गीत हैं
1: हाँ,
0: और बहुत सुमधुर गीत हैं। मतलब
1: वो
0: कितने भी बार सुनो ऐसा लगता है सुनते ही रहो सुनते ही रहो, ऐसे गीत।
1: बड़े आदमी चले जाए दुनिया से, लेकिन उनकी संगीत अमर रहता है, हमेशा
0: संगीत अमर रहता है। बिल्कुल,
1: वो कभी नहीं मरता, हमेशा याद करते हैं अपन।
0: जी चलिए, बहुत अच्छा लग,
1: ये गाना सुना के हमारे पुरानी यादें ताजा कर दिया आप।
0: बिल्कुल, आपकी पुरानी यादें ताजा करते हैं और आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। सुनिए,
1: थैंक यू वेरी मच,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: मैम ठीक हैं? आप बताइए कैसे हो। मैं श्रीपाल गोयल दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
0: हाँ, हम भी बढ़िया हैं। और आप दिल्ली से बात कर रहे हैं जी?
1: जी
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मैम, फिल्म यादें से है, ऐ दिल दिल की दुनिया में।
0: यादें फिल्म का ए दिल दिल की
1: ऐ दिल
0: दुनिया
1: दिल की
0: में।
1: दुनिया।
0: जी, ज़रूर
1: हाँ जी
0: सुनवाएंगे आपको ये गीत। और कैसे हैं
1: जी
0: आप?
1: मैम, ठीक है मैम। गर्मी बहुत ज्यादा है मैम यहाँ पे आज, क्योंकि जो है कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तो
0: हाँ,
1: बहुत
0: बार
1: पड़ गई है और आज धूप निकली हुई है काफी तेज।
0: आज गर्मी है। वैसे बारिश बहुत हुई है दिल्ली में?
1: हाँ जी, हाँ जी मैम, लेकिन सिर्फ 2 दिन हुई थी मैम, बाकी दिन
0: अच्छा।
1: फिर अभी धूप निकली हुई है दोबारा।
0: सभी जगह यही हाल है। 2-3 दिन बहुत बारिश हुई और उसके बाद जो सूखा पड़ा है कि बारिश का
1: बिल्कुल
0: नाम
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: जी
0: है। सभी जगह
1: जी
0: यही स्थिति है।
1: हाँ जी
0: जी, और कहाँ जा रहे हैं अभी आप?
1: मैम, ड्यूटी जा रहे हैं रास्ते में
0: ड्यूटी
1: थे,
0: जा रहे हैं
1: तो
0: आप?
1: मैंने ऑर्डर दे
0: रास्ते में चलते
1: किया।
0: चलते बात करते हैं ना, तो वो समझ में आ जाता है कि आप चल रहे हैं और बात कर रहे हैं।
1: हाँ जी
0: जी,
1: जी
0: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात हुई, है ना?
1: जी
0: सुनवा
1: धन्यवाद
0: देते हैं
1: मैम।
0: आपकी पसंद का गीत, यादें फिल्म का। सुनिए, धन्यवाद।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया। कहाँ आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का, इंदौर से।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: एक नारी दो रूप फिल्म का नाम है, एक नारी दो रूप, और गाने के बोले दिल का सुना सा तारा का ढूंढेगा।
0: जी,
1: रफी साहब की आवाज है मैडम ये।
0: रफी साहब की आवाज़ है, बिल्कुल सुनवाएंगे
1: हाँ
0: आपको ये
1: जी,
0: गीत।
1: तारीख भी पास में आ गई उनके गानों सुनने की।
0: हाँ, सुबह से रेडियो सुन रही हैं आप?
1: हाँ मैडम, आपके गाने बहुत दिल कस लगे, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, पुराने गाने।
0: पुराने गाने आज सुने? आज आपने सुबह सुनहरे
1: जी
0: पल
1: जी
0: कार्यक्रम में,
1: हाँ,
0: अच्छा
1: सुनहरे
0: लगा
1: पल।
0: आपको?
1: अच्छा लगा मैडम, आपके प्रस्तुति एक नंबर रही मैडम।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुनवा दें आपकी पसंद का गीत?
1: जी मैडम,
0: जी, सुनिए सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: थैंक यू मैडम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन
1: हेलो
0: जी,
1: मेरे को गाना
0: नमस्कार।
1: सुनना। हाँ सागर, अरे सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ, गजेंद्र अहिरवार।
0: गजेंद्र अहिरवार जी, बहुत बहुत स्वागत है
1: हाँ
0: आपका इस कार्यक्रम में। कौन
1: हाँ
0: सा गीत
1: मैं
0: सुनेंगे?
1: मोहरा फिल्म का सुनना है, टिप टिप बरसा पानी।
0: जरूर सुनवाएंगे आपको ये गीत। पानी बरस रहा
1: हाँ
0: है क्या?
1: अभी नहीं गिर रहा है, गिराना है।
0: पानी बिल्कुल नहीं
1: हाँ
0: गिर रहा है।
1: हाँ
0: चलिए, इन गीतों के माध्यम से शायद हम पर दया आ जाए
1: हाँ मैं
0: भगवान को और पानी गिरा दे।
1: हाँ
0: सच में पानी गिर नहीं रहा है, सब फसलें खराब होने की संभावना हो रही है।
1: हाँ मैम,
0: कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है मैम।
0: क्या करते हैं?
1: गर्मी कुछ नहीं, काम तो उधर इंदौर में करते, अभी गांव आए थे। हाँ
0: गांव आए हैं। इंदौर में क्या काम करते हैं?
1: फार्मा कंपनी है, फार्मा
0: फार्मा कंपनी में।
1: दवा। हाँ
0: अच्छा, कौन सी कंपनी है? फार्मा
1: फार्मा ये दवाई इंजेक्शन
0: नहीं, कंपनी कौन सी है? कौन सी कंपनी?

0: मेडिकल।
1: बायोमेडिकल। अच्छा।
0: हाँ मैम।
1: अभी छुट्टी है क्या?
0: नहीं अभी छुट्टी पे आए थे घर पे,
1: छुट्टी पे आए हैं घर।
0: छुट्टी नहीं थी।
1: जी
0: हाँ
1: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात हुई, और समय
0: हाँ
1: बहुत कम है तो आपका गाना सुनवा देते हैं हम,
0: ठीक है मेरा।
1: है ना?
0: हाँ
1: धन्यवाद बहुत बहुत।

0: इस गीत के साथ ही एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन,
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जंजीर का एक गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गुलशन बाबरा ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शर्मीली से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की, नीरज ने इस गाने को लिखा है, एस डी बर्मन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

जमाने को दिखाना है। ये फिल्म का नाम है, आवाज़ें हैं आयशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, और मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है। आर डी बर्मन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शागिर्द से, आवाजें हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की, मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है और रवि का संगीत है।

0: वारिस।
1: ये फिल्म का नाम है, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

राम बलराम ये फिल्म का नाम है। आवाज़ है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म का नाम राम बलराम।

0: रामपुर का लक्ष्मण, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और आर डी बर्मन का संगीत है। सुनिए ये गीत।
1: अरे प्य...

प्यासी शाम, इस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

ये गीत था प्यासी शाम का। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और हेमलता की आवाज में। परख फिल्म का नाम है, रविंद्र जैन का गीत और संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नदिया के पार से, आवाजें हैं जसपाल सिंह और हेमलता की, और साथ में आवाज है चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है, फिल्म का नाम नदिया के पार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को हैं।

0: लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप, माई जीओवी पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 द्वारा अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस तीसरे संस्करण में करीब 7000 खरीदार और 20000 से अधिक कपड़ा उत्पादों की भागीदारी देखी जा रही है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक और 20 से अधिक देशों के नीति निर्माता और विचारक सहित लगभग 350 वक्ता भाग ले रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के तहत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसके उद्देश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी पर आधारित अन्य रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक तृतीय ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप और मिनिस्टर्स की बैठक प्रस्तावित है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए गौरव का अवसर है और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त जावेद खान। शुरुआत करते हैं फिल्म पूनम के एक गाने से। आवाजें हैं चंद्रानी मुखर्जी और मोहम्मद रफी की। हसर जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, अन्नू मलिक का संगीत है और इस गाने की फरमाइश हम आपको बताएंगे इस गाने के बाद।

ये गाना था फिल्म पूनम का, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और चंद्रानी मुखर्जी की। हसर जयपुरी ने इस गाने को लिखा था, अनु मलिक ने संगीत दिया था। और अगला गाना जो है वो मुकेश की आवाज़ में है। हम उस गाने की ओर, जो गाना आपने सुना, दोनों गाने की इकट्ठी फरमाइश हम आपको सुनवा रहे हैं। अगला गाना है मन मंदिर का, आवाज़ मुकेश की है और साथ में लता मंगेशकर हैं। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इन दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने के लिए फरमाइश आइए घंटा घर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। और ये खत आया है औरंगाबाद से, लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने गूंज उठी शहनाई से, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है। भरत व्यास ने इस गाने को लिखा है, वसंत देसाई ने इसको संगीत से सजाया है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया आसमा, सालिया शोएब, मुजतबा रऊफ और शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से लिखने वाले हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामनी वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाना है फिल्म तेरा चेहरा। इस फिल्म का आवाज़ अदनान समी की है, समीर का लिखा हुआ गाना है और संगीत अदनान समी का ही है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवाई से गुलाबदास मणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लचनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सलिक पुजारी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है गौतम नगर जिला नातेड़ से प्रभाकर चौंतले और आरती चौंतले ने। और ये खत आया है, लिखने वाले हैं अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव और संदीप पाटिल। इन्होंने ये खत लिखा है सारणी जिला बैतूत से। सुनते हैं ये गाना।

अगला गाना लिया है हमने सूरज और चंदा से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है मालवा रेडियो श्रोता संघ से लिखने वाले प्रमल्ला गंज आलोड जिला रतलाम से, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल और साथ में प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं महर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गायकवाड़ राहे, सरिता गायकवाड़, सिद्धांत गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़ और आकाश हाइट्स बहादुरा नगर नागपुर से लिखने वाले हैं शैलेश गायकवाड़, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गायकवाड़ परी, इन्होंने ये गाने को पसंद किया है। सुनते ही ये गीत।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में एक गाना, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सरोन से आमिर खान, फायजा जफर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, और बक्सर बिहार से लिखने वाले हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अंसारी, अकरम और अल्ताफ अंसारी। गाना लिया है हमने फिल्म मधुमति से, और आवाज़ मुकेश लता मंगेशकर की है। शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, सलील चौधरी का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:25 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: किससे?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: युवाओं के जोश, उमंग

0: और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
5: हाँ हाँ क्यों नहीं,
4: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: पर सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
8: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हंसना मना है धारावाहिक की 12वीं कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हंसने से आपकी कितनी मांस पेशियां तनाव रहित हो जाती हैं? नहीं मालूम ना? वैसे एक राज की बात बताऊं, हमें भी नहीं मालूम, मगर अंदाजा है कि 2-400 मांस पेशियों पर असर तो होता होगा, है ना? खैर छोड़िए, अरे ये क्या, गोपाल तिवारी आपके लिए एक ऐसा आइटम लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको यकीनन आनंद आ जाएगा।
1: आइए शुरू करता हूं, बच्चों के लिए खास कुछ आइटम। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल रिक्शे में घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर लौटते हैं तो उनकी अपनी बड़ी प्यारी मीठी मीठी बातें होती हैं। उनमें से कुछ बातें मैं आपको सुना रहा हूं। एक

0: तीसरे ने दूसरे से कहा कि मालूम मैं आज ना आ रही थी ना तो ना मैंने ना चींटी देखी। अच्छा कितनी? मैंने ना 3 चींटी देखी। अच्छा 3 चींटी देखी तो कैसी कैसी चींटी थी? एक चींटी ना काली थी, एक चींटी लाल थी और एक चींटी सफेद थी। अच्छा तो एक काली थी, एक लाल थी, एक सफेद थी, तो काली वाली काली क्यों थी? बच्चों के प्रश्न बड़े भोले होते हैं तो उसके जवाब भी बड़े भोले होते हैं।
1: नहीं, काली वाली ना कॉलरीज में रहती थी इसलिए काली थी। अच्छा और लाल वाली लाल क्यों थी? नहीं ना, लाल वाली जो थी ना वो पहले लाल नहीं थी, फिर ना वो खूब खून पीती थी तो लाल हो गई। अच्छा ये होता कि वो सफेद वाली सफेद क्यों? मालूम सफेद वाली भी सफेद नहीं थी, वो तो पहले काली थी तो सफेद कैसी हो गई? नहीं, वो लवली बबली क्रीम लगाती थी।
0: तो चींटियों की बात चली, एक और ने कहा कि
1: ए मालूम चींटी पे हमको भी याद है, हमारी एक चींटी सहेली है, उसने एक दिन बहुत बढ़िया बात बताई थी कि मालूम वो ना मतलब बाजार जा रही थी तो दोनों में चर्चा हुई थी उसकी सहेली से। क्या चर्चा हुई थी? वो बोली कि उसका ना एक दोस्त भी बॉयफ्रेंड मालूम। अच्छा चींटी का बॉयफ्रेंड तो चींटा होगा? नहीं, चींटी का बॉयफ्रेंड चींटा नहीं था, हाथी था।
2: अच्छा
0: क्या बोला?
1: तो क्या हुआ, चींटी ना बाजार जा रही थी तो चींटी से हाथी ने पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही? दीदी बोला वो तो बॉयफ्रेंड, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। हाँ तो बोला कि तुम कहाँ जा रही चींटी कहाँ जा रही? तो चींटी ने बोला मैं बाजार जा रही हूँ, मैं अपनी ड्रेसेस सिलवाने के लिए। अच्छा तो कपड़ा कितना लिया? मेरे को जितना लगता है। अच्छा क्या बनवाओगी? मैं फ्रॉक बनवाऊंगी। अच्छा कपड़ा बचे तो मेरे लिए एक निक्कर बनवा लेना।
3: बच्चों की बात अलग और निराली होती है। बच्चों की बात के साथ साथ कुछ और लतीफे भी मैं आपकी नजर करूंगा। और बच्चे जब बात अपनी पेश करते हैं तो एक बच्चे ने कैसी बात रखी?
1: आदरणीय उपस्थित सज्जनों, भाइयों, मेहताओं और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं जो भी पेश करूंगा पूरी सावधानी के साथ पेश करूंगा, अगर इसमें कुछ गलतियां हो तो पैसे दे के सुधरवा सकते हैं। और इसके बाद अब मैं आपको एक एक छोटा सा शेर सुनाने जा रहा हूँ।
3: सुनाइए। अब बच्चे ने शेर सुनाया।
1: सपेरे सपेरे बामियों पे बीन लिए बैठे हैं, सपेरे बामियों पर बीन लिए बैठे हैं,
0: सांप भी सियाने हैं दूरबीन लिए बैठे हैं।
3: बच्चों की बहुत बढ़िया बढ़िया बात। एक और बहुत बढ़िया बात मैं बता रहा हूं आपको कि स्कूल का माहौल, क्लासरूम इस आइटम का नाम है, क्लास लगी हुई है गांव का ये स्कूल, और कुछ शहर से जुड़ा हुआ गांव है तो कुछ शहरी कुछ गांव ग्रामीण संस्कृति दोनों उसमें मिली जुली है। आधुनिक युग के बच्चे हैं, टेलीविजन संस्कृति का उन पर क्या असर है ये भी आप देखेंगे। और इस आइटम में अलग अलग क्लासेस हैं पर वो एक साथ भी कभी कभी बैठते हैं, वो देखिए। मास्टर जी का प्रवेश।
4: खड़े हो जाओ
1: जी। गुरु जी।
4: बैठ जाओ बैठो। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने पापा को बुला के लाए?
1: वहाँ अभी 10 मिनट में आते होंगे, हम बुला के लाए।
4: आज नहीं बुलाया तो नाम कटवा देंगे।
1: सर वो हमारे पापा आ रहे, वो आ रहे।
3: और पापा जैसे ही आए,
4: आइए आइए। नमस्कार।
3: नमस्कार सर, आप लोग क्या है, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग को बुलवाते हैं, फैक्ट्री से छुट्टी लेके आना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है, 400 रुपये कट जाते हैं मालूम है आपको?
4: भाई देखिए, जरूरी हो जाता है तो बुलाना पड़ता है हम लोगों को। आपका बच्चा जो है इस समय बड़ी नटखट शरारत कर रहा है, बुलाना पड़ेगा हमको।
3: क्या की शरारत इसने?
4: सर ये क्या बताएं इसको, बहुत ऐसी शरारतें कर रहा है। ये बच्चा जो है आपका, ये दूसरे बच्चों की शीश पेंसिलें चुराता है, रबड़ चुरा लेता है, स्लेट चुरा लेता है, कागज चुराता है भाई, पेन वगैरह।
3: इधर आओ तुम, आओ। तुमको एक, तुम क्यों चुराते हो बच्चों की चीजें? और इतनी सारी जो शीश और रबर और कागज हम लाते फैक्ट्री से वो कहाँ जाती हैं?

0: ऐसे बच्चों की बहुत बढ़िया बात, एक और बात बच्चों की बता रहा हूं कि साहब मास्टर बच्चे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। और बच्चों के एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को एक फूल दे दिया, चर्चा शिकायत पहुंच गई मास्टर जी पास।
1: मास्टर जी जो है ना अपने इधर का छुट्टू, इसने ना गुड़िया को गुलाब का फूल दे दिया।
0: अच्छा
2: जरा तुम छुट्टू इधर आओ, गुड़िया तुम भी इधर आओ, क्या इसने तुमको फूल दिया?
1: जी दिया रहा, फूल दिया रहा।
0: अच्छा फूल दिया रहा। ये तुम्हारा ये फूल वूल का लेन देन कैसे चलने लगा है, कैसा क्या ये?
1: नहीं सर, वो पूरे शहर के लोग मना रहे थे त्योहार, तो हमने भी दे दिया।
0: अच्छा पूरे शहर के लोग मना रहे थे, बच्चों का त्योहार है क्या ये?
1: नहीं, चाचा नेहरू ने बताया था कि बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए, और बच्चों को भी, बच्चे फूल जैसे होते हैं, बच्चों को फूल से बहुत प्यार होता है। चाचा को भी प्यार था, हमको भी प्यार था, हमने भी प्यार किया।
0: वैसे भी एक बहुत बढ़िया बात कही है कि नाजुक टहनी को किसी फरिश्ते ने छुआ हो जैसे, फूल का खिलना किसी बच्चे की दुआ हो जैसे। बच्चों की तो बात अलग है साहब, और बच्चे ये क्लास लगी हुई है, और मास्टर जी ने कहा
2: अब ये बताइए कि कौन क्या पढ़ के आया है। चलिए तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
3: जी होरी लाल।
2: बहुत बढ़िया होरी, तुम खड़े हो, तुमने क्या याद किया है?
3: सर हमने गिनती याद की है।
2: अच्छा सुनाओ कौन सी गिनती याद की है?
3: सर वो वाली राम लखन वाली।
0: राम लखन वाली गिनती?
2: हाँ सुनाओ गिनती, अब गिनती सुना रहे।
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 करूं दिन गिन गिन के इंतजार।
2: बड़ा ये इंतजार इंतजार, यही लिखोगे परीक्षा में फेल हो जाओगे, जीरो मिलेगा। पढ़ो फालतू बात कर। तुम बेटा तुम्हारा नाम, तुम क्या, तुम्हारा नाम क्या है?
3: जी हमारा नाम है खताई।
2: हाँ खटाड़े रहो ताई, तुम सुनाओ बेटा तुमने गिनती याद की?
3: जी सर हमने भी गिनती याद करी है।
2: सुनाओ गिनती सुनाओ। तो उसने भी गिनती सुनाई,

0: 15 16 17।
1: अब ये रोन क्यों लगे तुम? गिनती गाते गाते रोन क्यों लगे?
0: स्याही चढ़ाई थी हमारे पैर में पीछे।
1: चलो बैठो, तुम लोग हर समय उधम करते रहते हो। अब तुम सुनाओ बेटा, तुमने गिनती याद करी?
2: हमने भी याद करी, बहुत अच्छी गिनती।
1: तुम सुनाओ गिनती। अब उसने सुनाई, मैं हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ऐसी गिनती बिल्कुल याद कर रहे तुम लोग, बहुत हो गई गिनती विनती। अब ये बताओ कि कौन क्या बनेगा? तुम गड़े हो, तुम्हारा नाम?
2: हमारा नाम है चिलपिला।
1: क्या नाम है?
2: चिलपिला।
1: ऐसा नाम रखते हो यार, हैं? अब तुम ये बताओ कि तुम बड़े होके बेटा क्या बनोगे?
2: हम सर बड़े होंगे ना तो हम डांगडार बनेंगे।
1: क्या बनोगे?
2: डांगडार बनेंगे।
1: डॉक्टर यार, बोलना सीखो पहले। डॉक्टर बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, मतलब ऑर्थोपेडिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कौन से डॉक्टर बनोगे?
2: जी सब नहीं, अपन अलग हटके।
1: अलग हटके? कौन से डॉक्टर?
2: वही वाले जो साबूदाना की गोली बांटते।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तुम खड़े हो बेटा, तुम्हारा क्या नाम है?
3: नाम हमारा नाम है हर हर।
1: कैसा नाम रखते यार हर हर। तुम ये बताओ कि तुम क्या बनोगे?
3: गुरुजी हम तो थोड़ा अलग बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे।
1: क्या बनेंगे?
3: इंजीनियर।
1: इंजीनियर बेटा, इंजीनियर। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कौन सा इंजीनियर बनोगे? कंप्यूटर, कौन सा इंजीनियर बनोगे?
0: अरे अजय पंचायत हो गई बाबा, इतने सारे इंजीनियर हो
3: गए। फिर
0: हम तो वही बनेंगे जो हमारे पापा हैं।
1: अच्छा, वेरी गुड। आपके पापा इंजीनियर है?
0: हाँ हाँ। कौन से इंजीनियर है?
2: चौका इंजीनियर, रोटी बनाते घर में।
1: बड़ा इंजीनियर बनेंगे। तुम बेटा, तुम खड़े हो और अपना नाम बताओ।
2: हमारा नाम है बहुरी बाबू।
1: बेटा बहुरी बाबू, तुम खड़े हो गए और बता रहे अपना नाम। अब ये बताओ कि तुम क्या बनेंगे, बनोगे?
2: हम अपने मन से कुछ नहीं बनेंगे।
1: क्यों?
2: जो आप बनवाओगे वही बने।
1: हम क्या बनवाएंगे, हम तो चाहेंगे कुछ अच्छा बनो,
2: लेकिन कैसे बने

0: नहीं भाई, हम लोग चाहेंगे कि बच्चे अच्छा बने, कुछ अच्छा बने। बन कहाँ से सकते हैं, आप लोग कोशिश ही नहीं कर। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, खूब पढ़ाते हैं। कहाँ सर, जब भी हम स्कूल आते कभी आप गधा बनाते कभी मुर्गा बनाते। एक बिटिया पीछे बैठी हुई, उसको भी गुरुजी ने, हाँ तुम्हें भी, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपना नाम बताओ।
1: जी सर, हमारा नाम छवरानी।
0: मरे तुम्हारी नानी। तुम बेटा ये बताओ कि तुम क्या बनोगी?
1: सर सर मैं ना तिवारी जी के यहाँ गई थी, तो मैंने उनके यहाँ देखा कि शादी हुई ना, शादी होने के बाद फिर फेरे हुए, जयमाला हुआ, इतना अच्छा लगा ना मेरे को। तो मैंने भी सोचा ना सर कि मैं जब बड़ी होंगी ना तो फिर मैं भी शादी।
0: बहुत अच्छी बात, बच्चों का साथ देखो, छोटे बच्चे हैं, आगे तक की सोच रहे हैं, मतलब देखो आप, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा तुम खड़े हो, तुम्हारा क्या नाम?
1: सर मेरा नाम गोपाल।
0: अच्छा बेटा, गैया कहाँ तुम्हारी?
1: बाबू चराने गए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बाबू चराने गए। तो बेटा गोपाल तुम बताओ, देखो ये क्लास का बहुत अच्छा विद्यार्थी है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और स्कॉलर स्टूडेंट है, आप सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए। बेटा तुम ये बताओ कि तुम बड़े होके क्या बनोगे?
2: हम सोच रहे कि अलग हटके हो ना, लगे कि अपन कुछ बने। हाँ लगे कि आप कुछ बने, क्या बनेंगे बताइए। सर हम सोच रहे कि हम गिर्रू के बाप बने। बहुत हो गई, बहुत हो गई, क्लास में डिस्टरबेंस बहुत हो गया। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे, समझ गए? सब तैयार हैं?
3: हाँ।
2: चलिए अब मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
1: जी सर हमारा नाम दीपक है।
0: अच्छा नाम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम कभी आज तक पास ढंग से नहीं हुए हैं, सप्लीमेंट्री आती हर बार तुमको, फेल हो जाते हो, चार साल से चौथी में पड़े हो। नाम दीपक और ज्ञान पंजी का नहीं है।
1: सर वो आपको एक चीज नहीं मालूम।
0: क्या नहीं मालूम हमको?
1: दिया तले अंधेरा होता है।
0: अच्छा अब हमको पढ़ाओगे तुम। तुम्हारा क्या नाम?
4: सर हमारा नाम बड़वारी लाल। बड़वारी लाल तुम खड़े हो, तुमको क्या दिया था कल होमवर्क? क्या दिया था?
5: सर निबंध लिखने।
4: क्या सब्जेक्ट क्या था?
5: आलस्य।
4: अच्छा लिख लाए? जी सर। कितने पेज में लिखा?
5: 12 पेज में सर।
4: अच्छा लाओ दिखा। अरे इसमें लिखा क्या है यार, कहीं कुछ नहीं लिखा इसमें।
5: अच्छा सर आखिरी पेज में तो देखो आप, आखिरी पेज में। अच्छा विशेष नोट, यही है आलस।
4: अरे तुम गड़प, कैसे कैसी तुम लोग बात करते हो। अच्छा तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
6: जी बनवारी लाल।
4: बनवारी लाल तुम खड़े हो जाओ और तुम ये बताओ कि हवालात किसे कहते हैं?
7: हवालात हवालात हवालात हवालात, माजी बोले भैया चार बार गए कहाँ गए, मैं कहा किसको कहते, उनसे पूछ लेते पहले मालूम होता हवालात किसको।
4: सर जल्दी बताओ।
7: सर जब कोई आदमी हवा में लात मारे तो उसे
4: तो उसे हवालात कहते हैं। अच्छा ये बताओ कि ऐसा कौन सा चारा है जिसको कोई नहीं खाता?
0: चारा माने घास पत्ती ये सब चारा। हाँ सर वही हम उसी के बारे में सोच रहे। बताओ जल्दी ऐसा कौन सा चारा जिसे कोई नहीं खाता?
4: सर भाईचारा।
0: भाईचारा। अच्छा तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
8: जी बद्री प्रसाद।
0: बद्री प्रसाद ठीक है बेटा, तुम ये बताओ काल यानी कि टेंस कितने होते हैं हिंदी में बताओ?
7: काल माने कितने होते हैं?
0: सर 6, आधा दर्जन।
7: कहाँ पढ़े हैं तुम?
0: हिंदुस्तान में तो अभी तक तीन ही हमने पढ़े थे, ये तीन और कहां से लगा दिए सप्लीमेंट्री?
7: वो तीन आपने पुराने समय में पढ़े होंगे।
0: हाँ हाँ भूत भविष्य वर्तमान, अभी नए कौन से काल हो गए भाई?
7: लेकिन सर हमने इजाद किए हैं अभी, नया इन्वेंशन है।
0: अच्छा कौन कौन से?
7: पहला तो तत्काल, दूसरा अकाल
0: और तीसरा कंकाल।
9: हंसना मना है,
10: हंसना मना है,
9: अरे हंसना मना है,
10: हंसना मना है।
9: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का

0: नाम है हंसना मना है। एक बेचारा आपको हंसाने में मशगूल है और दूसरा उस बेचारे को कोचने में है। ये दूसरे कौन है? संजय गायकवाड़, जरा इनकी भी तो सुने।
1: शहर में अतिक्रमण हटाया गया, मैं अपने एक दोस्त के यहाँ घर में गया तो वहाँ पे एक माता जी थी जिनका आधा कमरा भी अतिक्रमण में चला गया था। मैंने माता जी से नमस्कार किया तो अम्मा ने कहा, नमस्कार बेटा जी, बताओ कि जी फिर से अतिक्रमण हटाने वाले लोग नगर निगम वाले कब आएंगे। हमने कहा, अम्मा आपका तो आधा कमरा चला गया, आप फिर से बुला रही हूँ। कह लें, बेटा पूरा चला जाए कोई गम नहीं। हमने कहा, क्यों अम्मा, ऐसी क्या बात है? कह लें, बात कुछ नहीं बेटा, बात तो बहुत अच्छी हुई। पिछली बार जब नगर निगम वाले अतिक्रमण हटाने आए थे तो स्टूल पर नगर निगम का एक कर्मचारी बैठा था, उसने हमारी लड़की से एक बार पानी मांगा तो हमारी लड़की ने दूसरी बार में चाय दी। न जाने कैसी क्या बात हुई कि 13 फरवरी की निकल आई। अब हम सोच रहे हैं कि दोबारा फिर से उन लोग नगर निगम वाले आए तो छोटी वाली को निपटा दें। शिक्षा के साथ में पूरे भारतवर्ष में इस समय सामान्य ज्ञान योग अभ्यास की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। एक गांव के पंडित जी जब शहर में अपने भाई से मिलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि योग की क्लास चल रही थी, तो अपने भाई से पूछा, कहने भैया जी जब सब बताओ क्या है जी, पढ़ाई के अलावा जी आप लोग बैठे हैं, कोई लेटा है, कोई खड़ा है, कोई सांस रोके, ये सब क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि क्या है कि हम लोग योग की क्लास भी लगाने लगे हैं, इससे बच्चे का जो स्वस्थ है और मन है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है। अरे कहने, ऐसी बात है तो हमारे गाँव में भी योग होगा। तुरंत पहुँचे पंडित जी। पहुंचने के बाद में क्लास जो लगी हुई थी तुरंत अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को बोला, चलो रे बंद करो, चलो सब कोई पढ़ाई बंद करो और पीठ के बल लेट जाओ और टांगे ऊपर करो रे सब कोई। हाँ कलुआ, तुम भी टांगे ऊपर करो और साइकिल कैसे चलाते ऐसी घुमाओ, हाथ बिल्कुल पैर ऐसे घुमाओ। अब साहब देखा कि सब बच्चे पैर घुमा रहे हैं लेकिन एक लड़का जो था वो पैर नहीं घुमा रहा था, वो केवल पैर उठाए हुए था। उससे पंडित जी ने पूछा, कहले क्यों रे तू साइकिल क्यों नहीं मार रहा है, पैडल क्यों नहीं मार रहा है, साइकिल चला साइकिल चला। चले पंडित जी हमारी साइकिल ढलान पे है। हमारे शहर में एक थिएटर ऐसा है साहब जहां बहुत छोटे बच्चों का जाना बिल्कुल मना है। हमारे भैया भाभी घर के पिक्चर देखने के बहुत ज्यादा शौकीन, तो साहब हुआ ये कि नई नई फिल्म लगी, हमारे घर में छोटे से भतीजे ने जन्म लिया, तो हुआ ये कि जब थिएटर पहुंचे तो थिएटर पहुंचने के बाद में भाभी जी ने प्रश्न किया कि आप तो दो टिकट लेके आ गए हो लेकिन मैं जब जाने लगूंगी और गेटकीपर ने पूछ लिया कि ये क्या है तो फिर मैं उससे क्या कहूंगी। तो हमारे भाई साहब ने अपना दिमाग दौड़ाया और कहने, कुछ नहीं तुम टावल में लपेट लो बच्चे को, कपड़े में ऐसा रख लो, समझ गई ना, और गेटकीपर अगर तुमसे पूछता है तो तुम बोल देना उसको कि कुछ नहीं हम लोग जल्दीबाजी में खाना खा के नहीं आए हैं, टिफिन ले आए हैं, इंटर में बैठ के खाना खाएंगे। कहने हाँ ठीक है। दो टिकट जैसे ही मिले तो भैया पहली टिकट में चले गए, दूसरी टिकट में जैसे ही भाभी जी जाने लगी तो गेटकीपर की नज़र पड़ी और गेटकीपर ने तुरंत कहा, एक मिनट बहन जी एक मिनट, ये क्या है? तो बहन जी ने कहा, ये कुछ नहीं, ये टिफिन है, हम लोग ना इंटर में बैठ के खाना खाएंगे। गेटकीपर तुरंत बोला, अच्छा अच्छा ठीक से पकड़ो, दाल बह रही। पिछले दिनों साहब एक समाचार पत्र में, मैं किसी भी समाचार पत्र का नाम नहीं लूंगा, एक समाचार पत्र में एक वैकेंसी निकली, एक विज्ञापन आया, आवश्यकता है एक ऐसे कर्मचारी की जिसको वेतन नहीं मिलेगा भोजन मिलेगा। शहर में बहुत सारे बेरोजगार हैं, सुबह के वक्त एक बेरोजगार पहुंचा, कहने भाई साहब नमस्कार, कहने नमस्कार नमस्कार, कहने भैया वो भाई साहब कहाँ रहते हैं जिनने पेपर में विज्ञापन दिया था? अरे कहने ठीक तो हमसे टकरा है, वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, हमें ना दिया था वो विज्ञापन। कहने भैया तो फिर इंटरव्यू कब है? कहने इंटरव्यू तुम्हारा शुरू हो चुका है। कहने अरे शुरू हो गया? कहने हाँ। कहने तो आपने वो पेपर में लिखा है कि वेतन नहीं मिलेगा भोजन मिलेगा, तो वेतन काय को नहीं मिलेगा? कहने वेतन से भोजन ही खरीदोगे ना, हम डायरेक्ट भोजन दे रहे हैं, कौन सा गलत कर रहे हैं? तो कहने भैया फिर कब से आए? कब से नहीं, अभी से ड्यूटी शुरू, इंटरव्यू

0: आजा जिमी जिमी आजा आजा आजा रे मेरे पास, हे जागे सारी रात पुकारे तुझको। ये कोई गीत था, वो गा रही थी मैडम। अचानक घर का कुत्ता चैन तोड़ के स्टेज के करीब आ गया और शुरू हो गया। तुरंत अनाउंसर साहब आए, कहले अरे भाई साहब गाना आना बंद हो गया। कहले ये घर का किसका घर का कुत्ता है भाई जो स्टेज पे आ गया? तो एक महाराष्ट्रियन भाव गया, मेरा घर का कुत्ता ना वो मेरे घर का कुत्ता है। अरे कहले भैया तो इसको घर में बांधो ना। कहले घर में ही बांधा था ना, तुम्हारी मैडम क्या बोल रही, जीमी जीमी आजा आजा, वो नाम लेके बुला रही, कुत्ता आ गया। कहले आ गया तो भैया भोंक काहे को रहा है? कहले वो भोंक नहीं रहा, वो कह रहा तुमने पुकारा और मैं चला आया।
1: राजेश मिश्रा अपनी बारी आने के पहले ही लतीफों की लंगोट कसकर आपको हंसी के अखाड़े में ले जाने के लिए तैयार हैं। पता नहीं आप चित्त होते हैं या पट है। लीजिए राजेश मिश्रा को सुने।
2: लीजिए एक व्यंग और पेश कर रहा हूं कि जिन साहिबानों की शादी हो चुकी है और उनको अगर पत्नी से परेशानी नहीं है तो समझ लीजिए कि ईश्वर की बड़ी असीम कृपा उनके ऊपर है, और जिनको परेशानी है तो वो कभी कोई दूर नहीं कर सकता है, ये उनका भाग्य है। इसलिए अपन उस बारे में ज़्यादा चर्चा न करते हुए कि एक जोक सुना रहा हूँ कि एक शव यात्रा चली जा रही थी। शव यात्रा के पीछे मैंने देखा कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि भैया आखिर ये कौन मर गया, काई के लिए लाइन लगी हुई है। एक भाई साहब से मैंने पूछा, भाई साहब कौन मर गया? बोले मुझे नहीं मालूम। राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है, श्री राम राम सत्य ही सत्य बोलो मुक्ति है, श्री राम राम सत्य ही। कई बार आपने देखा होगा कि काफी अगर मोटे ताजे व्यक्ति का अगर वजनदार मुर्दा होता है, कई बार कंधे लोग नहीं बदलते हैं तो लोगों को ये लगता है कि जल्दी से कोई आ जाए वो कंधा बदल ले है। बड़ी देर तक अपना राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है, श्री राम राम, जो ही वो बदलते श्री राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है, कंधा दूसरे के उसमें चला जाता है। ये लाइन बड़ी अजीब चली जा रही, एक के पीछे एक लाइन लगाए लोग चले जा रहे हैं। मैंने एक से पूछा, भाई साहब कौन मर गया? बोले हल्ला मत करिए, पीछे लाइन में आइए। फिर एक से पूछा, भाई साहब कौन मर गया? राम राम सत्य सत्य, पता नहीं भैया, फालतू बात नहीं, पीछे आप लाइन में। ये क्रम चलता रहा, किसी ने मुझे नहीं बताया। फिर मैंने सोचा कि मैं सीधे शव के पास पहुंचूं। शव के पास पहुंचा तो मैंने पूछा, भाई साहब कौन मर गया? तो जो सज्जन थे कहने लगे, मेरी पत्नी मर गई है। तो क्या, कैसे मर गई भैया, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, हमारे यहाँ कुत्ता था तो उसने काट दिया। अरे भाई साहब हम बड़ी मेहरबानी हो जाती, कुत्ता के काटने से आपकी पत्नी खत्म हो गई? जी हाँ साहब, मुझे दे दीजिए ना 2 मिनट के लिए, मैं 2 दांत गड़वा के अब भी ले आऊंगा। फालतू बहस मत करो। नहीं भाई साहब प्लीज दे दीजिएगा, हम बस अब भी ले जाके आपके कुत्ते अब भी छोड़ जाऊंगा। कुत्ता चाहिए? जी हाँ, पीछे लाइन में आओ।
1: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक हंसना मना है की 12वीं कड़ी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप, माई जीओवी पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 द्वारा अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस तीसरे संस्करण में करीब 7000 खरीददार और 20000 से अधिक कपड़ा उत्पादों की भागीदारी देखी जा रही है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक और 20 से अधिक देशों के नीति निर्माता और विचारक सहित लगभग 350 वक्ता भाग ले रहे हैं। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक तृतीय ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स की बैठक आयोजित होगी। राजधानी भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय होगा, जिसके चलते प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा सहित तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिलाओं का, महिला कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

बारिश का ये मौसम कुछ याद दिलाता है। बारिश का ये मौसम कुछ याद दिलाता है, किसी के साथ होने का एहसास कराता है। फिजा भी सर्द है, यादें भी ताज़ा हैं। फिजा भी सर्द है, यादें भी ताज़ा हैं। ये मौसम भी आप सब की याद दिलाता है। ठीक कहा ना सखियों, वाकई यादों के साथ जीना मुश्किल है। तो देखिए, आ गए हम आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर महिला सभा। स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर, हर परिवार और हर महिला से जुड़ा है, और वो बात है सखियों, सजगता और सतर्कता का ध्यान रखें। जब आप डिजिटल तकनीक, आप समझ ही गई होंगी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा मोबाइल, जो आज के समय हमारे जीवन का हिस्सा जो बन चुका है। हो भी क्यों ना सखियों, अब खरीदारी के लिए जेब में नगद पैसे रखना जरूरी नहीं रहा। कोई भी दुकान या ऑनलाइन शॉपिंग अधिकतर जगह हम UPI, QR कोड या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आसानी से भुगतान कर देते हैं। वाकई सखियों, सुविधा अच्छी है। सुविधा तभी तक अच्छी है जब तक उसके साथ सजगता और सतर्कता भी जुड़ी रहे, क्योंकि कहा भी गया है सखियों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल यही बात सखियों ऑनलाइन भुगतान करते समय भी पूरी तरह लागू होती है। सखियों, ध्यान से हमारी बातों को सुने, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में बिना देखे QR कोड स्कैन कर देते हैं या स्क्रीन पर दिखाई दे रही जानकारी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बनती है। इसलिए सखियों, आप किसी भी दुकान पर या ऑनलाइन भुगतान कर रही हैं तो सबसे पहले दुकानदार का नाम देखें। यदि नाम अलग दिखाई दे तो तुरंत भुगतान रोक दें और दुकानदार से पुष्टि करें। इसके बाद राशि ध्यान से देखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें सखियों, क्योंकि राशि में एक शून्य भी आपके हजारों रुपए गलत खाते में भेज सकता है। सखियों, ऑनलाइन खरीदारी में हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट या आधिकारिक ऐप का ही उपयोग करें। बहुत कम कीमत, भारी छूट देकर किसी अनजान वेबसाइट पर भुगतान ना करें। बात महत्वपूर्ण है सखियों, पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी UPI पिन नहीं डालना पड़ता। पिन केवल तब डाला जाता है जब आप किसी को पैसे भेज रहे होते हैं। इस बात को याद रखें। और जैसा कि आज हमारी सखियां अपने छोटे छोटे व्यवसाय चलाकर ऑनलाइन के जरिए अपने व्यवसाय के शौक को अपना आय का साधन बना रही हैं, और ऐसे में डिजिटल भुगतान उनके काम का हिस्सा बन गया है। इसलिए सखियों, जितनी ज़रूरी मेहनत है उतनी ही ज़रूरी उस मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना है। तो आइए, तीन छोटी सी बातें हमेशा याद रखें। पहली, भुगतान से पहले नाम, दूसरी राशि, तीसरी OTP और UPI पिन किसी से भी साझा ना करें, क्योंकि सजग ग्राहक ही सुरक्षित ग्राहक होता है सखियों। और अब इस बारिश के सुहाने मौसम का आनंद लेते हैं इस गीत से।

सखियों, आप बात करते हैं भारत सरकार की महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना की, और वो है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके तहत माता पिता गार्जियंस अपनी बेटी के नाम से बैंक या डाकघर में खाता खुलवा सकते हैं, जो बेटी की शिक्षा और भविष्य के लिए मजबूत आधार है। और इस योजना में बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है सखियों, जो बहुत ही कम राशि से इसमें मध्यम परिवार भी आसानी से लाभ ले सकते हैं। सखियों, इसमें सरकार द्वारा ब्याज दर भी अच्छी दी जाती है और पूरी तरह सुरक्षित।

सखियों, सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा लाभ जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। 18 वर्ष की आयु के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए खाते से कुछ राशि निकाली भी जा सकती है। वाकई सखियों, आज के समय में बेटियों को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना बहुत जरूरी है, जो केवल बचत योजना नहीं है बल्कि बेटियों के उज्जवल भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो खाता जरूर खुलवाइए। और आपको खाता कहाँ खुलवाना है, तो आप किसी अधिकृत कमर्शियल बैंकों में जाकर या अधिकृत सरकारी डाकघर में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। और एक जरूरी बात सखियों, आप उनकी इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हैं। तो सखियों, इस जानकारी को आसपास के ऐसे लोगों को जिन्होंने खाता नहीं खुलवाया या जानकारी में कमी रह गई, तो पूरी जानकारी जरूर दें ताकि अधिक से अधिक बेटियां इस योजना का लाभ ले सकें। बिल्कुल, हमारी सखियां योजना का लाभ ले रही हैं और सखियां आज आत्मनिर्भर भी हैं। और इसी आत्मनिर्भरता की कहानी कहता है क्रम मेरी उड़ान। आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान।

0: सखियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है और इसी लक्ष्य को पाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत और लगन से अपने कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और इसी का परिणाम होता है कि हम अपने काम में परिपूर्ण साबित होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि एक नाम जो कहीं गुम था लोगों के सामने उभर कर आ ही जाता है और ऐसे ही नाम को उजागर करता है मेरी उड़ान। आज हम बात कर रहे हैं टिफिन सेंटर की संचालिका मनोरमा सेठिया से। मनोरमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी
0: मनोरमा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में कैसे आया कि आप टिफिन सेंटर खोलेंगी।
1: मेरे मन में ये विचार ऐसे आया कि मेरे पास कुछ बिजनेस नहीं था और बच्चों को पढ़ाना, बड़ा करना, हस्बैंड का भी कुछ काम धंधा नहीं था। हमारे पास में एक आंटी टिफिन सेंटर चलाती, उनने मुझे हट किया। तो हमने सोचा टिफिन सेंटर चलाए पर ग्राहक कहाँ से लेकर आएंगे। तो पास में एक भैया रहते थे, चार रोटी सुबह और चार रोटी शाम को वो ले जाते थे। ऐसे करके हमने टिफिन सेंटर चालू किया। हम जगह जगह भटके, हॉस्टलों में, बॉयज हॉस्टल में, हॉस्पिटलों में, वहाँ हमने अपना टिफिन टेस्ट करवाया। लोगों को खाना अच्छा लगा, लोगों ने फिर हमको ऑर्डर दिए। ऐसे करके एक टिफिन, दो टिफिन, हम इतने खुश होते थे कि चलो अपना टिफिन सेंटर बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे करके मैंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। तो आज 20-25 टिफिन तक मैं बना लेती हूँ, संतुष्ट हूँ।
0: तो घर के साथ साथ इस काम को आप कैसे मैनेज करती हैं?
1: बच्चे थोड़ा सहयोग करते हैं और हस्बैंड है मेरे, उनके पास भी कोई बिजनेस नहीं है तो वो भी पूरा पूरा सहयोग मुझे करते हैं। और अपना क्या टाइम लिमिट बना लो अपन कि भाई नहीं, इतना ये काम अपन को इतने टाइम में करना है और अच्छे से अच्छा करना है तो ग्राहक संतुष्ट होगा। ऐसे करके मैं इसको मैनेज करती
0: हूँ। कि आपको सब्जी भाजी भी लाना पड़ती होगी बाजार से, तो इस काम में कौन सहयोग करता है? आपने अपने सहयोगी रखे हुए हैं?
1: हाँ, सहयोगी रखे हैं। बाकी बच्चों के साथ जाके मंडी से मैं ही लेकर आ जाती हूँ सब्जी, ताकि अपन को थोड़ा उसमें फायदा ज्यादा हो।
0: इस काम को करने के लिए घर वालों का कितना सहयोग?
1: पूरा पूरा सहयोग है घर वालों का, क्योंकि करना यही है, इसी बिजनेस पे हम टिके हुए हैं। हमने सोचा और तो कुछ अपन कर नहीं सकते, घर बैठ के ये अच्छा बिजनेस है। घर वालों का पूरा पूरा सहयोग है मेरे साथ।
0: इस काम को आप अकेले करती हैं कि आप अपने साथ किसी को रखी भी हैं, जैसे टिफिन लाना, ले जाना, छोड़ना घर? और
1: हाँ, सहयोगी रखे हैं ना भाई। जैसे कोई गरीब बच्चा है तो उस वो पढ़ाई के साथ साथ टाइम निकाल के दोनों टाइम टिफिन बांट देता है, तो उसका भी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है, उसको भी काम मिल जाता है और अपना भी काम हो जाता है। भाइयों भी रख रखी है एक दो महीने, तो उनको सहयोग मिल जाता है, भाइयों को भी, और उनसे मेरे को सहयोग मिल जाता है ताकि मैं भी मतलब कुछ काम आगे बढ़ा सकूं।
0: मनोरमा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि लगभग कितने टिफिन आप बना लेती?
1: मैं 20-25 टिफिन बना लेती हूँ, ऑर्डर भी लेती हूँ मैं। अगर सब्जी पूड़ी वगैरह या दाल वाफले के ऑर्डर लेती हूँ मैं, 40-50 लोगों का तक बना सकती हूँ मैं दाल वफले लड्डू। और उसके बाद अगर ज्यादा जरूरत लगती है तो मैं सहयोगी रख लेती हूँ।
0: तो आप अपने किचन में भी ऐसे सामान, ऐसे साधन जुटाई होंगी जिसके द्वारा आप बनाती होंगी और जिसमें काम करती होंगी, तो आप उसके बारे में बताएं।
1: सामान तो मैंने बहुत मुश्किलों से इकट्ठा किया है बहुत मुश्किलों से। अच्छा, मेरे को ऐसे हेल्प करने वाले भी मिले, परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़ाने वाले भी मिले। मैंने अगर ये बिजनेस चालू किया तो बहुत से लोग हेल्पर ऐसे मिले कि उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया। सामान भी मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया।
2: आपके सामान में क्या क्या है?
1: गैस भट्टा है, बड़ी कढ़ाई है, बड़ा कुकर है, करीब करीब बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो

0: मैं नहीं ला सकती थी, पर
1: आपको खरीदने में आपकी पूंजी भी लगी होगी।
0: धीरे धीरे करके मैंने, डाइनिंग टेबल है, थालियां है, ग्लास है, सभी चीजों की जरूरत लगती है। घर पे भी लड़के खाना खाने आते हैं, उनको खाना अच्छा लगा, तो ऐसे करके बिजनेस हमारा आगे बढ़ता गया।
1: टिफिन से बहुत लोग खुश भी होते होंगे क्योंकि उन्हें घर जैसा खाना मिलता है, तो आपको कैसा लगा?
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे आंटी जी करके, आंटी जी खाना बहुत अच्छा बनाती है, आंटी जी आप, भाभी जी खाना बहुत अच्छा बनाती है आप, बहुत खुशी होती है। वो उनकी फैमिली वाले आते हैं, किचन तक देख के जाते हैं कि आपके यहाँ साफ सफाई कितनी अच्छी है, आप खाना अच्छा बनाते हैं, बच्चे हमारे खुश है आपके खाने से, तो मेरे को बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल मनोरमा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दूसरों को इतना स्वादिष्ट और घर का बना भोजन खिला रही हैं। मनोरमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस व्यवसाय के बाद अपने आप को आप कितना आत्मनिर्भर समझते
0: हैं? इस व्यवसाय के बाद मैं अपने आप को आत्मनिर्भर इतना समझती हूँ कि अगर मैं बैठ के और अपने निर्देशन में भी भाइयाँ रख के काम करूँ तो अच्छा बिजनेस कर सकती हूँ।
1: मतलब आप भाइयाँ रखी हुई हैं?
0: भाइयाँ मैंने रखी हुई है, टिफिन बांटने वाले रखे हुए हैं, बर्तन वाली है, रोटी वाली है, कोई सब्जी साफ करने वाली है, ऐसी भाइयाँ रख रखी है। अगर मैं नहीं भी करूँ और आराम से बैठकर उनसे काम करवाऊँ तो भी मैं बिजनेस अच्छे से कर सकती।
1: तो अब हमारी ये सखियाँ जानना चाहेंगी कि इसमें आपकी इनकम का क्या है?
0: जितना समझ के और जितना समझदारी से अगर आप ये बिजनेस करोगे, आपका घर का खर्चा, खाने का खर्चा निकल जाएगा और वर्करों को भी आप दे सकेंगे, उसके बाद भी थोड़ा अपना हाथ खर्चा निकल जाए, इतना आप कर सकती है। अगर आप बड़े पैमाने पे करें तो उसके लिए आपको अच्छी जगह लेनी पड़ेगी, वर्कर ज्यादा रखने पड़ेंगे। मेहनत तो है इस काम में, पर संतुष्टि हो।
1: मनोरमा जी, आपने हमारी सखियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, जाहिर सी बात है कि इस काम को आगे करने के लिए हमारी सखियां भी आपसे जुड़ना चाहेंगी, तो वो किस तरह से इस काम की शुरुआत करें और कैसे?
0: अगर कोई महिला ये काम करना चाहती है तो वो दो टिफिन से भी चालू कर सकती। अगर आपके खाने में टेस्ट रहा तो दो से चार होंगे, चार से छह होंगे, और परिवार में इतनी हेल्प मिल जाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपना खुद का खर्चा निकालने में बहुत सहायता मिलेगी, और आप बिजी रहेंगे। बहुत सी महिलाएं मेरे साथ काम करती थी, आज वो देखते हुए उनने खुद ने अपने टिफिन सेंटर डाल लिए, परिवार उनका वो भी चला रही है। बहुत सो के हस्बैंड काम नहीं करते हैं तो भी उनको सहयोग मिलता है कि ये बिजनेस अच्छा है, थोड़ी आइडियाज मेरे से ले लेते हैं वो, तो ठीक है मैं आइडियाज बता देती हूँ और उनको हेल्प मिल जाती है।
1: मनोरमा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी सुनने वाली सखियों को और हमें भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और अब सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडक तो लाता है, लेकिन नमी और गंदगी भी बढ़ा देता है। ऐसे में चेहरे के साथ साथ हाथों और पैरों के नाखूनों की देखभाल बेहद जरूरी हो जाती है। तो सखियों, घबराने की बात नहीं, रूपलावण में नाखूनों की देखभाल आप कैसे करें इस मानसून में, बात करते हैं सखियों। क्यों बरसात के मौसम में जैसा कि आप जानती हैं कि नमी, बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ते हैं, ऐसे में नाखूनों की सफाई पर ध्यान न दिया जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सप्ताह में एक बार नाखून अवश्य काटें। दूसरी बात सखियों, यदि नेल पॉलिश लगा रही हैं तो बीच बीच में नाखूनों को बिना नेल पॉलिश के भी रहने दें ताकि उनकी प्राकृतिक चमक और मजबूती बनी रहे। इसी तरह सखियों, कभी कभी पैरों के नाखून ज्यादातर कड़े और बेजान से लगने लगते हैं, उनको काटना मुश्किल होता है, तो ऐसे में आप कुछ देर हल्के गुनगुने पानी में सेब का सिरका मिलाएं और कुछ देर के लिए डुबो कर रखें, फिर सादे पानी से धो लें। यह नाखूनों के फंगस इन्फेक्शन को दूर कर चमक बढ़ाता है और काटने में आसानी होती है, मुलायम जो पड़ जाते हैं। इसी तरह सखियों, नाखूनों को हमेशा साफ और सूखा रखें इस बरसात के मौसम में, और खास बात अपनी डाइट में विटामिन ई, बायोटिक और हरी सब्जियां शामिल करें ताकि नाखून अंदर से मजबूत और चमकदार बने। बात बरसात की है तो फिर सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, गीत तो हमने सुनवा दिया और अब बढ़ते हैं फूड जोन की ओर। सखियों, मौसम कोई भी हो, हर मौसम कुछ अलग कुछ खास लेकर आता है। बात जब बारिश के मौसम की हो तो जगह जगह भुट्टे भुंजने की खुशबू आ ही जाती है। भुट्टे को चाहे सेक कर खाओ या फिर इसके अलग अलग व्यंजन बनाओ, हर बार इसका स्वाद मन को भाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं भुट्टा पुलाव।

जोन में। तो सामग्री नोट करें सखियों, एक कटोरी चावल, दो बड़े चम्मच भुट्टे के दाने, अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, दो से तीन हरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और तड़का लगाने के लिए एक छोटा चम्मच राई और जीरा, दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा और अंत में कड़ी पत्ता और धनिया और नमक चाहिए स्वाद अनुसार, एक बड़ा चम्मच तेल या घी का। और अब बनाने का तरीका हम आपको बता देते हैं सखियों। सबसे पहले चावल को धोकर दो कटोरी पानी में आधा घंटे के लिए भिगो दें। अब प्रेशर कुकर में तेल गर्म करें, राई, जीरा, कड़ी पत्ता, दालचीनी डालकर छौंक लगाएं। अब अदरक हरी मिर्च डालें, साथ ही पानी सहित चावल, कॉर्न, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें। इसके बाद कुकर बंद करें, 5-10 मिनट बाद प्रेशर बन जाने पर आँच से उतार दें, सीटी निकाल दें, कुकर खोलें। अब अनार व गरम मसाला डालकर सर्व करें, जो आपके खाने को हेल्दी तो बनाता है, साथ ही फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है सखियों। तो बनाइए और खिलाइए इस बरसात के मौसम में, और हमें भी बताइए बनाकर कैसी लगी। और अब सुनवा देते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: कार्यक्रम में इस भींगते मौसम का आनंद आपने गीतों के माध्यम से लिया। आपको गीत भी पसंद आए होंगे, लेकिन सखियों बारिश गीत तक सीमित नहीं, बल्कि आपको इस बरसाती मौसम में धरती पर गिरती बूंदों को सहेजना है, उनका संरक्षण करना है। यदि हम इन बूंदों को सहेज लें तो वर्ष भर पानी की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। सखियों, ये तो आप भी मानती हैं ना? इसलिए अपने घरों, विद्यालयों और कार्यालयों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था जरूर करें। सखियों, आप चाहें तो बरसात के पानी को अपने घर के आंगन में गड्ढा कर रेत, कंक्रीट, बजरी डालें और छतों की नाली से पानी जो बह रहा है एकत्र कर रिचार्ज पिट या सोखता गड्ढे में भेजें, जिससे वह जमीन में समा कर भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। आपको पर्याप्त पानी की सुविधा होगी और घर में सूख रहे बोर भी भरे रहेंगे। सखियों, थोड़ी जुगत तो लगानी होगी हमारी सखियों, इससे भूजल स्तर बढ़ेगा और गर्मियों में जो हमने पानी की किल्लत झेली है ना, उससे निजात मिलेगी। तो सखियों, देर किस बात की, बारिश की इन अनमोल बूंदों को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी जुगत लगा के और इससे जो आपको खुशी मिलेगी वो आपके लिए अनमोल होगी गर्मियों के मौसम में, जब आपके पास पर्याप्त पानी रहेगा। सखियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने, और अब दे अनुमति अपनी सखी नीलम चौरे को। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: और झूलते झूलते सुनते हैं
1: मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: अरे दीदी, धीरे धीरे।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: पर सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
8: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
9: इस समय आप हैं हमारे साथ।
10: जी हाँ, मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर के साथ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए छाया परमार और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे छाया परमार और साथियों द्वारा गाए माली लोकगीत लोक संगीत के कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं वर्षा बंसीवाल द्वारा गाई गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वर्षा बंसीवाल द्वारा गाई गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।

0: तो सुनते रहिए मालवा किसान
1: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या?
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: पर सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
7: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
8: इस समय आप हैं हमारे साथ।
9: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रोजा से, आवाज है मिनी मिनी की।

ए आर रहमान का संगीत पी के मिश्रा के लिखे बोल मिनी मिनी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रोजा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ में। फिल्म का नाम है खामोशी द म्यूजिकल। Okay.

0: जतिन ललित का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। भोपाल के वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि समान नागरिक संहिता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और 18 जुलाई को होने वाली अगली बैठक में इसका बिल लाया जाएगा।
1: तो समान नागरिक संहिता UCC के ऊपर जो दल गठित किया गया था, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्प है कि यह बिल इस विधानसभा के अंदर लाया जाए और मध्य प्रदेश में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस हेतु इस बार की अगली कैबिनेट 18 जुलाई को भोपाल जिले में जगदीशपुर के अंदर विशेष कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है।
0: कैबिनेट ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी बधाई दी, जिसमें प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ भी शामिल हैं। एमपी टेक ग्रोथ के तहत 40,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिससे 34,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में 28,000 करोड़ रुपए की लागत से AI डेटा सेंटर भी स्थापित होगा। कैबिनेट ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के खातों को डिजिटल बनाने के लिए दृष्टि पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 4 दिवसीय भारत टेक्स 2026 में शामिल हो रहे हैं। यहां वे देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों से संवाद कर प्रदेश में निवेश के नए अवसर तलाशेंगे। इस दौरान राज्य में टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवेयर क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने की पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री कई कंपनियों के साथ एकल बैठकें भी करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। इसके तहत 1.25 लाख एकड़ से अधिक जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। भूजल पुनर्भरण के लिए भी बड़े पैमाने पर संरचनाएं बनाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि 12,500 एकड़ में हरित क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल में आज एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आंचलिक विज्ञान केंद्र में इसका उद्घाटन करेंगे। ये दीर्घा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इसमें ब्रह्मांड और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी।

0: भट्ट से लेकर चंद्रयान और गगनयान तक की उपलब्धियां भी यहां प्रदर्शित होंगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में इस मानसून सीजन में जुलाई महीने में पहली बार बारिश सामान्य से कम दर्ज हुई है। अब तक प्रदेश में करीब 9.5 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 3% कम है। पिछले 5 दिनों से बारिश की रफ्तार थमी हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में तेज धूप रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने पर प्रदेश में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। बात खेल की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल लॉर्ड्स में इतिहास रच दिया। भारत ने एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। ये लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में पहला महिला टेस्ट मैच था। इंग्लैंड को 457 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम 186 रन पर आउट हो गई। ये भारत की पिछले 11 टेस्ट मैचों में 7वीं जीत है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने टीम को बधाई दी है। कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी टीम को शुभकामनाएं दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिले भर में दस्तक अभियान का प्रथम चरण आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत गुना, शिवपुरी और रायसेन जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 5 साल तक के सभी छोटे बच्चों को घर घर जाकर आयरन, सीरम, सिरप, जिंक और ORS के घोल वितरित किए जाएंगे। नर्मदापुरम जिले में मेरा युवा भारत के तहत जिला पेंशन कार्यालय में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कार्यक्रम आयोजित कर स्वयं सेवकों को पेंशन विभाग की कार्यप्रणाली, ऑनलाइन फाइल संचालन और डिजिटल प्रशासन की जानकारी दी गई। और बुरहानपुर जिले में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कल पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुस जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
2: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
1: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों

0: पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
3: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस

0: एक्सपो में 90% एमएसएमई आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
1: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसे

0: स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं हम, जहां हम आपके पत्रों को शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपके पसंद के मीठे मीठे नगमे। तो कार्यक्रम में पहला गीत सुनवा देते हैं आपको, जो है फिल्म प्रेम पुजारी से, और इसकी फरमाइश हमें मिली है महेशवाड़ी तालुका मलकापुर से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की तरफ से। इसके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें लिखा है। और एक और पत्र मिला है हमें महादेव घाट अमलेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत फिल्म प्रेम पुजारी से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।
2: सोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

एस जी बर्मन का संगीत, नीरज के लिखे बोल, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म प्रेम पुजारी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सपना संगीता रोड इंदौर से। लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की तरफ से। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

एस डी बर्मन का संगीत मजरूह के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ज्वेल थीफ से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की तरफ से, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा का भी हमें पत्र मिला है। इसके अलावा एक और पत्र मिला है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और शिवानी श्रीमाली की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है अगला गीत फिल्म हसीना मान जाएगी से।

कल्याणजी आनंद जी का संगीत, अख्तर रोमानी के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हसीना मान जाएगी से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और फरमाइशी ये गीतों के क्रम में अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है गीता दत्त की आवाज़ में। फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट की तरफ से, रेलवे कॉलोनी भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और उनके पूरे परिवार की तरफ से। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की ओर से भी। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

की आवाज़ में। फिल्म का नाम है फ़र्ज़ और इस गीत की फरमाइश मिली है हमें नेपाल पैलेस सागर से। लिखने वाले श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म फर्श से। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी तरह अपने पत्र हमें भेजते रहें। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र शामला हिल्स भोपाल, पिन कोड 4620002। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि समान नागरिक संहिता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और 18 जुलाई को होने वाली अगली बैठक में इसका बिल लाया जाएगा। कैबिनेट ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ी क्रांति गौड़ भी शामिल हैं। समान नागरिक संहिता समिति ने कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपना प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री ने समय पर रिपोर्ट देने के लिए समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया। यह प्रतिवेदन 3

खंडों में तैयार किया गया है। इसमें प्रस्तावित विधेयक में चार भाग और 404 धाराएं शामिल हैं। भोपाल में आज एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आंचलिक विज्ञान केंद्र में इसका उद्घाटन करेंगे। शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। प्रदेश भर में दस्तक अभियान का प्रथम चरण आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत 5 साल तक के सभी छोटे बच्चों को घर घर जाकर आयरन सिरप, जिंक और ORS के घोल वितरित किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में तेज धूप रहने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांधिकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। शाम 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 7:21 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। सुर्खियों में सुनवाया जाएगा रात 8:00। 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम कहकशा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 पर सुन सकेंगे श्रुति अधिकारी का ध्रुपद गायन राग मालकौस। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है छाया परमार और साथियों द्वारा गाए लोकगीत, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

मीडियम वेव 465.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार युवा श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा युवा प्रोग्राम विवाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज।
1: और मैं हूं चित्रा। साथियों, आज का कार्यक्रम काफी खास होने वाला है। आज हम आपसे साझा करेंगे कई रोचक जानकारियां, आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। और आज मंगलवार है, सो आज हमारा स्पेशल सेगमेंट भी आपको सुनने मिलेगा, जिसका नाम है हमारे शहर।
0: बिल्कुल ठीक। और चित्रा, तुमको पता ही होगा कि देश भर में, और देश भर ही नहीं कहूँगा, मुझे लगता है पूरे विश्व भर में इस समय स्पोर्ट्स का माहौल जो है खुमार है, सभी के जुबान पे चढ़ के बोल रहा है।
1: बिल्कुल।
0: चाहे वो क्रिकेट हो या फिर फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो।
1: हाँ।
0: तो अब फाइनल का दौर भी आने वाला है धीरे धीरे। और एक तरफ लॉर्ड्स ग्राउंड में महिला क्रिकेटरों ने बिल्कुल दावेदारी कर जीत दर्ज कर दी है।
1: बिल्कुल। और हमारी इंडियन टीम जो है फुटबॉल की अंडर 16, उसने भी हेल्थ की कप में अपना परचम लहरा दिया है।
0: विंबलडन चाहे फीफा वर्ल्ड कप ले लो या फिर लॉर्ड्स के मैदान में जो इस वक्त खेल चल रहा है टेस्ट मैच का, जिसमें भारतीय टीम ने अपनी बल्लेबाजी करती हुई जीत दर्ज की है कल ही। तो मुझे लगता है कि खेल के साथ साथ आज बात तो कई सारी होने वाली है, पर उसके पहले जो हम रोजाना हमारे युवा साथियों के लिए सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए दो प्रश्न लेकर आते हैं, तो उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, पूछ लेते हैं आज हमारे साथियों से हमारे प्रश्न। साथियों, अब हम आपसे पूछेंगे आज के सवाल, जिनके उत्तर कार्यक्रम के अंत में हम आपको देंगे। तब तक आप सोचिए कि इनके उत्तर क्या होंगे।
0: बिल्कुल साथियों, तो कान लगाकर सुनिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है?
1: और आज का दूसरा सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
0: बिल्कुल ठीक।
1: अब तो एक बात बताओ राज, हम हमारे शहर में जो आज हम शहर लेने वाले हैं वो अभी बता दे हमारे साथियों को।
0: नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वो मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जिसके बारे में, छोटा शहर है पर एक ऐसा शहर भी है जहाँ पर संस्कृत में बात की जाती है।
1: हाँ,
0: एक ऐसा गाँव भी है।
1: बिल्कुल। तो हम साथियों अभी आपको नाम नहीं बताते हैं, क्लू दे देते हैं, गीत सुनवाते हैं, गीत के उस पार हम मिलेंगे और जानेंगे आज हम हमारे शहर में किस शहर की बात करने वाले हैं। आइए सुनते हैं पहला गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ जीतें सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाती बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। ऐसी ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हासिल की है। भारत की बेटियों ने क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदान लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 270 रनों के विशाल अंतर से हराकर इतिहास रच दिया है।
2: और साथियों, ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि लॉर्ड्स के 142 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार महिलाओं के बीच टेस्ट मैच खेला गया और इस ऐतिहासिक मुकाबले की विजेता बनी हमारी भारतीय टीम।
1: दोस्तों, लॉर्ड्स को क्रिकेट का होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, यानी क्रिकेट का ही घर। दुनिया का हर क्रिकेटर अपने करियर में एक बार यहाँ खेलने का सपना बिल्कुल देखता है और ऐसे प्रतिष्ठित मैदान पर जीत दर्ज करना किसी भी टीम के लिए गर्व की बात होती है।
2: लेकिन विदेशी धरती पर मेजबान इंग्लैंड

0: को इतने बड़े अंतर से हराना भारतीय महिला क्रिकेट की ताकत और आत्मविश्वास का प्रमाण है।
1: साथियों, मैच शुरू होने से पहले अधिकांश क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना था कि घरेलू परिस्थितियों और अनुभव का लाभ इंग्लैंड को मिलेगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा। बल्लेबाजी ने संयम और आत्मविश्वास के साथ शानदार बल्लेबाजी की
0: और आज उन्होंने लंबी साझेदारियां भी बनाई और साथ ही ऐसा स्कोर बनाया जिससे इंग्लैंड पर एक मानसिक दबाव बने। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित और आक्रामक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया।
1: बिल्कुल, वहीं तेज गेंदबाजों ने नई गेंदों का भरपूर फायदा उठाया, जबकि स्पिन गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका तक नहीं दिया।
0: हर विकेट के साथ भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ता गया और अंत में भारत ने 270 रनों की ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली।
1: श्रोताओं, ये जीत केवल स्कोर बोर्ड की जीत नहीं है बल्कि उस लंबे संघर्ष की सफलता है जिसे हर भारतीय महिला क्रिकेट के वर्षों तक एक सपना सा देखती है फिर तैसा करती है। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव घुवारा की क्रांति गौड़ को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया है ना गर्व का क्षण।
0: बिल्कुल राज, दरअसल एक समय था जब महिला क्रिकेट को न तो पर्याप्त सुविधाएं मिलती थी और न ही उतनी पहचान। सारी खिलाड़ियों को सीमित संसाधनों में अपने सपनों को साकार करना पड़ता था, लेकिन देखो आज परिस्थितियां बदल रही हैं। बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं, घरेलू टूर्नामेंट, महिला प्रीमियर लीग और देश भर से मिल रहे समर्थन ने भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है।
1: साथियों, आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती है। हमारी खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकती है।
0: इस जीत ने यह भी साबित किया है कि भारतीय महिला क्रिकेट का भविष्य बेहद उज्ज्वल है। आने वाले वर्षों में यही खिलाड़ी नई ऊंचाइयों को छुएंगी और करोड़ों युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देती रहेंगी।
1: मुझे लगता है कि सफलता किसी एक दिन की नहीं होती, मुझे लगता है दोस्तों, तो वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का परिणाम ही होती है। जब हम लगातार खेलते रहते हैं, कभी हार भी होती है, पर एक दिन जरूर आता है कि हम हमारे गोल में सक्सेस हो जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहा।
1: और आज की भारत की बेटियां विज्ञान हुआ, अंतरिक्ष, सेना या फिर प्रशासन, शिक्षा, खेल, उद्यमिता, हर क्षेत्र में नए आयाम या कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। क्रिकेट के मैदान पर मिली ये ऐतिहासिक जीत उसी बदलते भारत की एक अनोखी तस्वीर है।
0: बिल्कुल,
1: जहां बेटियां सिर्फ भागीदारी नहीं निभा रही बल्कि नेतृत्व भी कर रही है, इतिहास भी लिख रही है।
0: हाँ, और ये जीत बताती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदारी से की जाए और आत्मविश्वास बना रहे तो दुनिया का कोई भी मंच दूर नहीं।
1: बिल्कुल ठीक, तो आइए हम सभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इस शानदार उपलब्धि पर दिल से बधाई दें और उम्मीद करें कि आने वाले समय में हमारी बेटियां इसी तरह तिरंगे का मान बढ़ाती रहेंगी और खेल जगत में नए नए इतिहास रचती रहेंगी।
0: आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युवाणी और अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट हमारे शहर का। इस श्रृंखला में हम आपको देश के ऐसे शहरों और जिलों से रूबरू कराते हैं जिनकी पहचान सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और लोगों की यादों में बसती है। तो अब आपको बता ही देते हैं, आज का हमारा पड़ाव है मध्य प्रदेश का राजगढ़।
1: चित्रा, राजगढ़ मालवा अंचल का एक ऐसा जिला है जहाँ इतिहास प्रकृति के साथ साथ चलते हैं। राजगढ़ ब्यावरा, खिचलीपुर, जीरापुर, पचोर, सारंगपुर और सुठालिया जैसे कस्बे इसकी पहचान है, समृद्ध बनाते हैं। लेकिन अगर सबसे प्रसिद्ध स्थान की बात करें तो नरसिंहगढ़ का सबसे पहले नाम आता है।
0: बिल्कुल, नरसिंहगढ़ अपने ऐतिहासिक किले, झीलों और हरियाली के लिए जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा के शोमैन रहे राज कपूर की प्रसिद्ध फिल्म बॉबी के कुछ दृश्य भी यहीं फिल्माए गए थे। यानी यह जगह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की यादों से भी जुड़ी हुई है।
1: और साथियों, कला संस्कृति की बात करें तो नरसिंहगढ़ का संगीत महाविद्यालय भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। वर्षों से यहाँ संगीत की शिक्षा दी जा रही है और इसके अलावा मालवा क्षेत्र की संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाने में इसके महत्वपूर्ण भूमिका भी है।
0: साथियों, प्रकृति प्रेमियों के लिए भी राजगढ़ बहुत खास जगह है। यहाँ स्थित चिखिड़ो अभ्यारण्य जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मानसून के दिनों में यह इलाका हरियाली से भर जाता है और कई तरह के विविध पक्षी यहाँ आसानी से देखने मिल जाते हैं।
1: दोस्तों, राजगढ़ की पहचान आस्था से भी जुड़ी हुई है। यहाँ का प्रसिद्ध जालपा माता मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल जाता है।
0: चिड़ीखो अभ्यारण्य, जालपा माता मंदिर, उसके अलावा कई और विशेष बातें हैं जो राजगढ़ को खास बनाती है। यहाँ एक ऐसा गाँव है जहाँ लोग रोजमर्रा की बातचीत संस्कृत में करते हैं। आप चौंकेंगे जरूर, लेकिन ये बात सच है।
1: बिल्कुल ठीक। दोस्तों, आधुनिक विकास की बात करें तो मोहनपुरा डैम राजगढ़ की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। सिंचाई और जल संरक्षण के लिहाज से यहाँ पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे खेती को भी सबसे बड़ा लाभ मिलता है।
0: राज, अब थोड़ा स्वाद की भी बात कर लेते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि मालवा और निमाड़ का जब हम बातचीत करते हैं तो मुझे दाल बाटी और फिर अलग अलग के जो व्यंजन है मालवा के, बिल्कुल जुबान पर आ ही जाते हैं।
0: हाँ, तो दोस्तों आपके मुंह में पानी आ जाएगा ये सुन के कि अगर आप कभी राजगढ़ जाएं तो वहाँ का आलू वड़ा जरूर चखिएगा, क्योंकि ये वहाँ की एक विशेषता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उसका स्वाद एक बार याद हो जाए तो लंबे समय तक भूलना मुश्किल है।
1: बिल्कुल ठीक साथियों, राजगढ़ की पहचान उसके महान लोगों से भी है। साथियों, मध्य प्रदेश के पहले स्वास्थ्य मंत्री सैयद

0: हामिद अली सुठालिया के निवासी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बेहद ज़्यादा योगदान भी रहा है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रदेश की सेवा की और लगातार लगे रहे।
1: बिल्कुल, और इतना ही नहीं राज, गोवा मुक्ति आंदोलन में भी राजगढ़ का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इस आंदोलन में राजगढ़ के 3 सेनानी शहीद हुए थे। ये तथ्य बताता है कि इस जिले के लोगों ने सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि देश की आज़ादी और एकता के लिए भी बलिदान दिया।
0: सचमुच मुझे लगता है साथियों, किसी शहर को समझना हो तो सिर्फ उसकी सड़कें या फिर इमारतें मत देखिए, उसके लोगों का इतिहास देखिए, उनका संघर्ष देखिए, उनकी संस्कृति की झलक देखिए और वहाँ बोलने जाने वाली बोली जो कि मालवा की मालवी बोली बहुत मीठी बोली है। राजगढ़ एक ऐसा ही जिला है जहाँ हर मोड़ पर एक कहानी मिल ही जाएगी आपको।
1: तो अगर कभी आपका सफर मालवा की ओर हो तो राजगढ़ को सिर्फ रास्ते का पड़ाव मत समझिए। नरसिंहगढ़ का किला, चिड़ीखो अभयारण्य, जालपा माता मंदिर, संस्कृत बोलने वाला गांव, मोहनपुरा डैम और वहां का मशहूर अलूवड़ा, ये सब मिलकर राजगढ़ को एक अलग पहचान देते हैं। तो इन सब का मुआयना जरूर कीजिएगा।
0: खैर साथियों, आज के हमारे शहर में बस इतना ही। अब बढ़ते हमारे अगले पड़ाव की और सुनते हैं एक तारा सा गीत, फिर लौटेंगे रोचक भरे तथ्यों के साथ।

0: दोस्तों, बारिश का मौसम आते ही हमारे आसपास बहुत कुछ बदलने लगता है। पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, नदियाँ भरने लगती हैं और एक आवाज़ ऐसी है जो अचानक हर ओर सुनाई देती है, ट्र ट्र की, यानी मेंढकों की आवाज़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश शुरू होते ही मेंढक इतने सक्रिय क्यों हो जाते हैं?
1: सच कहूँ ना चित्रा, तो बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि मेंढक जो होते हैं बारिश बुलाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि असल में बारिश ने उन्हें नहीं बुलाती, बल्कि बारिश जो होती है उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मौसम होती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा दोस्तों। वैज्ञानिकों के अनुसार मेंढक बायो इंडिकेटर यानी जैव संकेतक माने जाते हैं। इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र का पर्यावरण कितना स्वस्थ है, इसका अंदाजा वहां पाए जाने वाले मेंढकों से लगाया जा सकता है। अगर किसी इलाके में मेंढकों की संख्या कम होने लगे तो यह पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकता है।
1: अब मुझे पता चला उनकी टर टर की आवाजें मतलब बेवजह ही नहीं होती। साथियों, मानसून के दौरान नर मेंढक मादा मेंढकों को आकर्षित करने के लिए आवाज निकालते हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि हर प्रजाति के मेंढक की आवाज एक अलग सी होती है, यानी अगर ध्यान से सुने तो वह भी प्रकृति की अपनी एक अनोखी सी भाषा है।
0: हाँ, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं आजकल? साथियों, भारत में मेंढकों की लगभग 430 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और हर साल वैज्ञानिक नई प्रजातियों की खोज भी करते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत तो उभयचरों की जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
1: साथियों, एक रोचक तथ्य यह भी है कि मेंढक किसानों के मित्र भी माने जाते हैं। ये खेतों में मौजूद कीड़े मकोड़ों को खाकर उनकी संख्या नियंत्रित करते हैं, मतलब एक चक्र चलता रहता है जो कि प्रकृति का है। यानी बिना किसी रसायन के प्राकृतिक रूप से फसलों की रक्षा करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है।
0: लेकिन बदलती जलवायु, प्रदूषण और आर्द्र भूमियों के कम होने से दुनिया भर में मेंढकों की कई प्रजातियां खतरे में है दोस्तों। इसीलिए वैज्ञानिक इनके संरक्षण पर लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेंढक सुरक्षित है तो इसका मतलब कि हमारा पर्यावरण भी अपेक्षाकृत स्वस्थ है।
1: मुझे लगता है कि चित्रा, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु या फिर हम मनुष्य हैं, मतलब सभी का एक अनोखा एक होने का, मतलब धरती पे होने का एक तत्व है, मतलब एक महत्वपूर्ण योजना है। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमें हमारे कर्म करना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, काम भी करना है, उसी तरह प्रकृति का जो भी एक जीव जंतु वो भी एक चक्र में बंधा हुआ है। तुम क्या कहते
0: हो? बिल्कुल, सबके अपने अपने काम होते हैं और उसमें थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो पूरा चक्र हिल जाता है।
1: हाँ।
0: हम सोचते हैं कि एक छोटे से जीव के विलुप्त होने से या कम हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसका प्रकृति पर, पर्यावरण पर काफी गहरा और हाँ। बड़ा फर्क पड़ता है।
1: तो मुझे लगता है साथियों, इन सभी चर्चा से आपको पता तो चला होगा कि मेंढक हमारे प्राकृतिक रूप से हमारी वर्षा या फिर खेती के लिए कितने ज्यादा आवश्यक है। और यही कारण है कि दुनिया भर में कई देशों में मानसून आने से पहले वैज्ञानिक मेंढकों के व्यवहार पर भी नजर रखते हैं, उनकी गतिविधियों, मौसम और पर्यावरण में हो रहे बदलावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी निकाल लेते हैं।
0: हाँ, तो साथियों, अगली बार जब बारिश की शाम में मेंढकों की आवाज सुनाई दे तो उसे सिर्फ शोर समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। अपने ईयरफोन्स हटाइए, फोन को साइड में रखिए और थोड़ी देर प्रकृति की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। वह प्रकृति का एक संगीत भी है और पर्यावरण का एक संदेश भी।
1: बिल्कुल ठीक। तो आइए साथियों, इसी रोचक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के ये अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों और राज, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जहां लाखों करोड़ों बीजों को सालों तक संभाल कर रखा जाता है, तो शायद पहली बार में यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना?
1: क्या सच में? क्या भला बीजों का भी कोई बैंक होता है? हम तो अब तक सिर्फ बैंक के जो पैसा रखने की एक तिजोरी होती है, फिर बैंक जिसमें हम जमा करते हैं अपनी अपना सारा पैसा, उसी को बैंक समझते हैं आज तक तो बस।
0: हाँ, होता यही है, लेकिन बीजों का भी एक बैंक होता है और उसे कहते हैं सीड बैंक, यानी बीजों का बैंक। यहाँ फसलों और पौधों के बीजों को बेहद नियंत्रित तापमान और नमी में सुरक्षित रखा जाता है, ताकि भविष्य में अगर किसी फसल की कोई प्रजाति खत्म होने लगे तो उसे दोबारा उगाया जा सके।
1: अच्छा, तुम कहना चाहती हो जैसे हम अपनी विरासत को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही प्रकृति की विरासत को भी सुरक्षित रखा जाता है।
0: बिल्कुल राज। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, नई बीमारियां और बढ़ते शहरीकरण के बीच खेती को लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसे में बीज बैंक भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
1: साथियों, भारत में भी राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली में हजारों नहीं बल्कि लाखों बीजों का संरक्षण होता है और वहाँ करते भी हैं। इनमें गेहूं, धान, दालें, मोटे अनाज, सब्जियां और अन्य दुर्लभ पौधों की किस्में शामिल हैं।
0: और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध बीज बैंक नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप पर बना है, जिसे डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। वहां दुनिया के अलग अलग देशों से भेजे गए लाखों बीज सुरक्षित रखे गए हैं और इसे धरती का बैकअप भी कहा जाता है। राज,
1: दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक छोटा सा बीज अपने भीतर पूरे पेड़ की संभावनाएं छुपाए रहता है, और यही कारण है कि वैज्ञानिक बीजों को सिर्फ खेती नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से भी जोड़कर देखते हैं।
0: भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ धान की ही हजारों पारंपरिक किस्में रही हैं, अगर उन्हें सुरक्षित नहीं रखा गया तो साथियों वे हमेशा के लिए खो सकती है।
1: साथियों, शायद यही वजह है कि आज के वैज्ञानिक साथ साथ कई किसान भी पारंपरिक बीजों को बचाने का अभियान चला रहे हैं, क्योंकि जितनी विविधता हमारे बीजों में होगी उतने ही मजबूत हमारी खेती और हमारी खाद्य व्यवस्था होगी।
0: सच है, एक छोटा सा बीज सिर्फ एक पौधा नहीं उगाता बल्कि भविष्य की उम्मीद भी बोता है। इसलिए अगली बार जब किसी बीज को मिट्टी में डालें तो याद रखिएगा कि उसके भीतर सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि पूरी प्रकृति की कहानी छुपी होती है।
1: बिल्कुल साथियों। खैर, अभी बारिश का जो है मौसम भी चल रहा है, और तुमको ध्यान में होगा तो एक पेड़ एक माँ के नाम ये अभियान भी चल रहा है। तो हम जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं हमारे आसपास, गार्डन में, घर की छत पर या फिर आसपास जितने भी हमारे ऑफिस के आसपास, तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हरियाली होगी आने वाली पीढ़ियों के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर कल होगा।
0: बिल्कुल सही बात है साथियों। अगर आपके घर में मिट्टी नहीं है तो आप छोटे गमलों में, प्लास्टिक के कंटेनर्स में थोड़ी मिट्टी लेके कोई पौधा उगा सकते हैं। नहीं तो हम अपने पूरे मोहल्ले को अपना घर समझिए और जहाँ भी जगह मिले वहाँ पौधे उगाइए।
1: जैसे हमने आज बीज की बात की, तो मुझे लगता है ऐसे अलग अलग तरह के बीजों को हमको उगाना चाहिए और फिर ये प्रतीक्षा करना चाहिए साल दर साल के आने वाले समय में हमें कुछ फल तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, इतने मेहनत के बावजूद
0: फल ना तो फूल मिलेगा।
1: फूल मिलेंगे, बिल्कुल ठीक। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आप इस योजना को जरूर बनाइए और एक पौधा अपने माँ के नाम जरूर लगाइए। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों, मुझे लगता है आज का युववाणी प्रोग्राम आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने कई सारी रोचक जानकारी और तथ्यात्मक जानकारी, ज्ञानवर्धक हमने आप सभी से साझा की हैं। क्या कहती हो चित्रा?
1: बिल्कुल साथियों, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, जिसमें एक हमारा विशेष सेगमेंट था हमारे शहर, जिसमें आज हमने आपसे राजगढ़ के बारे में बातें की हैं। तो अगर अभी तक आपका शहर, आपका जिला जिसे युववाणी में कवर नहीं किया गया है, तो आप उसे हमें पत्र लिखकर बता सकते हैं और अगले हमारे शहर कार्यक्रम में हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे।
0: बिल्कुल। तो खैर, अभी जो है हमारे आज के जवाब देने का समय हो चला है, जो हमारे प्रश्न थे।
1: हाँ,
0: तो
1: मैं तो भूल ही गई कि आज
0: हाँ,
1: हमने अब दो प्रश्न पूछे थे और उनके जवाब अब हमें देने हमारे साथियों को।
0: बिल्कुल ठीक। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न था, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो उसका सटीक उत्तर है अरुणाचल प्रदेश।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
0: बिल्कुल ठीक।
1: इसका उत्तर है लद्दाख। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।
0: खैर, अब तो समय नहीं है मुझे लगता है
1: अरे
0: चित्रा गीत
1: हाँ,
0: सुनाने
1: बिल्कुल,
0: का।
1: घड़ी
0: खैर
1: ने इशारा कर
0: हाँ,
1: दिया
0: तो
1: है।
0: हम टाटा बाय बाय करते हैं। अब दीजिए अनुमति अपने दोस्त राज।
1: और चित्रा को
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत दिल्ली 6। इस फिल्म का गीत सुनिए जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज में। बोल प्रसून जोशी के हैं, धुन बनाई है AR रहमान ने।

काल फिल्म का गीत सुनिए अनुराधा श्रीराम, सुजाता और सोनू निगम की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं AR रहमान।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है,
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ, आज की, कल की, एक एक पल की। ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं
2: जी।
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और

0: अभिनेताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि किलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने किलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये किलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।

0: 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम,
5: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
6: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
1: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
7: धन्यवाद मैम।
8: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है। अरा

0: और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
0: जंगल के साथी।

0: आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यू उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना? क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल

0: बादल देखे, फिर दादी माँ,
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में पेश है शीला वर्मा का गाया ये गीत।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा,
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
2: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।
3: लीजिए सुनिए एक और गीत, कलाकार हैं शीला वर्मा।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे शीला वर्मा के गाय गीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में प्रस्तुत है उर्वशी सक्सेना के गाय लोकगीत।

लोक संगीत में आज आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीत। लीजिए सुनिए एक और लोकगीत। कलाकार हैं उर्वशी सक्सेना।

लोक संगीत में आज आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के लोकगीत, कलाकार थीं उर्वशी सक्सेना। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
3: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, 7 बजने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही तथा व्यापार जारी रखने का आह्वान किया।
5: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
4: नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध

0: अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसको तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य के कृषि मंत्री दूत कुमार मंडल, पंचायत मंत्री दिलीप घोष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 47वें ओवर में 8 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:05 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए अब आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 से सुनिएगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। 8:15 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 से चित्रगीत सुने जा सकते हैं। 9:30 से कार्यक्रम कहकशां हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे से श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन प्रसारित किया जाएगा। रात 10:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा उस्ताद अमजद अली खां के सरोद पर बजाए राग पूर्वी का। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको हमारे कल अर्थात बुधवार 15 जुलाई को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देने। कल सुबह 6:05 से सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 से खेती की बातें में सुनिएगा वर्षा जल संचयन भविष्य में जल संकट का समाधान। श्री रामचरित मानस गान का पाठ होगा 6:40 से। 7:20 से सुनिएगा कार्यक्रम आपका पत्र।

प्रस्तुति है राजेश की। 8:30 से लुत्फ लीजिएगा फिल्म संगीत का। 9 से लोक संगीत में बिहारी के गाए लोकगीत होंगे। 9:15 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं ए हरिहरन को। 9:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा प्रकृति वाहने के संतूर पर बजाए राग बैरागी भैरव का। 10:15 से सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11 से सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12 से फिल्म संगीत। 12:30 से संग्रहालय से। 1 से महिला कार्यक्रम। 1:30 से लोक संगीत। 1:45 से सुगम संगीत। 2 से फिल्म संगीत और 2:30 से चित्रपट संगीत। तो ये थे हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। हमारी कल की सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 से कार्यक्रम युववाणी के साथ। 5:45 से सुनिएगा फिल्म संगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा 6:00 से। 6:30 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं ए हरिहरन को। 6:45 से लोक संगीत में हरिहरेश्वर पोद्दार के गाए लोकगीत होंगे। 7:20 से ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी प्रसारित किया जाएगा। 8:15 से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर कर्टन रेजर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 8:30 से फिल्मी गीत सुने जा सकते हैं। 9:15 से सुनिएगा चित्र गीत। कार्यक्रम चर्चा का विषय है रात 9:30 से हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 10 से नाटक तबादला प्रसारित किया जाएगा। निर्देशन एवं प्रस्तुति है संजीव मालवी की। रात 10:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा प्रकृति वाहने के संतूर पर बजाए राग पूरिया कल्याण का। तो ये थे हमारे कल अर्थात बुधवार 15 जुलाई को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सौश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर होगी चर्चा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, करीब 10,500 करोड़ रूपए के विकास प्रस्तावों को मिली मंजूरी। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस का नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान शुरू, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और भोजशाला विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय रोजाना करेगा सुनवाई, नमाज के लिए वैकल्पिक जगह देने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार

0: सुश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। ये सेमिनार आचार्य सुश्रुत की जयंती के मौके पर आयोजित हो रहा है। इसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। इस मौके पर करीब 14.5 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक MRI प्रणाली का भी उद्घाटन होगा। सेमिनार में थाईलैंड, इसराइल और श्रीलंका सहित कई देशों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। भोपाल के वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में करीब 10,500 करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ी राशि शहरी अधोसंरचना विकास के लिए रखी गई है, जिसके तहत 8,445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपए की निःशुल्क सरकारी गारंटी को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राजगढ़ की कुंडलिया सिंचाई परियोजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया, जिससे राजगढ़ और आगरमालवा जिले में 1,39,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। साथ ही टेक होम राशन के उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी अब महिला और बाल विकास विभाग को सौंपी गई है।
1: एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है वह है महिला बाल विकास के संदर्भ में। आंगनवाड़ियों के अंदर जो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को उनको टेक होम राशन प्रदान किया जाता था, और यह टेक होम राशन आजीविका मिशन के माध्यम से 5-6 संयंत्रों से बनता था। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि टेक होम राशन का वहां से आजीविका मिशन से हटा करके यह कार्य महिला बाल विकास स्वयं करेगा।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में कई नए सुधारों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अब कंटेनरों में उर्वरक और फ्लाई ऐश का परिवहन किया जा सकेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। मंत्री ने बताया कि वैगन का डिजाइन अब उद्योग जगत भी तैयार कर सकेगा। उन्होंने कौशल प्रमाणन प्रणाली को 24 महीने में सभी परियोजनाओं में लागू करने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज पंचायतों के ऑडिट को आसान बनाने के लिए दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे की सुविधा भी शुरू हो गई। इस प्लेटफॉर्म से प्रदेश की 23,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का ऑडिट अब घर बैठे किया जा सकेगा। ऑडिटर कहीं से भी पंचायतों के आय व्यय के रिकॉर्ड देख सकेंगे। पेमेंट गेटवे के जरिए नागरिक अपने बिलों का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान शुरू किया है। इसका शुभारंभ आज भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। ये अभियान 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसका मकसद युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के नुकसान के प्रति जागरूक करना है। अभियान में सामाजिक न्याय, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग भी सहयोग करेंगे। जिलों में जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को कल समान नागरिक संहिता समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री ने समय पर रिपोर्ट देने के लिए समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया। ये प्रतिवेदन 3 खंडों में तैयार किया गया है। इसमें प्रस्तावित विधेयक में 4 भाग और 404 धाराएं शामिल हैं। समिति को इस दौरान 9.5 लाख से अधिक जन परामर्श प्राप्त हुए थे। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने की सिफारिश की है। यह प्रतिवेदन अब विधि विभाग को भेज दिया गया है और विधेयक मानसून सत्र में विधानसभा में रखे जाने की संभावना है।
3: UCC की रिपोर्ट कल हमको समिति ने भेंट कर दी है। हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से जरूर बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भोजशाला विवाद पर आज रोजाना सुनवाई करने पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने भोजशाला परिसर में पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग फिलहाल ठुकरा दी है। पीठ ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि परिसर के पास शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए वैकल्पिक खुली जगह उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने साफ किया कि यह व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। भोपाल में आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण किया। ये दीर्घा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इसमें ब्रह्मांड और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान और गगनयान तक की उपलब्धियां भी यहाँ प्रदर्शित होंगी। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज सदन पहुंचे। उन्होंने कहा कि सत्र में सप्लीमेंट्री बजट और नए कानूनों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया जाएगा। सरकार इस सत्र में करीब 11 विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें समान नागरिक संहिता का विधेयक भी शामिल है। इसी बीच विधानसभा सचिवालय में करीब 1 दशक बाद 181 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज किए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। इसके तहत 1.25 लाख एकड़ से अधिक जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। भूजल पुनर्भरण के लिए भी बड़े पैमाने पर संरचनाएं बनाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि 12,500 एकड़ में हरित क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। इस साल अल नीनो के असर से अनियमित बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने किसानों से खरीफ फसल का बीमा कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। ये बीमा सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देता है। किसान बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र, फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप के जरिए बीमा करा सकते हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में इस मानसून सीजन में जुलाई महीने में पहली बार सामान्य से कम बारिश हुई है। अब तक प्रदेश में करीब 9.5 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 3% कम है। पिछले 5 दिनों से बारिश की रफ्तार थमी हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने पर प्रदेश में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज 2026 प्रतियोगिता 7 अगस्त को होगी। शिवपुरी जिला प्रशासन द्वारा सभी विवादित प्लॉटों के कर क्रय विक्रय और नामांतरण पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। छतरपुर और धार जिले में आज दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान 2026 का विधिवत शुभारंभ किया गया। मंडला में स्कूली वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग का 10 दिवसीय विशेष जाँच अभियान जारी है। झाबुआ और बैतूल जिला प्रशासन द्वारा जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। भोपाल में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती रैली में प्रदेश के 15 जिलों के पात्र पुरुष अभ्यर्थी विभिन्न पदों के लिए शामिल होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुन्न वाला सबै किसान भाई बहनका अनुराधा की राम राम। भाई बहनों ने अपन देखा है कि पानी का मामला में पूरो विश्व जी छे वो बारिश पर निर्भर छे। अपन अपना देश की बात करा तो अपना देश में बारिश को जी मौसम रज उरज दो तीन महीना को कभी कभी तो ढाई तीन महीना में खत्म हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जी पानी अपन बारिश से ले रहा है ओखा अपन का साल भर चलावनो छे न खेती का काम न में तो देखो सिंचाई बहुत आवश्यक चीज़ छे क्योंकि अपना पौधा न को जी शरीर छे पौधा जी बनेल छे ओका में लगभग 70% से ज़्यादा तो पानी ज रहे। तो ऐसी स्थिति में पौधा न का पानी तो चाहिए। आमा अपन कभी खरीफ की फसल की बात करा तो खरीफ में तो कही रहे कि बारिश को पानी आई जाए तो बहुत सारा किसान भाई बहन नखा अलग से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर कभी रबी की बात करा तो रबी में तो अलग से सिंचाई भी देनी पड़े। तो एको मतलब ये है कि हमने जी खरीफ का समय जी पानी का बचायो थो उसका संग्रहण करो थो उसका जमीन का अंदर उतारियो थो उस पानी का अपन निकाले ना बाद में छेते अपनी रबी की फसल में सिंचाई का लेना उपयोग कराएं। न कभी कभी पानी को ज़्यादा सोय हो तो हमारा किसान भाई बहन जायद की फसल भी ले रहे जे तीसरी फसल भी ले सकज। तीसरी फसल कहाँ लेगा जब वह पानी को सोय उनका पास होएगा पानी उनका पास संग्रहित होएगा तो नहीं तो खेत खाली छोड़ना पड़े। न कभी हमारा किसान भाई बहन ना अभी समय रहता इन्हीं बात को ध्यान नहीं रखियो कि भाई हमका पानी का जमीन का अंदर उतारनू तो ऐसी स्थिति भी आई जाएगा कि अपन नखा दूसरी फसल का समय भी खेत खाली छोड़ना पड़ेगा रबी की फसल का लेना भी पानी नहीं मिलना को। तो ऐसी स्थिति नहीं बना एका लेना अपन नखा अभी से सब प्रयास शुरू करना पड़ेगा। हम करनूज का ही भाई कल नहीं कि खेत को पानी खेत में खेत की मिट्टी खेत में तो आप खेत का पानी का खेत से बाहर मत जाने दो। अपना खेत में जी भी पानी पड़े हो वो आपको अपनो आए ऊपर बारिश से जितो पानी आयो ओखा खेत का अंदर ज कहीं ना कहीं जमीन में उतारने की व्यवस्था करनी पड़ेगा। अपन काई काई करी सकें देखो खेत का आसपास बहुत गहरी गहरी नाले ने किसान भाई बने लेज पर ओका में काई हो कि यदि ओके नियमित रूप तरीका से साफ सफाई नहीं करा तो ओका में कचरो जमी जाए पत्ता जमी जाए तो पानी ओका में फिर नीचे नहीं जाता है। तो असी गहरी नाले न पानी अतिरिक्त पानी जितो पानी अपन नखा अपनी फसल का चाहिए वो तो मिल ही जाएगा पर अतिरिक्त पानी जब वही ना निकलेगा तो उन्हीं गहरी नाले न भरेल रहेगा वहाँ भरेल रहेगा तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे रेंजाया करेगा ना जमीन का अंदर उतरी जाएगा। तो ऐसा में कई होगा कि हमारी जमीन का जी छे पानी अंदर जी उतरना चाहिए जी अपन का वहाँ भूजल भूजल को स्तर बढ़ी जाएगा। एक अलावा काई करी सकाएं कि भाई अपना खेत में अपन देखा कि थोड़ा सा ढलान एक तरफ रज कभी तो छोटो सो एक तालाब बने ले जैसा कहें खेत तालाब। खेत तालाब ऐसा तालाब छे कि जेकी बहुत बड़ो नहीं रहते हैं आपज को खेत को तालाब छे वो जितो बड़ो आपको खेत होएगा उतो बड़ो को तालाब। यदि खेत बहुत बड़ो छे तो तालाब भी बड़ो ही सकज यदि खेत छोटो सो छे तो छोटी जगह में एक तो छोट तालाब को मतलब कि वहाँ पानी इकट्ठो रहे क्योंकि यदि पूरा खेत में पानी रहेगा इकट्ठो तो अपनी फसल ना सड़ाई देगा। तो एकालन अपन पूरी फसल में तो पूरा खेत में तो पानी का इकट्ठो नहीं करी रखी सकता है ओका अपन नखा निकाले ना एक जगह इकट्ठो करना पड़ेगा वो जब वहाँ इकट्ठो रहेगा तो नीचे धीरे धीरे धीरे धीरे रिंझाया करेगा ना जमीन का अंदर उतरी जाएगा। अब हमारा किसान भाई कहेगा कि भाई हाँ इतो सो जमीन नौका में भी अरु तालाब बने देवांगा तो फिर हमारा फसल कहाँ लेवांगा। पर ये आप निश्चित मानी ना चलो कि जितो अपन नखा जमीन अपनी वापर में आई रही नहीं खेत का तालाब बनावना में वहाँ अपन फसल नहीं ले पाई रहा है ओको पूरो अपन नखा भुगतान उन्हें तालाब से हुई जाएगा। तो अपन कहीं से भी घाटा में नहीं जाना का अपना पास जितो भी पानी आयो जो पानी अपनी अगली फसल में यहाँ अपन ना अभी कह सकें कि भाई खरीफ की फसल में हमने इतना क्षेत्र में तो अपनी फसल नहीं लगाई। यदि अपन ही माना कि अपना खेत का अपन 10 भाग में बांटा है तो कम से एक भाग में अपन छोटा सा तालाब बना सकें 9 भाग में अपनी खेती करांगा फसल लगावांगा तो वो जी एक भाग को नुकसान हुई नहीं कि ओका में अपन ना फसल नहीं मिली वो एक भाग को हट जानो अपनो अगर ओका में भर ही जाएगा ओको जी छे बराबर हो जाएगा कि अपन ना अगली फसल का लेना वो तो पानी मिलेगा कि जब रबी की फसल अपन लगावांगा या जायद की फसल लगावांगा तो वो बराबर हो जाएगा। तो नुकसान कहीं से भी किसान भाई बहन ना नहीं होने को बस अपन ना थोड़ा सो प्रयास करना की आवश्यकता छे कि खेत को पानी रोकी ना ढाड़ बने ना या फिर नाड़े ना खोदी ना ओखा अवेरी लेवा क्योंकि इस समय छे कि खेत अपना पास बारिश को पानी आई रोज अवेरी सकांगा इना समय ओका बात तो बस वापरनूज साल भर। तो
तो साल भर वापरना में भी अपन नख थोड़ी सी किफायत रखनू पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खुला तरीका से वह तरीका जी है ना अपना सिंचाई का तरीका वो काम बदलाव करना पड़ेगा, जका में कि कम पानी लगा ऐसी सिंचाई करना पड़ेगा। पर पहला रोकांगा जब तो अगली सिंचाई की बात करांगा, तो खरीफ का समय या मानसून का समय अभी जी पानी आई रोज ओखा अपना खेत में जमीन का अंदर उतारो न अपना खेत न जल संरक्षण करी ना ओको जल भंडारण करी लो। इना समय जल भंडारण हुई गो तो उना भंडार में से अपन बाद में आने वाली फसल का लेना पानी निकाल ही सकें। तो ये तो थी जल संरक्षण की बात। कार्यक्रम में आगे बढ़ांगा सुनांज कलाबाई खारवा ने उनका साथी नको गायल ई गणेश वंदना एक ऐसी अपन आज अपना कार्यक्रम की शुरुआत करांज।

0: शंकर जी का लाल के दुनिया पेला पूजे, ये अभी लोकगीत अपन सुनी रहा था। कलाबाई खारवा ने उनका साथी नको गायल। भाई बहनों ने सोयाबीन की फसल अच्छी बढ़वार पे है, वही भाइयों ने समय पे उनकी बुआई कर दी थी तो अच्छी जमी भी गई है। पर कभी कभी का हो कि जैसी जैसी बढ़वार हो, कभी पानी ज़्यादा आई हो तो परेशानी, कभी बहुत लंबा समय तक पानी नहीं आए हो तो परेशानी। तो ऐसी स्थिति में आवा ये समय है कि उनको ध्यान रखना की बहुत आवश्यकता है। न कभी अपन ने पहले से ध्यान रखी लियो तो कोई भी रोग हो उसका लक्षण यदि देखा है, कोई भी बीमारी हो उसका लक्षण देखा है तो उसका समय पर अपन की रोकथाम कर सकें। तो एक कारण इना समय फसल न की निगरानी आवश्यक है। तो आज अपन अपना कार्यक्रम में एक भेंटवार्ता सुना सोयाबीन में अर्धगलन रोग, जखा की डंपिंग भी कवाज असु रोग अर्धगलन, उनकी पहचान किना तरीका से कराना, उनकी रोकथाम किना तरीका से हो, एक बारे में जानकारी दे रही डॉक्टर बबली जी की पादप रोग विशेषज्ञ छे, सीहोर से हमारा बीच में पधारी थी, उनका सी बातचीत करी रही बहन भारती उपाध्याय।
1: किसान भाई बहनों, आज अपन अपनी चौपाल पे बात करांगा सोयाबीन ने अर्धगलन रोग, जो कि सोयाबीन की जत अपनी फसल अपन लगावाना है ओका बाद ओका में यो रोग होने की संभावना होवे है। इकी पहचान अपन अपना किसान भाइयों कैसे करे, इको प्रबंधन कैसे करे ने इका से बचने सारू अपना किसान भाइयों कई करी सके है, इन्हीं जानकारी सारू आज अपना बीच उपस्थित है डॉक्टर बबली। आप पादप रोग विशेषज्ञ है और आप सीहोर से आई है, तो बबली जी आप तमारो हमारी चौपाल पे स्वागत है ने राम राम।
2: धन्यवाद मैडम।
1: सबसे पहला तो मैं आपसे यो जानना चाहूंगा कि कई होवे यो अर्धगलन रोग ने यो अपनी फसल के कैसे नुकसान पहुंचावे।
2: जैसे कि आपने पूछा है कि अर्धगलन रोग क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे अभी कृषक अपने जो मालवा क्षेत्र है इसमें सारे किसानों ने अभी तक मतलब फसल की बुआई कर चुके हैं और कुछ कृषक भाई बहन अभी बुआई भी चल रही है कहीं कहीं पे। तो इसका जो रोग है अर्धगलन या डैम्पिंग ऑफ, इसका मुख्य कारण जो है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं और इसको कैसे पहचाने। तो ये जो रोग है ये दो अवस्था में, सोयाबीन की फसल हो या कोई भी फसल हो, दो अवस्था में ये नुकसान पहुंचाता है। पहली अवस्था तो हुई कि जब हम बीज बोते हैं तो जो बीज होता है उसको प्री इमरजेंसी स्टेज बोलते हैं और एक होती है पोस्ट इमरजेंसी स्टेज। तो जो प्री इमरजेंसी जो स्टेज होती है वहाँ पे क्या होता है, अंकुरण के पहले जैसे ही हम बीज की बुआई करते हैं, वो चाहे बीज बोने के बाद जो बीज होता है वो काला पड़ जाता है, सड़ने लगता है, तो उसका यही कारण है क्योंकि ये फफूंद की वजह से। और दूसरा है बीज अगर अंकुरित हो जाता है उसके बाद जो पौधा है वो सडनली अचानक मरने लगता है, जो उसका जो तना वाला भाग है वहां पे ऐसा लगता है जैसे कि पानी, जैसे पानी भर गया होगा, पानी के धब्बे जैसा दिखता है, या फिर फफूंदी उसके सफेद सफेद कलर की जो फंगस की जो वृद्धि है वो दिखाई देती है। तो ये जो अर्धगलन है ये कहीं कारक है इसके, जो इसको फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें कई तरीके के जो रोगजनक है वो अपने भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मैं बात करूं फ्यूजेरियम हुआ, फाइटोप्थोरा हुआ, और स्क्लेरोटिनिया हुआ, और ऐसे कई तरीके के जो पैथोजन होते हैं जैसे कि राइजोक्टोनिया हुआ, ऐसे कई तरीके के जो रोगजनक है जो कि इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और वो जो फसल है वो अचानक मरने लगती है।
1: अच्छा अच्छा, तो तुम ये बताओ कि जैसे ऐसी कौन सी अवस्था हुए जिसमें ये अपना के रोग लगे कि हाँ यो हीरो है और अपने के आप मतलब बचे ही सका अपना पौधा के, तो वह कौन सी अवस्था?
2: जैसे कि ये जो हम बात करते हैं अर्धगलन या डैम्पिंग ऑफ रोग, ये बेसिकली नर्सरी स्टेज में होता है, जब हमारी फसल होती है वो एक डेढ़ महीने या दो महीने की जो फसल हो जाती है बुआई से लेके एक दो महीने तक ये फसल को ज्यादा प्रभावित करता है।
1: अच्छा अच्छा, तब अपन मतलब अपनी फसल के देख ही सका है कि यो अर्धगलन रोग ही
2: क्यों है। जैसे किसान भाई इसको किसान भाई इसको कैसे पहचानेंगे कि वो जो मिट्टी की जो सतह है उसके ऊपर जो तना वाला भाग है उसमें ऐसा लगेगा आधा मतलब पतला सा पड़ जाएगा और गलने लगता है, ऐसा लगता है जैसे पानी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, पर ये पानी की वजह से नहीं होता है, इसमें कई तरह के रोगजनक इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से हम ये डिसीज बोल सकते हैं कि ये डिसीज के सिम्टम्स है।
1: तो बबली जी, जैसे कि अपना किसान भाइयों ने जो एका सारू कई सावधानी रखी सके,
2: इसमें जो मुख्य कारण है, इसमें जो ये जो बीमारी का है वो मुख्य कारण एक ही है कि मतलब जैसे कि जो फसल है, हमारा खेत है, वो पानी भराव की स्थिति होती है, ज़्यादा पानी होता है उसमें, प्रॉपर तरीके से जो जल निकास है वो नहीं हो पाता है, और बहुत ज़्यादा नमी होती है मृदा में, जो नमी होती है, तो ये मेन कारण होता है। जो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अगर बनता है कंडीशन, तो ये ज़्यादा फसल को प्रभावित करता है।
1: हाँ, तो मतलब अपना किसान भाई उनके चाहिए कि अगर पानी अपना खेत में भरे ही रहे तो उनकी निकासी की व्यवस्था अच्छे तरीके से तो ये ना रोग से अपन अपना सोयाबीन के बचे ही सका।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: साथ ही इको प्रबंधन अपन कैसे करा?
2: इसका प्रबंधन के लिए कई सारे जो प्रबंधन के इसके तरीके हैं, जैसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, जो कि हम अगर फसल बुआई है उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जो कि किसान भाई को करना चाहिए, जैसे कि जो मृदा उपचार है उसको, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपन एक ही जैसी फसल सेम उसी जगह पर हर साल, अपने पिछले बार भी सोयाबीन लगाए हैं, इस बार भी सोयाबीन लगाए हैं, और अभी जैसे कि रबी की जो फसल है वहाँ पे चना लगाया, फिर हमने सोयाबीन लगाया, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रोगजनक होते हैं जो कि दूसरी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो मेन कारण तो यह है कि सोइल का जो बीज उपचार करना, सोइल का उपचार करना, ये मेन इसका रहता है। और दूसरा है कि हमारी जो पहले साल में जो फसल लगाई है उसके कुछ रेसिड्यूज बच जाते हैं, तो उसमें क्या करता है, ये पैथोजन वहाँ पे सर्वाइव करता रहता है, और जैसे ही हम दूसरी फसल लगाएंगे पानी मिलेगा, जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये फसल को नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देता है।
1: अच्छा, सोयाबीन का अलावा भी ये रोग और कौन कौन सी फसल में हो सके?
2: हाँ, ये जो रोग है सिर्फ सोयाबीन की फसल तक ही सीमित नहीं, ये कई तरह की जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं, और आपकी जो सोयाबीन हुआ, और जो कॉटन की अगर मैं बात करूँ तो कपास हुआ, और मिर्च हुआ, टमाटर हुआ, ऐसे कई तरीके की जो सब्जियाँ हैं जिसको कि ये नुकसान पहुँचाता है।
1: अच्छा, बबली जी, जैसे कि अपना किसान भाई उन कपास की भी फसल लगावे, तो कपास की फसल में कभी कभी देखने में आवे कि उको जो पौधो है वो अचानक से मरी जावे, तो हाँ, एको कई कारण है?
2: इसका जो मुख्य कारण होता है, इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको विल्ट बोलते हैं, मतलब पौधा होता है वो अचानक सूखने लगता है। अब जो विल्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक तो परमानेंट विल्ट जिसको हम बोल सकते हैं, और एक टेम्परेरी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पानी की कमी की वजह से भी पौधा ऐसा मुरझाया हुआ दिखाई देता है, विल्ट हो जाता है। और इसका दूसरा कारण ये है, इसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसे बैक्टीरियल विल्ट बोलते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, और कुछ फंगस विल्ट भी होता है, तो उसमें कई तरीके के जो पैथोजन है, रोगजनक है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फ्यूजेरियम हुआ, मेन कारण तो फ्यूजेरियम हुआ, फाइटोप्थोरा हुआ, राइजोक्टोनिया हुआ, ऐसे कहीं सोइल जो मृदा जनित रोग होते हैं जो कि इस फसल को नुकसान होते पहुंचाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं देखूं तो मतलब हम देखें तो बैक्टीरिया होता है और दूसरा होता है फ्यूजेरियम, इसकी वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपकी कपास की फसल में।
1: तो अपना किसान भाई उनके कई सावधानी रखनी चाहिए।
2: इसमें ऐसा है कि अगर आपने कॉटन लगाया है, कपास लगाया है, तो ट्राइकोडर्मा जो वीरिडी है, ट्राइकोडर्मा की बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में मिल जाते हैं जो कि वो समय समय पर छिड़काव करते रहे।
1: अच्छा, देखो आपने जैसे कपास की बात करी, तो वैसे ही मैंने देखे बहुत बार की मूंगफली में भी कभी कभी कहीं हो कि जो पत्ती ना हुए नहीं और मैं काला काला धब्बा दिखने लगी जाए, तो यो कौन सा रोग है?
2: यह जो मूंगफली में इसमें दो, इसमें टिक्का रोग बोलते हैं, ये अर्ली टिक्का होता है, लेट टिक्का होता है, दो तरह का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब अर्ली टिक्का होता है कि जैसे हमने फसल लगाई उसमें पत्ती आने लगी, तो छोटे छोटे उसके ऊपर धब्बे स्पॉट्स उस पर दिखाई देते हैं, तो ये अर्ली स्पॉट, और लेट स्पॉट में इससे ज्यादा और ब्लैक कलर के से धब्बे दिखाई देते हैं, तो इसको हम टिक्का रोग ही बोलते हैं। इसमें जो किसान भाई है अगर इसका नियंत्रण, अगर ज्यादा प्रॉब्लम करते ही है ये जो अपनी मूंगफली की फसल है उसमें, तो जैसे डाइफेनाकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, उनका 0.5 से 1 ml पर लीटर के हिसाब से वो 15 दिन में, महीने में एक बार उसका स्प्रे करते रहे,
1: तो उका से ये रोग खत्म हो जाए।
2: हाँ,
1: बबली बहन, जैसे कि मिर्ची माए भी मतलब बहुत बार देखे हुए कि जो मिर्ची रेनी ओको माथो बनी जावे,
2: हाँ,
1: तो या कौन सी बीमारी है ने इका से अपना किसान भाइयों कैसे इन रोग से बचे सके हैं?
2: ये जो रोग है ये बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं लीफ कर्ल ऑफ चिली, मिर्ची में जो पत्तियां उसमें, जो अपनी लोकल भाषा है इसमें माथा बन जाना बोलते हैं, जो पत्तियां होती है उसका सर वाला जो भाग होता है पौधे का जो सर पे, वो छोटी छोटी पत्तियां हो जाती है, वो मिर्ची भी लगती है तो वो बहुत छोटी छोटी सी लगती है। तो इसका जो मेन कारण होता है, इसका जो कारक होता है सफेद मक्खी, ये क्या करती है एक पौधे से दूसरे पौधे में इस बीमारी को फैलाने का कार्य करती है, और ये इसका कारक है सफेद मक्खी। और ये बीमारी जो है, बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका जो कारक होता है सफेद मक्खी, उसके लिए अगर जो किसान भाई हैं वो जैसे नीम ऑयल हुआ, अगर वो ऑर्गेनिक पे जाना चाहे तो नीम ऑयल वगैरह, या फिर इमिडा क्लोप्राइट आता है इसके लिए इंसेक्टिसाइड, उसका समय समय पर स्प्रे करते रहें।
1: अच्छा।
2: और अगर बहुत ज्यादा, अगर पौधे जो पौधा है वो बहुत ज्यादा ही अफेक्ट हो गया है इस बीमारी से, तो उसका जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है, संक्रमित जो भाग होता है, उसको वहां से काट के और थोड़ी खेत से दूर निकाल के उसको जमीन में गाड़ देना चाहिए, ताकि दूसरे पौधे में ये बीमारी ना फैल पाए।
1: अच्छा अच्छा। देखो अभी अपना किसान भाइयों ने मतलब टमाटर ने मिर्ची लगाया है, लेकिन अधिकतर देखने में आवे कि उन पौधा में भी काला काला धब्बा दिख रहा है, तो वो कई कारण है, और वैसे अपना किसान भाइयों कैसे बचे?
2: हाँ, इसमें क्या होता है, जो टमाटर है उसमें ये अर्ली ब्लाइट होता है अल्टरनेरिया सोलनी की वजह से। तो इसमें क्या होता है, जैसे टमाटर की फसल लगाते हैं कुछ टाइम बाद इसमें जो ब्लैक काले कलर के जैसे आप बोला कि वो धब्बे दिखाई देते हैं, तो ये अल्टरनेरिया ब्लाइट की वजह से होता है। और इसको मतलब रोकथाम के लिए जो किसान भाई है, या तो वो जैसे ट्राइकोडर्मा हुआ, अगर वो ऑर्गेनिक ही खेती कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा हुआ उसका भी वो स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि डाइफेनाकोनाजोल हुआ, एक नेटिवो आता है बाजार में, तो उसका भी 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से वो स्प्रे करते रहें।
1: अच्छा अच्छा। तो मतलब अपना किसान भाई उनके निरीक्षण करते रहना चाहिए अपने फसल को, और फिर अगर लगे कि हाँ रोग हो गया है तो अपन दवा को छिड़काव तुरंत ही कर देना चाहिए, जिसका अपना पौधा ना बच ही सके।
2: हाँ, उसमें क्या होता है, यही चीजें हैं, इसको निगरानी बोलते हैं, बेसिकली मॉनिटरिंग। तो जैसे किसान भाई अपने खेत में गए हैं, अभी जैसे सोयाबीन की जो फसल है अभी अभी छोटी स्टेज पे है, तो ये जो डैम्पिंग ऑफ की आर्द्र गलन की जैसे कि हमने बात करी, तो ये छोटी अवस्था में पौधे को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद ये जो येलो मोजेक जो होता है, पीले पत्ते पड़ने लगते हैं सोयाबीन की फसल के।
1: अच्छा, तो ये कौन सी बीमारी?
2: तो ये बीमारी होती है येलो मोजेक ही बोलते हैं। अच्छा। सोयाबीन का येलो मोजेक, ये भी एफिड और व्हाइट फ्लाई वगैरह है, एक कीट जिसको हम बोलते हैं, इसके द्वारा ये बीमारी एक संक्रमित पौधे से दूसरे संक्रमित पौधे में ये ट्रांसप्लांट, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में ये संक्रमित करते हैं। तो इसके लिए ये है कि जैसे ऑर्गेनिक में अगर जाना चाहे, या फिर बायो कंट्रोल में जाना चाहे, या फिर केमिकल में जाना चाहे, तो समय समय पर जैसे इमीडा क्लोप्राइट हुआ, इनका समय समय पर स्प्रे करते रहे किसान भाई। और दूसरी बात है कि अगर पौधे में निगरानी करते रहे, अगर पौधे कहीं पे भी पीले पीले दिखाई दे रहे हैं, एक पौधा या एक पौधा वहां, तो उसको जो संक्रमित पौधा है उसको खेत से बाहर कर दे, क्योंकि क्या होता है जो सफेद मक्खी, हम एफिड की बात करें, वो संक्रमित पौधे पे बैठता है, और वो पता नहीं ना जाने एक दिन में वो कितने पौधे को संक्रमित करता है एक दिन में। तो इसका यही है कि अगर जहां पे भी पौधा कहीं कहीं पे भी दिखाई दे, तो उसको समय रहते ही उस पौधे को वहां से उखाड़ के
1: और बाहर ले जाइए, गाड़ दो,
2: गाड़ देना चाहिए।
1: ठीक है। बबली बहन, जैसे कि अपन टमाटर, मिर्ची और अपना कपास ने इसकी मूंगफली की बात करी, वैसे तुअर की बात करा, तो बहुत बार अपन देखा कि ओका पौधा माए भी थोड़ा बड़ा होएगा ना, ओका बाद अपना आप ही मतलब पता ही नहीं चले कब सूखी गया।
2: हाँ,
1: तो एको कई कारण हुई,
2: ये भी फ्यूजेरियम विल्ट की वजह से ये पौधा में बीमारियां होती है, और ये भी एक तरीके का विल्ट है। और जैसे कभी कभी होता है किसान भाई के अपने आप जैसे अच्छा फल लग रहा है फसल में, और ये एक अचानक से फसल है वो सूख जाती है, तो ये भी एक बीमारी है। और इसमें भी कई कारक रहते हैं, जैसे कि फ्यूजेरियम विल्ट हुआ, तो इसमें यह है कि किसान भाई जो ट्राइकोडर्मा वीरिडी है उसको क्या करें, ऐसे मतलब डालते रहे, स्प्रे कर दें, या फिर ऐसे ब्रॉडकास्ट भी वो कर सकते हैं उसके जमीन के ऊपर। और सबसे मुख्य कारण जो है वो बीज का उपचार, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीज के अंदर ही ये बीमारी रहती है, और जैसे ही क्योंकि ये डोरमेंट अवस्था में ये रहती है, सुसुप्त अवस्था में, और जैसे ही हम फसल लगाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, सारी चीज़ें मिलती है इसको, हवा पानी ये सारी चीज़ें मिलती है, तो जैसे ही हम ये फसल को बीज बुआई करते हैं और ये बीमारी हम मतलब संक्रमित करना स्टार्ट कर देती है पौधे को।
1: तो बबली बहन, जैसे कि आपने बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना एक तो माटी परीक्षण, ने दूसरों है अपना बीजोपचार, तो अपना किसान भाई उनके बीजोपचार सारू कई सावधानी रखनी चाहिए।
2: बीज उपचार जरूरी है कोई भी फसल, क्योंकि अभी ऐसा होता है बहुत सारे ऐसे किसान भाई बहन हैं अपने जो कि बाहर से अच्छा बीज नहीं खरीद पाते हैं, घर का बीज लगाते हैं, छोटे किसान होते हैं, उनके पास कम जमीन होती तो वो सोचते हैं कि अपन घर का ही बीज लगाएं वैसा, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो बीज उपचार जरूर करें, जैसे कि एक साफ हुआ कार्बन डाइजिन प्लस मेनकोजोब का कॉम्बिनेशन होता है, और या तो फिर एक रिडोमिट गोल्ड के नाम से आता है मार्केट में, मेटल एक्जिल प्लस मेनकोजेब, इसके 2 से 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से वो अपना बीज उपचार कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि मृदा उपचार भी बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है किसान भाइयों के यहाँ, तो मृदा का उपचार करके ही बीज को बुआई करें।
1: चलते चलते आप हमारा किसान भाई उनके कई कहना चाहोगा?
2: मैं किसान भाइयों को यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले जो हमारी जो सावधानी है, वो चाहे तो वो बहुत सारे अगर ऑर्गेनिक में जाना चाहे कि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट है जैसे नीम ऑयल वगैरह हुआ, नीम सीड कर्नेल्स हुए, तो इसका समय समय पर वो उपचार करते रहें फसल का। और दूसरी बात यह है कि अगर बायो कंट्रोल पे जाना चाहे तो कहीं सारे ऐसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हरजाना में से कहीं तरीके के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उपलब्ध है, कहीं सारी कंपनियां इसको बनाती है, और इसके लिए जो अपने मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय जबलपुर है वहां पर इसकी पूरी यूनिट बनी हुई है, तो वहां पर भी ये सस्ते दामों में मिल जाता है, तो किसान भाई वहां से भी संपर्क करके ये प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर बीमारी बहुत ज़्यादा ही है कि भाई कंट्रोल में ही नहीं हो पा रही है, तो वो केमिकल पे जा सकते हैं, जैसे कि कहीं सारी बीमारी है जिसके लिए जो अगर जैसे हम डैम्पिंग ऑफ की ही बात करें, तो इसमें एक थियोफेनेट मिथाइल आता है जो कि मार्केट में रोको के नाम से मिलता है, इसके लगभग 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से भी फसल के ऊपर स्प्रे करते रहें, या फिर एक नेटिवो के नाम से भी एक फंजीसाइड्स आता है, उसकी भी 0.5 या 1 ml पर लीटर के हिसाब से वो स्प्रे करते रहें, या फिर रिडोमिल गोल्ड भी इसका अच्छा है क्योंकि इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, मतलब किसान भाई अपनी फसल को इससे बचा सकते हैं। पर इसका जो बीमारी का जो मुख्य कारण जो रहता है कि भाई अगर कोई भी बीमारी आती है, चाहे इंसान हो चाहे पौधे हो, वो प्रारंभिक अवस्था में ही उसका निदान करे तो वो इफेक्टिव होती है। अगर बहुत ज़्यादा पौधे प्रभावित हो गए हैं, पौधे मर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, पूरे खेत में अगर हम येलो मोजक की बात करें तो पूरे जो पौधे हैं वो पीले पड़ गए, उसके बाद अगर वो स्प्रे करें तो ये कारगर साबित नहीं होते हैं।
1: डॉक्टर बबली जी, आप हमारी चौपाल पे आया और हमारा किसान भाई उनके सोयाबीन में अर्धगलन रोग जो होवे है ओके पहचान कैसे करा, ओको प्रबंधन कैसे करा, इका बारा में इतनी अच्छी जानकारी।

0: दी एकालेन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।
2: भाई बहनों ने अभी अपन सुनी रहा था भेंट वार्ता, सोयाबीन में अर्धगलन यानी कि डंपिंग रोग ओ की पहचान नो की रोकथाम का बारे में जानकारी जानकारी दे रही थी पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बबली। इनका से बातचीत करी अपनी बहन भारती उपाध्याय ने। भाई बहनों ने मारा हाथ में ये कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का भाव आएगा, जहाँ अपना किसान भाई बहन ने खबर बताई दियो। आज जी छे सोयाबीन न्यूनतम भाव 4300 से शुरू हुई थी, अधिकतम भाव 7050 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बंद हुई। वन जी को मॉडल भाव तो 7025 रुपया। गेहूं की बात करा तो गेहूं 2071 रुपया से शुरू हुआ था, न 3051 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से अधिकतम भाव पर बिक गया। वन जी को मॉडल भाव तो 2470 रुपया प्रति क्विंटल। चना 3300 से शुरू हुआ, न 7275 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम का भाव पर बिक गया। वन जी को मॉडल भाव रहे हो 5305 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना 5560 रुपया प्रति क्विंटल से शुरू हुआ था, अधिकतम भाव 8860 रुपया प्रति क्विंटल पर बिक गया। न एको मॉडल भाव रहे हो 7100 रुपया। मूंग 4400 से शुरू हुई थी, न 7025 रुपया प्रति क्विंटल को भाव एको अधिकतम रहे हो, वहाँ जो मॉडल भाव 4400 रुपया ज रहे हो। मक्का की बात करा तो मक्का 1900 से शुरू हुई थी न्यूनतम भाव का साथ, अधिकतम भाव 2400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी, न 1900 रुपया जेको मॉडल भाव भी रहो। तुअर का देखा तो तुअर 6510 रुपया से शुरू हुई थी, आज न्यूनतम भाव प्रति क्विंटल को था, न अधिकतम भाव 7000 रुपया प्रति क्विंटल को रहो, वहां जेको मॉडल भाव था 6510 रुपया। तो भाई बहनों ने ये तो था कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का भाव। आज मंगलवार को दिन छे हमारा भाई बहन रस्तो देखज रामायण पाठ को, तो सुनाज मुकेश न साथी न को गायल ये रामायण पाठ।

भाई बहनों अभी अपन सुन रहा था मुकेश उनका साथी ने को गायल रामायण पाठ। अब घड़ी कह रही इसकी काल का कार्यक्रम का बारे में बात कर लेवा। काल खेती की बात न कार्यक्रम में सवेरा वर्षा जल संचयन भविष्य में जल संकट को समाधान इना विषय पर जानकारी लेवागा। संध्या का खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आज की बात होएगा, लोकगीत होएगा न सुनागा एक वार्ता मशरूम की खेती में नई संभावनाएं। उर्वशी उपाध्याय अपूर्ण का इना बारे में जानकारी देगा। तो काल बैठांगा बातचीत करांगा कार्यक्रम में। अमा अनुराधा को देव आज्ञा। राम राम।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन की यात्रा पर हैं। वो स्पेन के साथ साथ फिनलैंड और बेल्जियम की भी यात्रा करेंगे और भारत और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। हमारे साथ शरद कोहली जी मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। शरद जी, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत और यूरोप के संबंधों में काफी बदलाव आया है। अगर हम 10 सालों की बात करें, दोनों के बीच जो व्यापार है वो 80% से ज्यादा बढ़ा है। अब आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? क्या आपको लगता है कि यह रिश्ता पारंपरिक व्यापार से भी आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीतिक और प्रौद्योगिकी साझेदार का रूप ले रहा है?
3: नमस्कार हर्ष, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। पहले तो मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत और EU के बीच जो संबंध है उन्होंने एक नई शक्ल ली है, क्योंकि हम यूरोप को देखें तो 27 नेशंस को मिला के EU बनता है, और पिछले कुछ वर्षों में आप पन्ने पलट कर देखें तो उसमें EU की जो आर्थिक रफ्तार रही है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं रही। वहां पर उनकी अपनी समस्याएं थी, आर्थिक उनका एजिंग पॉपुलेशन थी, लोग बुजुर्ग हो रहे थे, वर्कफोर्स की दिक्कत थी, मार्केट

0: ग्रो नहीं कर रही थी। चाइना ने वहां पर अपना एक तरह से वर्चस्व जमाया हुआ था। चाइना से जो सामान आता है यूरोप में वो काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आता है, इसलिए यूरोप में ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं लग रही थी। यूरोप में बहुत सारे देशों में ऐसा देखा जा रहा था कि भाई अब जब चाइना से सामान आ जाता है तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है। तो वहां भारतीय सामान, हालांकि भारत का काफी विस्तार हुआ है अगर हम द्विपक्षीय व्यापार को देखें या भारत के सामान को वहां देखें, पर अभी वो जो कटिंग एज थी भारत के सामान पे वो आनी बाकी थी। तो मुझे लग रहा है ये जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के डेलिब्रेशन चल रही है, टीटीसी जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हमारे माननीय कॉमर्स मिनिस्टर वहां पर गए हुए हैं, इसको अब एक नया और 27 जनवरी को ये हमारा साइन हुआ था जो यूरोप के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी। और हम सब जानते हैं कि 27 देश मिलके यूरोपियन यूनियन बनता है, हर एक की अपनी पार्लियामेंट है, हर एक का अपना एक प्रोसीजर है। 27 में से 20 तो यूरो मानते हैं करेंसी को, बाकी के जो 7 देश हैं उन्होंने अपनी अपनी करेंसीज रखी हुई हैं। ये भी स्वतंत्रता यूरोपियन यूनियन का जो चार्टर है वो देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो देता है। तो हर एक देश की अपनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा। तो मुझे लग रहा है इस साल के अंत तक या 2027 के शुरू तक ये सारे क्लियरेंसेस हो जाएंगे और इसकी पूरी पुख्ता शक्ल निकल के आएगी। और बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता है, हर्ष होने वाला है, क्योंकि आप अगर आबादी के लिहाज से देखें तो लगभग 450 मिलियन की, 45 करोड़ के आसपास की यूरोप की आबादी है। अगर मैं GDP को देखता हूँ, सारे देशों को जोड़ दूं, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जो लोग शायद जानते नहीं होंगे, लैटविया है, लिथुआनिया है, लक्समबर्ग है, माल्टा है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, बाकी आप जर्मनी फ्रांस वगैरह तो सब जानते हैं, इटली इनको जानते हैं, पर उस 27 में बहुत सारे देश आ जाते हैं। $20 ट्रिलियन की हर्ष वहां पर टोटल GDP अगर हम ऐड करें तो बन जाती है। तो बहुत बड़ी मार्केट भारतीय सामान के लिए है। इधर यूरोप से जो भारत सामान आता है उसमें भी यूरोप भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट देख रहा है। आज भारत की जो मिडिल क्लास है वो अमेरिका की पॉपुलेशन से दुगनी है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी विश्व में इतनी बड़ी मार्केट एक ब्लॉक को मिलेगी एक साथ। तो दोनों देशों के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों देश इसके पूरक एक तरह से देखे जाने चाहिए।
1: बिल्कुल, अगर हम कुछ डेटा की बात करें शरद जी, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो व्यापार था 2025 में, पिछले साल, वो तकरीबन 118.4 अरब यूरो का रहा था, और EU ने भारत से लगभग 69.5 अरब यूरो का पूरा आयात किया था, लेकिन भारत को लगभग 48.9, आप 50 अरब यूरो कह सकते हैं कि भारत ने निर्यात किया था, यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस में था, हम इसे कह सकते हैं। और हमने अभी एक आंकड़े का और जिक्र किया था कि पिछले एक दशक की अगर बात करें तो दोनों पक्षों के बीच, यानी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच, 80% से ज्यादा वस्तु व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इस संदर्भ में शरद अगर देखें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, इनकी स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड यात्रा को कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए भारत और यूरोप आर्थिक संबंधों के संदर्भ में?
0: बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि ये 27 देश हैं, हर देश का स्वचालित है, हर देश की अपनी पार्लियामेंट है, हर देश के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से उनको क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। तो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो, एक तो देखिए आप यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक बात करते हैं, पर हर देशों के अपने अपने कंसर्न्स हैं। तो वो फिनलैंड जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, तो वहां जो कंसर्न्स हैं उनको वो दूर कर रहे हैं, और हर देश से भी नेगोशिएशन बनती है और पूरे ब्लॉक के साथ भी नेगोशिएशन बनती है। तो ब्लॉक के साथ इन प्रिंसिपल नेगोशिएशन हो चुकी है, वो फाइनल हो चुका है। अब जहां जहां थोड़े से, अंग्रेजी में एक शब्द होता है ट्विक्स, जहां जहां थोड़े थोड़ी लूज एंड्स है उसको बांधना है, कहीं उनको कोई स्पष्टीकरण चाहिए किसी विशेष वस्तु पर, अगर उनको उनको सफाई चाहिए कि भाई आपको किस तरीके से आप उसको भेजेंगे, किस रेट पे ये बनता है, क्या क्वालिटी होती है, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्योंकि अगर आप आइटम्स देखें, हर्ष आपने भी बात करी, और मैं आपको ये बता दूं जो आपने आंकड़े बताए कि यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक भारत का इस समय सबसे बड़ा गुड्स के मामले में ट्रेड पार्टनर है, वरना हम चाइना अमेरिका से भी काफी व्यापार करते हैं, पर अगर गुड्स के मामले में आप देखें, खाली मर्चेंडाइज जिसको हम कहते हैं, तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अभी से है, और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की पूरी के पूरा कयास है, ये सारा एफर्ट हो रहा है। तो मैं आपको आइटम्स की बात कर रहा था, मुझे लग रहा है बहुत जरूरी हो जाता है जिक्र करना, क्योंकि हमारे जो श्रोता एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट लाइन में है या जो एक्सपोर्ट की लाइन में आना चाहते हैं, ये जान के 93% बल्कि हमारा सामान वहां पर अब टैरिफ फ्री हो जाएगा, वो ये जानना चाहेंगे कि कौन से क्षेत्र के वो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं कुछ सेक्टर्स का नाम यहां पर लेना चाहूंगा हर्ष, उसमें टेक्सटाइल्स है, अपैरल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मरीन प्रोडक्ट जिसमें भारत की बहुत महारत खातिर है, भारत का बहुत बड़ा एक कोस्टल एरिया है, लेदर गुड्स है और इसमें एग्रीकल्चर प्रोसेस गुड्स भी है जो की सिलेक्टेड कैटेगरीज में वहां जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जब हमारा ये ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है तो क्या भारतीय किसानों को इसमें कोई नुकसान होगा, क्योंकि यूरोप तो कृषि के लिए भी बहुत सारे यूरोप के ऐसे हैं जहाँ

0: कृषि में प्रोड्यूस होता है। इस एग्रीमेंट में भी पूरा ध्यान रखा गया है कि हमारे किसानों का हित कहीं पर भी प्रभावित नहीं होगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और यही जब एग्रीमेंट की फाइनल रूपरेखा निकल के आएगी, हालांकि एग्रीमेंट साइन हो चुका है, पर इंडिविजुअल देशों के साथ जो देशों के साथ होगा उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी कृषि क्षेत्र को कोई आंच नहीं आने वाली है। हर्ष,
1: और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए यह भी बता दें कि भारत वहां से क्या क्या आयात करता है यूरोप से। आपने बहुत सारी वो चीजें बताई जो कि भारत के निर्यातक वहां निर्यात कर सकते हैं, और भारत जो आयात करता है उसमें भी मशीनरी कुछ है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, मेडिकल खास तौर पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ केमिकल्स वहां से आते हैं, हम आयात करते हैं। शरद, आपने अभी बात की FTAs की, FTA के बाद और आराम हो जाएगा हमारे निर्यातकों को, जो टैरिफ है एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं क्या, कुछ बाधाएं भी मौजूद हैं क्या? थोड़ा विस्तार से इसको बताएं कि अगर कुछ बाधाएं हैं तो क्या है और कैसे उनसे निपटा जा सकता है।
0: या देखिए, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, और यही चैलेंजेस की वजह से आपको जो हमारे मंत्री वहां जा रहे हैं उन चैलेंजेस को वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक उस पर समन्वय बन पाए उस पर बनाया जाए। और दो तीन चीजें मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल उठाया है। देखिए, अभी तक चाइना का जो वर्चस्व था यूरोपियन यूनियन में, वो कीमत के मामले में हम उनको हर चीज में कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, ये हमें स्वीकार करना होगा। वहां से सामान सस्ता बन के आता था, और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी खराब होती थी, चाइना में हर तरीके का सामान बनता है। तो दो माना पहले मैं लूंगा यहां पर, एक मैं लूंगा क्वालिटी का, दूसरा मैं लूंगा प्राइसिंग का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में, मुझे लग रहा है अब हमारे एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ये दो चीजों पर ध्यान देना होगा। एक तो क्वालिटी, क्योंकि यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, जैसा मैंने कहा, हर देश में नियम अलग हैं, हर देश में जो पैमाने हैं सामान को एक्सेप्ट करने के, इस्तेमाल करने के, वो अलग अलग हैं। तो एक्सपोर्टर्स जिस भी इन 27 नेशंस के ब्लॉक में भेजेंगे, उनको उस देश के जो जो ये पैमाने हैं उनको दिमाग में रख के चलना होगा। और सबसे ज्यादा ध्यान, जो मैंने शुरू में दो बात कही, कि क्वालिटी और प्राइस पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाइना से कॉम्पीट कर रहे होंगे। अब इस टैरिफ के हटने के बाद, 93% सामान पे टैरिफ हटने के बाद, हमारा जो सामान है वहां प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कीमतों के मामले में हम चाइना से कुछ कुछ आइटम तो ऐसे होंगे हम बेहतर हो जाएंगे। तो अगर यहां पर अगर हम क्वालिटी को भी हम अप टू द मार्क रखते हैं, क्वालिटी को हम बिल्कुल उच्चतम रखते हैं, और दूसरी तरफ हम कीमत कम रखते हैं, तो मुझे लग रहा है वो जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है, मुझे लगता है वो जगह हम धीरे धीरे ले पाएंगे। आज हम कुल अगर निर्यात देखें अपने देश का, हर्ष, तो $850 billion से ऊपर हम पहुंच चुके हैं, और इसको इस साल तक 2027 तक $1 trillion ले जाने का हमारे माननीय जो मंत्री हैं उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो मुझे लग रहा है ये जो FTA हैं ये उस ओर कदम हमारे ले जाएंगे, क्योंकि यहां से आपका निर्यात बढ़ेगा, और यहां से जो टैरिफ लगने की वजह से जो सामान महंगा हो जाता था, वो अब वो महंगाई उस सामान में से हट जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट जाएगा, और हमें जो एक्सपोर्टर सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम को, वो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि उस देश की क्वालिटी के हिसाब से वो सामान को बनाएंगे। बाकी जो एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं वो तो ध्यान में रखना ही होगा, उसके बिना तो वो सामान को वहां आने ही नहीं देंगे। तो देखिए, सरकार का काम होता है, हर्ष, एनेबलर का, यानी कि सरकार आपको एक माहौल बना के दे दीजिए। अब इसका जो लाभ उठाना है, वो लाभ उठाना तो लोगों के हाथ में, लाभ उठाना तो बिजनेस कम्युनिटी के हाथ में, लाभ उठाना एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी के हाथ में। दूसरी एक जरूरी बात मैं, हर्ष, इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि हम इसको कोऑपरेशन को खाली हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चश्मे से हमें नहीं देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट है, जैसे एक देश से दूसरे देश में जो निवेश आएगा वो भी इस FTA के बाद आसान हो जाएगा। अच्छा, प्रोफेशनल सर्विसेज जो देनी होती है, भारत तो सर्विसेज के लिए जाना जाता है, आपको पता है भारत का तो बहुत बड़ा हिस्सा GDP का सर्विसेज से बनता है, और हमारा लोहा दुनिया मानती है खासकर IT सर्विसेज में, वहां पर भी उसका भी इसमें जिक्र होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बहुत सारी होती है दोनों देशों से, वो भी इस FTA में शामिल की जाएगी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है, उसका भी जिक्र आएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत ने जहां महारत हासिल करी है वो डिजिटलाइजेशन में हासिल करी है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जब फाइनल रूपरेखा इसकी निकल के आएगी, जब ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें भारत के जो डिजिटल स्ट्रेंथ है उसका जरूर जिक्र आएगा। और पीपल टू पीपल रिलेशंस हो गए, भारत के जो प्रोफेशनल्स है वहां जाके काम करते हैं, उनके वीजा की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, यूरोप से लोग यहाँ आके जब जरूरी होगा काम कर पाएंगे, भारत के लोग वहां जाके काम कर पाएंगे। एफटीए का जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है हर्ष, बहुत बड़ा होता है, इसका जो पूरा घेराव होता है बहुत बड़ा होता है, जो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जी
1: बिल्कुल शरद, आपने चीन की बात की और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, यूरोप लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम हो और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है जिसकी आपने बात की, इसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए। यानी कि अब यूरोप की जो कोशिशें थी इसमें भारत की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है।
0: बिल्कुल, भारत की बहुत बहुत बड़ी भूमिका होगी और यूरोप का भारत के साथ इस प्रकार आके पूरे के पूरे ब्लॉक का, मुझे लगता है इतने सारे देश एक साथ आके भारत के साथ, इसको आप दूसरे नजरिए से देखें तो अब यूरोपियन यूनियन अगर मैं इसको ना बोलूं तो 27 देश एक साथ आके भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? उनको भारत की मार्केट दिख रही है और वो चाइना के अलावा एक और चेन खड़ी करना चाहते हैं। हमारे साथ और देश हैं, इसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबलाइजेशन का और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत तरक्की करी है। भारत की, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है, सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल देश भी भारत है, यानी कि जहां यूथ जो है बड़ा कुछ करके दिखाना चाहता है, तो मुझे लग रहा है अब वो समय आ गया है, एक एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां से भारत के एक्सपोर्टर्स अब विश्व की तरफ देखने लगेंगे। जो मैं तो आह्वान करना चाहूंगा हर्ष, आज शो के माध्यम से
1: जी,
0: उन बिजनेसमैन का जिन्होंने आज तक कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, मैं समझता हूं ये एफटीए को और आज आपकी हमारी इस बातचीत के जरिए उनको ये समझ में आएगा कि ये एफटीए मात्र एक डिस्कशन की चीज नहीं है, एक श्रोताओं को बताने की चीज नहीं है, एक समझने की चीज है कि आप किस प्रकार उस मार्केट की ओर देख सकते हैं, अपने सामान को वहां ले जा सकते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा। आज आप यूरोप के साथ व्यापार कर सकते हैं, यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध बना सकते हैं और उसमें कमाई कर सकते हैं, लोगों को नौकरियां, देखिए दोनों तरफ इसके होने के बाद दोनों तरफ नौकरियों में इजाफा दिखाई देगा, क्योंकि जो नए यूनिट्स लगेंगे, जिस सामान की यूरोप को जरूरत है उसकी यहां फैक्ट्रियां लगेंगी, उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो कुल मिला के जो आर्थिक विकास है उसमें बहुत बड़ा ये इंजन का काम करेगा।
1: कुल मिलाकर एक बहुत बड़े इंजन का काम करेगा आर्थिक विकास की दिशा में। शरद कोहली जी, आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: शुक्रिया, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, पेश है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया कि सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। चलते हैं कार्यक्रम के आज के सफर पर। उनकी आंखों में डूबकर ही पता चला, समंदर सिर्फ पानी का नहीं होता,

0: आंखों में नींद नहीं, दिल में चैन नहीं, तेरे बिना ये आंखें किसी काम की नहीं।
1: मदन मोहन के बारे में मेरा ख्याल है कि उनसे अच्छे गजल बनाने वाला नहीं हुआ। गजल में जो रोमांस होना चाहिए, जो रंग होना चाहिए, जो मदन मोहन ने दिया वो किसी ने नहीं दिया।

0: लड़की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाए।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का।
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: तेरी आंखों का नशा ऐसा है, शराब पिए बिना भी बहक जाते हैं।

इस गीत के साथ ही आज का दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए आसिफ अली को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडबरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
2: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
1: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
3: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स

0: अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केन्द्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रूपये से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रूपये का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title

0: जोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani, and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
3: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the Ministry.
3: We had issued a statement post-summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter that these attacks must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured.

मेरे सनम फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं ओपी नैयर।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। उर्दू कार्यक्रम कहकशां कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रदेश का प्रसारण है रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

आदाब। उर्दू प्रोग्राम कहकशा में मैं शीरीन खान आप तमाम समईन का समीमे खल्ब से खैर मकदम करती हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम आप शारे गजल पर मबनी है। इस प्रोग्राम में हम आज उर्दू गजल के उस आफ्ताब को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिसकी रोशनी ने जदीद शायरी को एक नया पिरहन अता किया। जी हाँ, डॉक्टर बशीर बद्र एक ऐसा नाम जिसने लफ्जों को नई खुशबू दी और जज्बात को आम आदमी की जबान में ढाल दिया। सामईन इकराम, 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या की मिट्टी से उभरने वाला वो सितारा जिसे दुनिया सैयद मोहम्मद बशीर और बाद आजा डॉक्टर बशीर बद्र के नाम से जानती है, अपनी जात में एक पूरी कायनात समेटे हुए था। उनके बुजुर्गों का ताल्लुक सरजमीने ईरान से था, जो हिजरत करके पहले लाहौर और दिल्ली, फिर फैजाबाद और बिलाखिर कानपुर में मुकीम हुए। बशीर बद्र की परवरिश उस गंगा जमनी तहजीब के साए में हुई जहां लहजों में रस और लफ्जों में मिठास होती है। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेर मौजू किया जिस पर वालिद ने बरहमी का इजहार भी किया, लेकिन वही शेर उनकी अजमत का नुक्ता आगाज साबित हुआ। उनका ये शेर, हवा चल रही है उड़ा जा रहा हूँ, तेरे इश्क में मैं मरा जा रहा हूँ। दोस्तों, कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। अभी वो 10वीं जमात के तालिबे इल्म ही थे कि वालिद शाह मोहम्मद नजीर, जो महकमाए पुलिस में मुलाजिम थे, दाई अजल को लबेक कह गए। इस कम उम्री में घर की तमाम जिम्मेदारियां उनके नातवा कंधों पर आ पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें तालीम अधूरी छोड़कर महज 85 रुपए माहवार पर पुलिस की मुलाजिमत करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, जिसके खमीर में शायरी रची बसी हो उसे हालात की संगीनी कब तक कैद कर सकती थी। हालात के नामुस्तादत के बावजूद बशीर बद्र ने

इल्म की शम्मा को गुल नहीं होने दिया। पुलिस की मुलाजिमत के साथ साथ उन्होंने अपनी इल्मी प्यास बुझाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए एमए और फिर प्रोफेसर आले अहमद सरूर की निगरानी में आज़ादी के बाद उर्दू गजल की तनकीदी मुताला के मौजू पर पीएचडी की डिग्री हासिल की। ये उनका जुनून ही था जो 1967 में उन्होंने मुस्तकिल रोजगार यानी पुलिस की मुलाजिमत को खैराबाद कह दिया ताकि वो खुद को मुकम्मल तौर पर अदब के लिए वक्फ कर सकें। सामईन, इस प्रोग्राम की पहली पेशकश रेखा विशाल भारद्वाज की आवाज में और कलाम है बशीर बद्र साहब का। समाप्त कीजिए।

दोस्तों अभी आप रेखा विशाल भारद्वाज की आवाज में गजल समाप्त फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। बशीर बद्र उर्दू अदब के वो मुनफरिद मुअम्मार हैं जिन्होंने गजल को रिवायती गुल बुलबुल और जुल्फ और रुखसार के हिसार से निकाल कर एक नई जिंदगी बख्शी। उन्होंने गजल में ऐसे लफ्जों को दाखिल किया जिन्हें पहले गैर शायराना समझा जाता था, जैसे पुलोवर, रिबन, रेल और ग्लास। डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने उनके फन को सराहते हुए ठीक ही कहा था, बशीर बद्र ने पोएट्री में नई बस्तियां आबाद की हैं। उनकी तख्लीकात जैसे इकाई, इमेज, आमद, आस, आसमान, आहट, गजल के जदीद सफर के वो संगे मील हैं जिन्होंने उर्दू गजल और उर्दू दाद तबके को भी अपना गुरवेदा बना लिया। उनकी इसी अदबी खदमात के एतराफ में अदबी और सकाफती इदारों ने उन्हें मुतादित एजाजात और अवार्ड से नवाजा। उनमें से उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और बिहार उर्दू एकेडमी के एजाजात के अलावा हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री जैसे आला अवार्ड से नवाजा और 1999 में उनके शेरी मजमुए आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड भी दिया गया। उनका विजन इतना दूरस्थ था कि उन्होंने 1984 में ही अपनी किताब आमद में 2035 के कारीन के नाम एक खत लिखा जिसमें ये दावा किया कि उनका उसलूब आने वाले अहद की गजल की बुनियाद बनेगा। उनके बदले हुए लहजे की एक झलक उनके अशार में मुलाहिजा कीजिए। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, ना कहा हुआ ना सुना हुआ। बशीर बद्र ने इंसानी रिश्तों की नफसियात को जिस तरह समझा वो उनके अशार से जाहिर है जो आज जबान ज़ाद आम है, जैसे कि ये शेर, ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है जो कोई दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। और जिंदगी की जद्दोजहद को इस तरह बयान करते हैं इस शेर में, देखिए, रेल की पटरी पर मेरी शोहरत रख दी, बस के पहियों से रोजी रोटी बांधी। दोस्तों हम बशीर बद्र के बारे में और मजीद मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है ये गजल मुश्ताक हुसैन की आवाज में और कलाम है बशीर बद्र साहब का।

दोस्तों, अभी आप मुश्ताक हुसैन की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। बशीर बद्र साहब की ज़िंदगी सिर्फ मुशायरों की तालियों और वाह वाह तक महदूद नहीं थी। उन्होंने हिजरत, फसादात और अपनों के बिछड़ने के गहरे जख्म भी सहे। मई 1984 में जब वो कराची में एक मुशायरे की कामयाबी समेट रहे थे, उसी वक्त मेरठ में उनकी पहली शरीक हयात कमर जहाँ का इंतकाल हो गया। सदमात का ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1987 के मेरठ फसादात में उनका घर, उनकी तमाम यादें और नायाब कुतुब का इल्मी सरमाया नजरे आतिश कर दिया गया। उस वक्त एक इंसान के टूटने का मंजर और उसकी सदा उनके इस शेर में सुनाई देती है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लेकिन बशीर बद्र का फन सिर्फ एहतजाज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इंसानियत को मोहब्बत और सुलह का रास्ता दिखाया। उन्होंने सिखाया कि नफरत की आग में भी दोस्ती की गुंजाइश बाकी रहना चाहिए, क्योंकि इंसान ही इंसान का सहारा है। जैसा कि उनका ये शेर, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वो तनकीद और मुखालिफत से घबराने वाले शायर नहीं थे, बल्कि उनका मानना था कि मुखालिफत इंसान के किरदार को जिला बख्शती है। उन्होंने अपनी शख्सियत को तजादात के बीच इस तरह संवारा कि उनका दुश्मन भी उनके वक़ार का कायल हो गया। जैसे कि इस शेर में ये बात जाहिर होती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मशहूर फिल्मसाज विशाल भारद्वाज बशीर बद्र के बहुत बड़े मद्दा रहे हैं। विशाल उन्हें अपने रूहानी उस्ताद मानते हैं और अक्सर उनके अशार से अपनी फिल्मों में तहरीक हासिल करते रहे। बशीर बद्र को उन्होंने वो इज्जत दी जो एक सच्चे फनकार का हक होती है। वो अक्सर कहते थे कि बशीर बद्र का कलाम सिर्फ शायरी नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का फन है। सामेन, इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश बिहारी लाल राव की आवाज में और कलाम है बशीर बद्र साहब का, समाप्त कीजिए।

दोस्तों, अभी आप बिहारी लाल राव की आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। दोस्तों, सफर जिंदगी के आखिरी तवील अयाम डॉक्टर बशीर बद्र ने झीलों के शहर भोपाल में अपनी दूसरी शरीक हयात डॉक्टर राहत सुल्तान के साथ गुजारे। वक्त का सितम देखें कि वो शायर जिसने करोड़ों दिलों को लफ्जों की रोशनी दी, आखिरी बरसों में अल्जाइमर जैसे मर्ज का शिकार होकर अपनी ही याददाश्त खो बैठा। उन्हें ये तक याद ना रहा कि कभी उनकी मौजूदगी मुशायरों की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। बिलाखिर 28 मई 2026 को उर्दू गजल का ये एहसास शायर हमेशा के लिए खामोश हो गया। बशीर बद्र जिस्मानी तौर पर हम में नहीं है, लेकिन उनका ये फलसफा कि मोहब्बत में एहतियात जरूरी है, हमें हमेशा याद रहेगा। जैसा कि उनका ये शेर, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। उनकी शायरी इंसानी रिश्तों की नजाकत को कुछ इस तरह इस शेर में बयान करते हुए दिखाई देती है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। वो अपनी यादें हमारे पास छोड़ गए हैं, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज बशीर बद्र की याद में ये प्रोग्राम उनके इस शेर पर खत्म करते हैं, जो उनकी जिंदगी और फन का निचोड़ है। आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे जमाने मेरे। बशीर बद्र की जिंदगी और फन पर मबनी ये खुसूसी पेशकश यहाँ इख्तिताम पजीर होती है। उनके लफ्ज हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि सच्ची शायरी कभी नहीं मरती। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और तजावीज हम

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम मन भवन सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से, आवाज है लता मंगेशकर की। इस गीत को सुनना चाहते हैं कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनराज श्रीमाली, प्रमिलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, केदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु और ऋषभ सिंह, स्कीम नंबर 71 गुमाश्ता नगर से अनिल कौचाले, नेहा फंड से सीमा, सबीहा फजल, पूजा नैनावा, सुषमा, स्मिता, बनियाबारा धमतरी से रामचंद माखीजा, शंकरलाल, राहुल, सविता, स्वाति और पूरा माखीजा परिवार, कोल्हापुर से अतुल गौतमी, धमदीना, अरुण काले, एंडी कामले, प्रेक्षक प्रशिक, मेघना, तुषार, एकता, उत्कर्षा कामले और अरुण जलगुड़कर, महादेव घाट रमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सावन भादो से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने, धुन बनाई है सोनी कोमी ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं धर्मपुरी ज़िला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फ़र अयान, फैज़ान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी। अमरावती से दिलीप लकड़े, सुरेखा लकड़े, शुभम सारंग और विराज मोहिते। वाशिम से अशोक चुम्बले, दिनेश, रुपेश, लीलाबाई, चेताली और प्रीति चांदने। राजपुर से गीजू दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत, राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, हरिराम, विष्णु, कपिल, निरंजन, जमील खान, इमरान फुरकान, नेता रावणकर, जाकिर हुसैन नजमी और उनके साथी।
1: कहूंगा, एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? बोलो क्या चुराया है?
3: मेरा दिल।
2: क्या?

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा रंग।

अरे जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बता दूं मैं, पास अगर तू आ जाए।

क्रांति फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में। गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मोरटा का माफी खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। पिरान पीर रोड सनावत से माणक चंद राठौर, दीपेश कुमार राजा, पहल कुमारी राठौर और राजकुमार गढ़वाल। दुबे के बगीचे इंदौर से

महेश रायकवार, अमृता, सरिता, कृष्णवी, अहिल्याबाई और रायकवार परिवार, ताड़ी नंदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, सुरेश गवई, संदीप बाठे, इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लछनपुरा से विश्वनाथ साहू, रिगनी से दिनेश वर्मा और दत्तरेंगी से भागवत वर्मा। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म क्रांति का गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म धर्मवीर का गीत मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहते हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, सिटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और समस्त राजावत परिवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामचरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता प्रजापति और उनके परिवार के सदस्य। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, रेखा, विनीता, शेर सिंह गिन्नारे, सुभाष खंडाले। खंडवा से योगेश गुजराती, महिमा, रेखा गुजराती, अभय गुजराती और मंदा खंडाले। लाल माता सुदामानगर रटलाई झालावाड़ से हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, कपिल, मीनाक्षी, लक्की, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, शैलेश गवाणकर, वैशाली धोनी गवाणकर और श्वेता सुमित गवाणकर। बठिंडा रोड डब्बवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म धर्मवीर का गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।

0: की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत है उस्ताद अमजद अली खान का

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग मारू बिहाग। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं समाचार। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में